एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाय भाषा केंद्र है। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, आश्विन माह की तिथि 10, तदनुसार 2 अक्टूबर ईस्वी सन 2026।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with the principles of pro-people, pro-active and good governance. He said the country is progressing rapidly on the reform express and institutions conducting examinations must also undertake reforms in line with the country's needs. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi, the Prime Minister stressed the need to bring young people into public services who are driven not by public office, but by public service. The nation is paying homage to Father of the Nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. In her message on Gandhi Jayanti, President Draupadi Murmu said, Mahatma Gandhi's message of peace and non-violence has become even more relevant amid wars and conflicts in several parts of the world. She paid tribute to Mahatma Gandhi and said his life and ideals are widely respected across the world. She expressed confidence that India is advancing towards the goal of Vikasit Bharat by 2047. A Sarv Dharma Prarthana Sabha will be held at Mahatma Gandhi Samadhi at Rajghat in New Delhi

0: That is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे समाचार। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:10 हो रहे हैं। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। हमारे आज के कलाकार हैं वाणी जयराम।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गईं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:20 हो चुके हैं। श्रोताओं, वक्त है अब भक्ति गीतों के कार्यक्रम समर्पण का, तो आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ देर में आपको सुनवाएंगे आज का कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आइए अब जानते हैं आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। 7 बजे का वक्त कार्यक्रम जोहार चाईबासा का होगा। 8 बजे से आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर हम अंग्रेजी समाचार रिले करेंगे। 8:30 का वक्त होगा प्रादेशिक समाचार का। 8:40 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत। हमारे आज के कलाकार होंगे शंकर महतो और उनके साथी।

कार्यक्रम माटी की महक के बाद 9 बजे हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विविधा। 9:30 से आपका मनोरंजन हम करेंगे कार्यक्रम रस रंजन में। 10 बजे से आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT। 10:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

हमारी संध्या सभा का आरंभ हम करेंगे संध्या के 5:05 पर। सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म संगीत, जिसमें आप एक ही गीतकार के लिखे गाने सुनेंगे। छह बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। छह बजकर 30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया। 6:55 का वक्त होगा प्रादेशिक समाचारों का। उसके तुरंत बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम जिले में आजकल।

7:15 पर हम हाजिर होंगे आपके चहेते कार्यक्रम आपकी पसंद के साथ। 8 बजे से हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 का वक्त होगा समाचार संध्या का। 9 बजे से आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 9:15 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। 10 बजे आपको सुनवाएंगे डेली कैप्सूल हाइलाइट्स बेस्ड ऑन 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026। 10:20 पर गजलों के कार्यक्रम महफिल के साथ हम हाजिर होंगे। 10:30 से करेंगे आपका मनोरंजन कार्यक्रम सुरों के रंग में। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर सुनवाएंगे अंग्रेजी समाचार। 11:10 पर हम हमारी आज की सभा समाप्त करेंगे।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 6:45 हमारे स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं श्यामानंद झा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजने वाले हैं श्रोताओं। कुछ ही क्षणों में हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम जोहार चायबासा। कृपया प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है, यानी कि आज गांधी जयंती है। तो कार्यक्रम जोहार चाईबासा का आरंभ हम कर रहे हैं एक देशभक्ति गीत के साथ।

कार्यक्रम में आप आइए, सुनते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गाना। इस गाने में आवाजें हैं हरिहरन, प्रतिमा राव और उनके साथियों की।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार का गाया फिल्म हम सब उस्ताद हैं का गाना, कार्यक्रम जोहार चाईबासा में। अब आपको सुनवा रहे हैं बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में फिल्म हंगामा का ये गाना।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। कार्यक्रम का ये सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले का गाया फिल्म तुमसा नहीं देखा का ये गाना।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे तेजाब फिल्म का गाना कार्यक्रम जोहार चाईबासा में। कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है द ट्रेन।

अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म का गाना। गाने को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। कार्यक्रम जुहार चाईबासा का ये सिलसिला हम बढ़ा रहे हैं आगे, और अब हम लेकर आए हैं फिल्म कुदरत का गाना किशोर कुमार की आवाज़ में।

किशोर कुमार का गाया फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गाना अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चायबासा में। श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ हम आज का कार्यक्रम जोहार चायबासा यही समाप्त कर रहे हैं। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार हैं। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांवों के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
2: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचानी की श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण, जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
4: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
5: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st सेंचुरी इंजीनियरिंग वंडर। फॉर मेनी डेकेड्स There was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
4: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था, जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है, जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में मदुरै डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुल के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। आईआईटी मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 में इसके डिजाइन की जांच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा में एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
6: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा फ्रेश ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
7: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना, जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमई के लिए, और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोद की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में

0: अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
1: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मित मच्छार के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है कॉकपिट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मित मच्छार की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मित को पूरी दुनिया ने किया सलाम, जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा अब सरकार माई बाप नहीं नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोकसत्य की सुर्खी है महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति, गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक से दिया है तेजस संग उड़ान, फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले याद आया मिराज 2000। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयरक्रू ने साझा किए ऑपरेशनल अनुभव, रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक, कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच, आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत, बाढ़ में पिता को खोया अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार हॉकी में पाकिस्तान को हराकर भारत की नजरें गोल्ड पर, क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन, नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अबीब जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती, भारत की स्मित के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay, the headlines. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on the birth anniversary today. Special Gram Sabhas to be convened across the country on the occasion of Gandhi Jayanti. Civil Aviation Ministry initiates series of reforms to make aviation security processes simpler and quicker. Saudi Arabia hands over to UAE Omani co-pilot who made abortive attempt to crash fly Dubai's Tel Aviv-bound plane. Brave Indian pilot Smit Machar airlifted to Abu Dhabi for treatment, India closely following his health condition. Russian President Vladimir Putin says Prime Minister Narendra Modi has very good ideas to find mutually acceptable solution for Ukraine conflict. And India bags gold medal in the women's recurve archery team event at the Asian Games in Japan. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A series of functions have been organized across the country and by Indian missions abroad. A Sarva Dharma Prarthana Sabha was organized at his Samadhi, Rajghat, in the national capital.

0: 1970s, stretched to about 2.2 km with 143 piers and was commissioned in 1914. The vertical lift in the new bridge features a 72.5 meter extent central span that rises 17 to 22 meters vertically to accommodate ships at sea. Talking to Akashvani, railway officials of the Madurai division said that to protect the infrastructure of the bridge, over 3,000 tons of steel had gone into 99 approach girders alone. The lift span was built from 54 pieces and joined with 168 wells done inside special huts that kept the conditions just right. Some tower sections were floated to the site on barges. The entire stretch offers an ecstatic view of the Arabian Sea also. Pamban Bridge survived major cyclones that destroyed Dhanushkodi, the ruins which bears testimony to it. Joy, Akashvani, Chennai.
1: This is Akashvani giving you the news.
2: For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel, Akashvani News.
1: The Ministry of Civil Aviation has initiated a series of reforms to make aviation security processes simpler and quicker for the people working at Indian airports. Briefing the media on the Bureau of Civil Aviation Security, BCAS reforms to improve operational efficiency and ease of doing business in New Delhi, Civil Aviation Secretary Samir Kumar Sinha said these sweeping changes aim to digitize workflows, making processes simpler and transition towards accountability-driven governance while maintaining the highest security standards. The ministry informed that BCAS has streamlined the security clearance framework by moving towards a category and contract agnostic security clearance, which is applicable across the 9 identified categories of aviation entities. It is proposed to remain valid for 5 years as part of these reforms. Saudi Arabia has handed over to UAE the Omani co-pilot who made abortive attempt to crash fly Dubai's Tel Aviv-bound plane. Investigators are probing the attack on Indian pilot Smith Machar by Omani co-pilot in the cockpit. The development came after Saudi authorities conducted a preliminary investigation into the incident that forced the flight to make an emergency landing in the Saudi city of Tabuk on Wednesday. Saudi Arabia's Interior Ministry said its initial investigation indicated that the co-pilot has assaulted the captain during the flight. The preliminary investigation was conducted in coordination with security teams from the UAE. External Affairs Ministry has said it continues to closely follow the health condition of Captain Smith Machar, an Indian national and the brave pilot of Flight Dubai Flight FZ1073. It said in a statement that after receiving initial medical treatment in a hospital in Tabuk, Saudi Arabia, he has now been shifted to Abu Dhabi for continued medical attention and recovery. Indian ambassador in UAE met Captain Machar in a hospital and inquired about his well-being. Earlier, the ambassador also met his family and assured all possible support for the captain's health and well-being. The Indian embassy in Abu Dhabi and consulate in Dubai are in close touch with the local authorities in the matter. External Affairs Ministry once again saluted Captain Smith Machar's valor and courage. It also conveyed deep appreciation for the admiration and support he has received from across the world for his act of gallantry. Russian President Vladimir Putin has said that Indian Prime Minister Narendra Modi has very good ideas aimed at finding a mutually acceptable solution to the Ukraine conflict. Speaking at the Valdai Forum, Mr. Putin noted that Mr. Modi regularly raises the topic of ending the war during the discussions and shows strong interest in a peaceful settlement. Mr. Putin described India's diplomatic position as neutral yet deeply invested in bringing the hostilities to an end, while Mr. Modi has previously emphasized that India stands firmly on the side of peace. Mr. Putin expressed gratitude for Mr. Modi's persistent engagement and practical approach towards dialogue and diplomacy. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan is visiting Goa today. He will interact with farmers and citizens at an event in Ponda. Panchayat members and councillors will participate through online mode. We have more from a correspondent.
3: The Goa Fresh brand will be launched by Union Minister Shivraj Singh Chauhan today in Goa. Under the initiative, branding and packaging of agricultural products produced in Goa will be undertaken. The state government has developed Goa Fresh brand to promote and give recognition to agricultural produce from Goa. The program will provide farmers farmers and women from across the state an opportunity to interact directly with Union Agriculture Minister. Discussions will focus on challenges in the agricultural sector, farmers' welfare, rural livelihoods, and the contribution of women to the rural economy. Minister will later visit Indian Council of Agricultural Research, Central Coastal Agriculture Research Institute, and will take review meeting. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
1: In Mizoram, three persons, including PIB Imphal Additional Director General Dr. Angam Pame, DD News Aizawl Director Nampibo Marin Mai, and CBC Aizawl MTS Age Lian Vela, were killed in a road accident near Sialsuk yesterday. The car in which they were traveling fell into a gorge. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav expressed condolences to the bereaved families. Indian women's recurve archery team has created history by winning its maiden Asian Games gold medal, defeating world champion South Korea 5-3 in a thrilling final today. Ankit Bhagat, Kirti Sharma and Kumkum Mohod held their nerve in windy conditions to edge past the 10-time Olympic champions. After the first two sets were tied, India seized the advantage in the third set with a 55-point score against Korea's 52. In the fourth set, a crucial score correction turned Kirti Sharma's 8 into a 9, taking India to 54 points and sealing the gold. Earlier, India defeated China 5-1 in the semi-final to reach its first ever Asian Games women's recurve final. This is India's first Asian Games gold in the women's recurve team event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
4: Thank you, Abhishek. On the Fly Dubai flight incident, Hindustan Times leads, averted a 9/11 style tragedy. Modi lauds Captain Machar. Injured Indian captain's table. Attack motive still unclear. Headlines the Asian Age. Israeli leaders hail Indian pilot as hero, states the Pioneer. At the UPSC centenary celebrations, the Asian Age reports Modi pushes citizen first approach in civil services. UPSC turns 100, Prime Minister urges shorter exam cycles, youth-centric reforms, reports the Indian Express. Supreme Court bars license renewal for motorists with unpaid fines, informs the Hindu. And finally, Silesau land in City of Joy amid tight security. Well, the Indian Express reports that five-time football world champions Brazil landed in Kolkata on Thursday night for their much-awaited friendly with India on Saturday. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Nation pays homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on the birth anniversary today. Special Gram Sabhas to be convened across the country on the occasion of Gandhi Jayanti. Civil Aviation Ministry initiates series of reforms to make aviation security processes simpler and quicker. Saudi Arabia hands over to UAE Omani co-pilot who made abortive attempt to crash fly Dubai's Tel Aviv-bound plane. Brave Indian pilot Smith Machar airlifted to Abu Dhabi for treatment, India closely following his health condition. And India bags gold in the women's recurve archery team event at the Asian Games in Japan. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
5: आकाशवाणी रांची से अभी आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
6: मौसी, सुबह सुबह आप यहाँ
7: बहु पेट से है ना,
6: तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी।
7: ये तो खुशी की बात है, घर में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे, इसके लिए समय समय पर बहु की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना।
6: मैंने बहु का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है, उसे समय समय पर जाँच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ।
8: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जाँच कराएं।
6: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य ले।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखण्ड द्वारा जनहित में जारी।
10: माँ बनना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिन तक रोज ही दवा लूं?
11: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है।
12: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से रोज।
11: लो अब जनरेटर को क्या हुआ?
12: अरे माँ तेल खत्म हो गया है और क्या।
11: अच्छा, 2 कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या, वो भी तो 2 जान संभाल रही है। बहू ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। चांस क्यों लेना।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
13: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनहितैषी और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा 21वीं सदी का भारत। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर दिया बल। निजी हेल्थ कॉन्क्लेव में AI और डिजिटल हेल्थ सेवाओं पर जोर। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, दूर रहकर भी मरीजों का स्वास्थ्य अपडेट जान सकेंगे परिजन। CGL पेपर लीक मामले में CID ने एक और आरोपी रितेश कुमार सिंह को पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 197वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें कर रहा है श्रद्धांजलि अर्पित। और झारखंड से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विदाई शुरू। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में इस वर्ष सामान्य वर्षा की गई है दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
14: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
13: रांची में आयोजित 2 दिवसीय डीजी हेल्थ कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डिजिटल हेल्थ सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। समापन अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि अब अस्पतालों में एक ऐसी ICU व्यवस्था लागू की जाएगी जिसके माध्यम से परिजन अस्पताल से दूर रहकर भी अपने मरीज का हालचाल और स्वास्थ्य अपडेट आसानी से जान सकेंगे।
15: इलाज अच्छा होगा। जो ऑपरेशन 3-3 घंटा में ऑपरेशन होता था वो मात्र 10-15 मिनट में हो जाएगा। ये तकनीक हमला है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, कई अच्छे अच्छे तकनीक यहाँ पहली बार झारखंड आए। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी अभी 5 मेडिकल कॉलेज में हम लेने जा रहे हैं और सदर हॉस्पिटल रांची में, उसके बाद सभी सदर हॉस्पिटल में हम लेंगे।
13: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर रांची में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि नो मैपिंग और विसंगतियों के कारण जिन मतदाताओं को नोटिस जारी हुआ है उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए निर्वाचन कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO खुद मतदाताओं के घर जाकर जरूरी दस्तावेज प्राप्त करेंगे और उन्हें ऐप पर अपलोड करेंगे, जिसके आधार पर सक्षम पदाधिकारी मामले में आवश्यक निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 7 अक्टूबर को होगी। मंत्रिपरिषद की इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण, ऊर्जा, कृषि और वित्त विभाग से संबंधित कई नीतिगत व जनहितकारी प्रस्तावों को कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है। CGL परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितता की जांच कर रही CID ने एक और आरोपी रितेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रितेश मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला है और लंबे समय से झारखंड के बोकारो स्थित दुग्धा में रह रहा था। जांच एजेंसी के अनुसार रितेश पर कई अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाने का आरोप है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार @ @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @ @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 197वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूज्य बापू का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, करुणा और सेवा का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हर युग में मानवता का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा सेतु अभियान का आयोजन रांची के ओरमांझी में किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि जनसेवा के माध्यम से पार्टी आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर रही है।
16: 25 वर्षों से बिना थके, बिना रुके, बिना बीमार पड़े निरंतर गांव के गरीब, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग सेवा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि विगत 17 सितंबर से आगामी 17 अक्टूबर तक विभिन्न प्रकार की सेवा के कार्यों के माध्यम से हम जनता के बीच जाकर के उनको सेवा देने का काम करेंगे।
13: आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए रांची जिले के सभी थानों और ओपी में आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वरीय पुलिस पदाधिकारी विभिन्न थानों में खुद मौजूद रहकर नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे और उनके त्वरित निस्तारण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कार्यक्रम के प्रभावी संचालन को लेकर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक थानों का औचक निरीक्षण करेंगे। झारखंड से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस वर्ष राज्य में मॉनसून सीजन के दौरान कुल मिलाकर सामान्य वर्षा दर्ज की गई है।
17: से 3 अक्टूबर के बीच में स्थितियां बन रही हैं जब झारखंड के कुछ हिस्से से मानसून की विदाई हो सकती है। खासकर जो अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी भाग है झारखंड का, जहां से और अभी एक्चुअल जो रेनफॉल है वो 1005.7 मिलीमीटर हुआ है, जबकि इस अवधि का जो सामान्य रेनफॉल था 1022.9 मिलीमीटर है और जो विचलन है, डिपार्चर है, वो -2% है। तो ये नॉर्मल कैटेगरी में
13: झारखंड से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई। अगले वर्ष दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होने वाले क्रिकेट विश्व कप का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। इसमें 14 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 57 मैच होंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने एशिया खेल में भारत के शानदार प्रदर्शन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, क्रिकेट से हॉकी तक भारत की गोल्डन उम्मीद। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सेल कर्मियों को 32,000 और प्रशिक्षुओं को 25,600 रुपये बोनस। हिन्दुस्तान ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चालान नहीं भरा तो वाहन होगा जब्त। और दैनिक जागरण लिखता है, दुनिया ने की भारतीय पायलट की जय जयकार, बताया असली हीरो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनहितैषी और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा 21वीं सदी का भारत। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर दिया बल। डीजी हेल्थ कॉन्क्लेव में एआई और डिजिटल हेल्थ सेवाओं पर जोर। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, दूर रहकर भी मरीजों का स्वास्थ्य अपडेट जान सकेंगे परिजन। सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने एक और आरोपी रितेश कुमार सिंह को पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 197वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें कर रहा है श्रद्धांजलि अर्पित। और झारखंड से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई शुरू। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में इस वर्ष सामान्य वर्षा की गई है दर्ज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी 8:44 का इशारा कर रही है। वक्त हो चला है कार्यक्रम माटी की महक का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत। हमारी आज की कलाकार हैं तुहुक देवी और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी की महक FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम विविधा

0: कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जल्दी से आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम विविधा में हम आपके लिए क्या क्या जानकारियां लाए हैं। सबसे पहले हम करेंगे चर्चा लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती के विषय पर। फिर आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता कुकून पालन यानी कि सेरीकल्चर विषय पर, जिस पर आपको जानकारी देंगे श्री मनोज कुमार राय जी। तो आरंभ करते हैं कार्यक्रम विविधा और सबसे पहले डालते हैं थोड़ा प्रकाश लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर। श्रोताओं, लाल बहादुर शास्त्री जयंती हर साल 2 अक्टूबर को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जिसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हुआ था। इन्होंने 9 जून 1964 से 11 जून 1967 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। एक बहुत प्रसिद्ध नारा है जो इन्होंने दिया था जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, वह नारा है जय जवान जय किसान। 11 जनवरी 1967 को ताशकंद में उनका रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया था। उन्हें मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद 1967 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2 अक्टूबर यह दिन उनकी सादगी, ईमानदारी, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान को याद करने और उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सब प्यार से बापू कहते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बापू सिर्फ एक राजनेता या स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि वे एक महान दूरदर्शी और युग पुरुष थे। उन्होंने हमें सिखाया कि बिना हथियार उठाए भी बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों के जरिए इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी और अंततः हमारे देश को आज़ाद कराया। बापू का जीवन खुद में एक संदेश है। उन्होंने हमेशा स्वच्छता, स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता के साथ सामाजिक बुराइयों को दूर करने पर बहुत जोर दिया। आज के दिन हम केवल बापू को याद नहीं करते, बल्कि उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। हम अपने आसपास सफाई रखें, सच का साथ दें और किसी के साथ प्रेम और आदर का व्यवहार करें। जी हाँ श्रोताओं, अगर आपने ध्यान से देखा तो सब जगह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अब आइए सुनते हैं कैलाश खेर का मैसेज और भारतीय सेना गीत।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता। कुकुन पालन और साथ ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश में जो लोन दिए जा रहे हैं उस विषय पर आपको देंगे हम जानकारी इस भेंट वार्ता के जरिए। और आपको जानकारी दे रहे हैं श्री मनोज कुमार राय जी। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
1: मैं मनोज कुमार राय, मैनेजर खादी ग्राम उद्योग संघ चाईवासा। सभी रेडियो सुनने वाले को मेरा नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, ये हमारे साथ श्री मनोज कुमार राय जी हैं जो आज हमें बहुत सारी ज़रूरी जानकारियां देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम सन्मार्ग और जानते हैं इनके पास हमें देने के लिए क्या क्या ज़रूरी जानकारियां हैं। तो सर, आप सबसे पहले बताइए कि आप जो ये काम करते हैं तसर का, इसका ऑफिस चाईबासा में कहाँ पर है और भारत सरकार के किन योजनाओं के अंतर्गत आपका ये काम आता है?
1: भारत सरकार खादी ग्रामोद्योग आयोग
0: जी,
1: एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये संचालित है खादी ग्रामोद्योग
0: जी।
1: इन्हीं का जो है सो सेंट्रल सिल्क बोर्ड चाईबासा में, जो कि ओवरब्रिज के नीचे में स्थापित है, वो सारे कुल्हान प्रमंडल से जितने भी कोकुंस किसान जो जंगल से कलेक्ट करते हैं उनको ला कर वहाँ पर वो सिलिंडर सिल्क बोर्ड में जमा करते हैं। और वहाँ से जितने भी खादी संस्थाएं हैं वो अपने अपने कामगारों को देने के लिए यहाँ पर कताई बुनाई के काम में वो यूज करते हैं।
0: अच्छा, मतलब बहुत जगहों से ये कलेक्ट होकर एक जगह चाईबासा में आकर,
1: चाईबासा में सेंट्रल सिल्क भारत सरकार वहाँ पर एक प्रतिष्ठान है, वहीं से सभी जगह जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है।
0: अच्छा, तो आप एक बार ये भी बता दीजिए कि किसान कहाँ कहाँ से ये कुकुन सप्लाई करते हैं?
1: ये हाट गमरिया हो गया, कुचाई हो गया, खरसावा हो गया, मनोहरपुर है, चक्रधरपुर है, ये सारा कुल्हान प्रमंडल में, हमारा जो कुल्हान प्रमंडल है देश का कुकुन उत्पादन में 60% हिस्सा कुल्हान प्रमंडल का ही।
0: अच्छा, मतलब इतनी सारी जगहों से ये कुकुन, जिसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं जी, ये सेरीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो कीड़े हैं, सिल्क के जो कीड़े हैं, इनका उत्पादन किया जाता है और उसके बाद वहाँ से इन्हें लेकर एक जगह पहुँचाते हैं जहाँ से आपको ये सब मिलता है। आपका ऑफिस चाईबासा में कहाँ पर है?
1: ये खादी ग्रामोद्योग का ऑफिस सदर बाजार निधर पिलाई हॉल लेन के पास स्थित है। यहाँ पर बिक्री सेंटर भी है और कताई बुनाई का प्रोडक्शन सेंटर भी है सिल्क खादी का। और यहाँ हमारे पास जो है हर्बल उत्पाद भी है, जिसके तहत पीएमईजी की भारत सरकार की योजना चला रही है खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से, उसका नाम है पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके तहत खादी ग्रामोद्योग को 60% लोन डिस्ट्रीब्यूशन करना है ग्रामीण क्षेत्र में।
0: अच्छा,
1: जिसके तहत जो है सो आप अगरबत्ती बना सकते, जितने सारे प्रोडक्ट है मांस मदिरा जो ये छोड़ के,
0: अच्छा मतलब अल्कोहल फ्री जो भी चीज़ें
1: वो है, आप सारी योजना को बना सकते हैं। उसके लिए खादी ग्रामोद्योग एक मार्केट प्रोवाइड कर रही है। आप पूरे देश में खादी ग्रामोद्योग के सेंटर पर आप जो भी बना रहे प्रोडक्ट उसको खादी ग्रामोद्योग के काउंटर पर दीजिए, खादी ग्रामोद्योग उसको बेचेगी, आपको पैसा देगी।
0: अच्छा, तो इसके अंतर्गत आप लोन वगैरह भी,
1: लोन वगैरह भी यहाँ पर जो है सो मिलता है 30% की सब्सिडी।
0: अच्छा, तो किन किन गांवों में आप अभी तक ये लोन दे चुके हैं? ऐसा
1: हम लोग जो है से समय समय पर मधुमक्खी पालन के लिए,
0: मधुमक्खी
1: के लिए, उसके लिए टोंटों में और 500 मधुमक्खी बक्सा भी पिछले 2-3 साल पहले हम लोग जो है वहाँ पर वितरण किए थे किसान लोगों को, वहाँ भी मधु कलेक्ट हो रहा है
0: जी।
1: उसके बाद कोचरा गाँव है जगनाथपुर से थोड़ा पहले, वहाँ पर हमने जो है चाक स्वचालित चाक जो था बिजली चाक,
0: अच्छा,
1: जिसे कुल्हड़ बनाते हैं, मिट्टी का दिए बनाते हैं,
0: हाँ।
1: वो भी हमने 60 वहाँ पर प्रोवाइड किया है।
0: अच्छा।
1: उसके अलावा आपका झीक पानी के पास जो है वहाँ भी इमली से, इमली को बीचा अलग करने के लिए उसका एक प्रोसेसिंग प्लांट।
0: अच्छा।
1: उसके तहत बहुत सारी योजनाएं जो हम लोग चला रहे हैं। मोची लोग के लिए किट आ रहा है, पूरा मोची लोग को पूरे सामान भर के हम लोग बक्सा में बंद करके उसको दे रहे हैं कि मोची लोग भी अपना रोजगार सृजन का कार्यक्रम करें।
0: मतलब कुल मिलाकर अगरबत्ती बनाने से लेकर
1: सारी चीजें हैं,
0: हाँ, मधु बनाने से लेकर मोची और सभी की सहायता की जा रही है भारत सरकार के द्वारा।
1: हम लोग का मेन उद्देश्य है रोजगार सृजन करना, जो अंतिम पिछड़े व्यक्ति हैं उनको रोजगार के लाके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना।
0: जी, ये तो बहुत जरूरी है। अगर एक एक व्यक्ति प्रगति करेगा तभी हमारा देश भी प्रगति की ओर बढ़ सकेगा। तो सर, जैसा आपने बताया कि यहाँ पे तसर की कताई बुनाई ये सारे काम होते हैं, तो आप एक बार हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि कुल मिलाकर यहाँ पर आपने कितने लोगों को कार्यरत किया है और कितने लोग कुल मिलाकर यहाँ काम करते हैं?
1: यहाँ लगभग अभी तसर कताई के काम में अभी लगभग बस 16-17 महिलाएं हैं
0: जो जी मैंने देखा कि अधिकतर मुझे महिलाएं ही दिख रही हैं।
1: अधिकतर कताई का काम जो है महिला ही करती है
0: जी,
1: और फैब्रिक जो बुनाई होता है उसमें पुरुष लोग ज़्यादा, उसमें पुरुष लोग करते हैं, जो लूम चलाना पड़ता है थोड़ा, हाँ। उसमें मेहनत होता है।
0: अच्छा,
1: फिर उसका धुलाई होगा, प्रोसेसिंग होगा, उसके लिए भी वही करते हैं।
0: मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे 17 से 18 लोग कार्यरत महिलाएं कार्यरत हैं और पुरुषों की संख्या लगभग क्या होगी सर?
1: पुरुष लगभग 7-8 लगभग है,
0: 7-8 है, जिसमें से कुछ बिक्री विभाग में रहते हैं,
1: ग्राम उद्योग विभाग में भी है,
0: और इनमें से कुछ यहाँ की लोकल हैं और
1: अधिकतर लोकल ही है।
0: अच्छा, अधिकतर लोकल है। और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए सरकार के तरफ से क्या सुविधाएं हैं?
1: उनके लिए जो है सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, सरकार उनको जगह रहने के लिए जगह दे रही है।
0: जी, मतलब क्वार्टर है ना, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं। सर, मैंने सुना है कि सिल्क में बहुत तरह तरह के वैरायटीज आते हैं, बहुत सस्ते से लेकर बहुत महंगे तक के रेंज में सिल्क मिलता है।

0: तो ये सिल्क जब एक ही कीड़े से बन रहा है तो इसकी क्वालिटीज में इतना फर्क क्यों आता है?
1: होता क्या है कि इसमें कीड़ा जो है, कीड़ा अगर कोकून्स के अंदर में बंद है,
0: जी
1: उससे जो धागा हम निकालेंगे वो धागा बहुत बारीक बनेगा, जिससे हम साड़ी बनाते हैं, मलबरी बनाते हैं, जो सबसे फाइन क्वालिटी का कपड़ा होता है। कीड़ा अगर कोकून से काट के बाहर निकल गया है, उसके बाद जो बनता है उसको कटिया बोलते हैं, कटिया धागा।
0: अच्छा,
1: कटिया, उसका नाम कटिया धागा।
0: मतलब वो कीड़े जो हैं वो खुद से कुकून का मुंह खोलकर
1: बाहर निकल गए, निकल गया तो उसको कटिया धागा बोलते हैं, उसका मोटा कपड़ा बनता है।
0: अच्छा,
1: जिसे कुर्ता बनाने के काम आएगा, बंदी बनाते हैं हम लोग, कोट बनाते हैं उसका
0: जी,
1: हाँ वो सब बनता है, मोटा धागा बनता है। यही क्वालिटी का अंतर पड़ जाता है, इसके कारण जो है सो क्वालिटी में।
0: मतलब अगर कीड़ा अंदर रह जाए तो
1: बारीक धागा,
0: हाँ तो ऐसा क्यों होता है सर? हवा लगने से वो कुकून के धागे मोटे हो जाते हैं?
1: हाँ,
0: क्या
1: तो उसमें ये होता है क्या है कि उस थोड़ा मोटा हो जाता है, जब कीड़ा काट के बाहर निकल जाती है तो फैल जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ फैलने के बाद जो है सो धागा मोटा हो जाता है।
0: मतलब कुल मिलाकर इसका जिस्ट ये निकलता है कि जब कीड़े अंदर में हैं और साथ में बॉईल हो रहे हैं तो फाइन क्वालिटी का सिल्क मिलता है, जो काफी महंगे रेट में बाजार में
1: सारी हम लोग बनाते हैं
0: जी। तो जैसा कि आपने हमें बताया कि यहाँ पे आप धागा बनाते हैं, यानी कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ का सिल्क के धागे हैं, उसके बाद आप उन धागों का क्या करते हैं?
1: जैसे सिल्क का धागा बनाने के बाद उसको हम बुनाई में भेजते हैं वीविंग के लिए। वीविंग के लिए वहाँ से बुनाई होके आता है, तो फाइन धागा जो बनता है उसका हम लोग साड़ी बनाते हैं
0: जी।
1: और जो मोटा धागा जो कोकुन काट के निकल जाता है उसका धागा को हम लोग कटिया कपड़ा बनाते हैं।
0: अच्छा,
1: उसको कुर्ता बनाते हैं, उसका बंडी बनाते हैं, कोट बनाते हैं, बना के उसके बाद हम लोग काउंटर, खादी ग्रामोद्योग के जितने काउंटर हैं कुनहाल पन्ना में सभी जगह जो है सेवलाल कराते हैं, रांची वगैरह जितने जो है बड़े बड़े सेंटर है सब जगह, फिर वहाँ काउंटर पर बिकता है।
0: तो पहले यहाँ धागा बनता है, फिर आप उसको फैब्रिक बनाने के लिए कहाँ भेजते हैं?
1: बहरागोड़ा में भेजते हैं।
0: बहरागोड़ा में इसका फैब्रिक बनता है,
1: वहाँ अच्छे बुनकर हैं।
0: अच्छा, अच्छे बुनकर हैं। और ये फैब्रिक में कलर आप कैसे चढ़ाते हैं? क्योंकि जैसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सारे धागों का कलर एक ही है,
1: एक ही।
0: तो आप सिल्क के कपड़ों को फिर अलग अलग कलर कैसे देते हैं?
1: जैसे मान लीजिए कि ये कपड़ा जो है नेचुरल कलर है
0: जी,
1: और खादी का नेचुरल कलर ही पहचान है।
0: ज्यादातर हमें
1: नेचुरल अगर देखेंगे तो वो पहचान जाएंगे कि खादी है, और कलर करेंगे तो ये मार्केट से कंपेरिजन हो जाएगा इसका, इसलिए ज़्यादातर नेचुरल का ही डिमांड रहता है हमारे काउंटर पर, खादी ग्राम के काउंटर पर पूरे देश में। और लेकिन अगर लोगों के ज़रूरत के हिसाब से अगर हमको कलर देना पड़ता है तो फिर उसका कलर कराते हैं, कलर करके फिर साड़ी वगैरह जो है कलरफुल चाहिए
0: जी,
1: इसके लिए, हाँ इसके लिए कलर कराते हैं, कलर करवा के फिर काउंटर पर।
0: तो मतलब ज़्यादातर आप बोल रहे हैं कि जो नेचुरल कलर होता है सिल्क का, वो घी कलर जैसा जो कलर आता है जी, उसके बाद आप उसमें अलग अलग कलर चढ़ाते हैं जब जैसा डिमांड आए उस हिसाब
1: से। उसके अलावा हम लोग सिल्क बनाने के बाद फैब्रिक जब बन जाता है उसके बाद हम लोग इस पर मधुबनी पेंटिंग भी करवाते हैं
0: जी। अभी मैंने वो आपके काउंटर में देखा, आपका जो बगल में जो आपका दुकान है वहाँ पे मैं देख रही थी अभी, काफी सुंदर सुंदर प्रिंट किए हुए
1: मधुबनी पेंटिंग हम लोग का, जो कि हाथ से होता है
0: जी।
1: एक साड़ी को मधुबनी पेंटिंग करने में 5 दिन लगता है,
0: काफी सुंदर भी लग रहा
1: है, बड़ी डिमांड है इसका, दिल्ली वगैरह मुंबई वगैरह बहुत ज्यादा डिमांड है, हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते इसका, इतना ज्यादा है, चाहे भाषा में थोड़ा कम है लेकिन यहाँ भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
0: अगर हम लोग कुछ ऑर्डर करें कि इस कलर में आप हमें मधुबनी प्रिंटिंग में साड़ी बना कर दें या वैसा कुछ, तो ये
1: अवेलेबल है, संभव है, संभव ये करवा दूंगा
0: जी। और फिर उन कपड़ों पे फैब्रिक पे कलर चढ़ने के बाद, उनकी डाइंग होने के बाद, आप उसको अलग अलग जगह सप्लाई कर देते हैं, वहाँ से लोग खरीद के
1: हमारे ही काउंटर पर भेजते हैं। जैसे हमारा काउंटर रांची है, धनबाद है, हजारीबाग है, टाटा है, सारा काउंटर पर ही जाता है, अलग हम लोग बॉर्डर मार्केट में नहीं ले सकते।
0: ये तो मतलब पूरा गवर्नमेंट के प्रोविजन के
1: अंदर, रूल रेगुलेशन के अनुसार ही हम लोग को प्रोवाइड करते हैं
0: जी। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को एक बार ये जरूर बता दीजिए कि आप इस सरकार की ये जो योजना है इनको हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार आप लोगों तक पहुंचा सके, उसके लिए आप क्या क्या करते हैं? जैसे आप इन योजनाओं को प्रचलन में लाने के लिए अपने तरफ से क्या क्या एफर्ट्स डालते हैं?
1: हमारे खादी ग्रामोद्योग के तहत भारत सरकार एक योजना चला रही है जिसका पीएमईजी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके तहत 35 लाख तक ग्रामीण क्षेत्र में लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी 30% सब्सिडी पर।
0: अच्छा,
1: इसके माध्यम से हमारा मेन उद्देश्य है कि गांव-गांव में लोग उद्योग धंधा, छोटा छोटा उद्योग धंधा लगाए, लघु उद्योग के माध्यम से जो भी सामान बनाना चाहे वो एक प्रोजेक्ट बनाए, ऑनलाइन जाए, पीएमईजीपी खादी के वेबसाइट पर जाए, पीएमईजीपी खोले, वहाँ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर जो उनको इच्छा है, एक प्रोसेस के तहत बजट बनाए, उसके बाद वहाँ पर जाए, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें, उसके बाद उनका जो प्रोसेस चालू हो जाएगा, उसके बाद उनके पास जो अगर मान लीजिए अगरबत्ती बनाना चाहते हैं, साबुन बनाना चाहते हैं, शैम्पू बनाना चाहते हैं, हनी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, वेबसाइट पर जाने के बाद बहुत सारी 170-180 के लगभग जो है सो प्रोडक्ट है बनाने के, उसके तहत जो है सो लोन प्रोवाइड हो रहा है, वो भी 30% सब्सिडी के माध्यम से। आप हमारा यही कहना है कि रेडियो सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं, सभी से हम यही कहेंगे कि आप जो है सो प्रोडक्ट बनाइए, जो भी बनाना आपकी इच्छा है वो बनाइए, और खादी ग्राम उद्योग के काउंटर पर दीजिए, जो आपका नज़दीकी काउंटर है, जैसे अभी चैबासा में हम बोल रहे हैं, तो चैबासा का आपका है सदर बाज़ार के पास है काउंटर है, वहाँ पर आप दीजिए, बनाइए वहाँ दीजिए, आपका माल जो आप बना रहे हैं उसको आपको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, खादी ग्राम उद्योग आपका मार्केटिंग करेगी, वो बेचेगी, आपको पैसा जो बेचेगा वो पैसा मिलेगा। जो भी निकटतम है, आप रांची के रहने वाले हैं, जमशेदपुर के रहने वाले हैं, खादी ग्राम उद्योग काउंटर पर संपर्क करके आप वहाँ पर जो जो भी बना रहे प्रोडक्ट वहाँ पर आप दीजिए, आपका माल जो है जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो खादी ग्राम उद्योग बेचेगी, आपको पैसा देगी। आप जोर शोर से इसके लगिए, और सरकार आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, आप जो है उद्योग धंधा लगाइए, मुद्रा योजना के तहत भी लोन मिल रहा है, 10 लाख से 20 लाख हो गया, उसके तहत भी आप उद्योग धंधा लगा सकते हैं। एक हमारा योजना तो पीएमईजीपी है ही, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, जिसमें 30% सब्सिडी है, केवल उद्योग के लिए है। आपको मार्केट सबसे बड़ा समस्या होता है यहाँ पर कि हम कोई प्रोडक्ट बना लिए लेकिन हमारा मार्केट में बिकता नहीं, तो सरकार और भारत सरकार ये कर रही है कि सबसे पहले कि खादी ग्राम उद्योग आपको ये कर रही है, खादी ग्राम उद्योग हर बड़े शहर में, छोटा से छोटा शहर में उपलब्ध है, आप बनाइए प्रोडक्ट और खादी ग्राम उद्योग के काउंटर पर दीजिए।
0: सर मतलब एक मिनट, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी ये काम करना चाहेंगे वो प्रोडक्ट्स बनाकर खादी ग्रामोद्योग को देकर वहाँ से अपने पैसे ले सकते हैं, उसके बाद वो खादी ग्रामोद्योग जब उसको बेचेगी तब बेचेगी, वो बाद की बात है।
1: हाँ, वो बेचेगी अपना,
0: मतलब आपको आपके काम के पैसे उसी समय मिल जाएंगे, तो ये तो बहुत
1: जरूरत हुआ तो उसके अनुसार भी आपको मिलते रहेगा,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जहाँ तक सहयोग हुआ, एक आर्टिजन हम लोग कार्ड बनाते हैं जो कि दिल्ली में नेशनल ट्रेड फेयर लगता है, झारखंड पे पूरे देश का हर स्टेट का लगता है, तो हमारा भी झारखंड पेविलियन लगा हुआ है खादी ग्राम उद्योग का भी, 14 नवंबर से 14 दिसंबर, एक महीने का होता है, प्रगति मैदान में दिल्ली में।
0: अच्छा,
1: और वहाँ पर एक फ्री आपको स्पॉट प्रोवाइड होता है, आप नेशनल स्तर से इंटरनेशनल स्तर पहुँच सकते हैं। एक ऐसी है, हम बता रहे हैं, इसका उदाहरण दे रहे हैं, एक आस्था अग्रवाल करके है वहाँ जमशेदपुर में, उन्होंने एक साबुन से शुरुआत किया था, वो साबुन आजकल इतना डिमांड हो गया कि पूरे देश में साबुन दे नहीं पा रहे हैं,
0: छोटा
1: सप्लाई नहीं, इतने बड़े योजना चल रहा है, हम लोग सहयोग करने जो भी आदमी इसमें आ जाएंगे हम लोग उनके लिए एकदम हमेशा बैठे हैं सहयोग करने के लिए, कोई भी कठिनाई होगी यहाँ से रांची ऑफिस तक हम इसका समाधान करें।
0: जी, और ये तो हम सब जानते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, अगर आपके पास फिलहाल कोई काम नहीं है और आप रोज़गार की तलाश में हैं तो आप सरकार की इन योजनाओं से जुड़कर खादी ग्रामोद्योग के ज़रिए भी बहुत सारे काम पा सकते हैं, रोज़गार पा सकते हैं, और बहुत सारी सुविधाएं भी है इसमें, जैसे आपको लोन मिल रहा है, आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट जो आप नॉन अल्कोहलिक हो आप कुछ भी बना सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, और अपने नियरेस्ट सबसे समीप वाले काउंटर में, खादी के काउंटर में वो जाकर डिलीवर कर सकते हैं, बाकी की सारी जिम्मेदारी खादी ग्रामोद्योग के लोगों की है। जी सर,
1: एक और इसमें हम जोड़ना चाहेंगे, हमारे जितने भी चैबासा के अगल बगल के जो भी महिलाएं हैं, अगर वो तसर का कताई धागा निकालने का अगर काम सीखना चाहती है, ट्रेनिंग लेना चाहती है, प्रशिक्षण लेना चाहती है, तो हमारे पास उपलब्ध है प्रशिक्षण, यहाँ ले सकती है, यहाँ काम भी उनको मिलेगा और काम भी कर सकती है।
0: जी सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि इस इंटरव्यू के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप तक पहुँचे और आपसे आकर जुड़े।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।

श्रोताओं, इन्हीं जानकारियों के साथ आज का कार्यक्रम विविधा यही समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। अब आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम का सबसे पहला गाना सुनवा रहे हैं फिल्म जोश से, आवाज़ है अभिजीत की।

0: अभी आप सुन रहे थे चमेली फिल्म का गाना, आवाज़ सुनिधि चौहान की थी।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मिस सीमा
4: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों, लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल

0: लिस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
6: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
5: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: कार्यक्रम रसरंजन का अगला गाना आइए सुनते हैं फिल्म मस्ती से। आवाजें हैं गायत्री अय्यर और स्नेहा पंत की।

मेरे यार की शादी है इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। श्रोता इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रसरंजन यही समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है, इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का, लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है, प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
3: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का, लिखते हैं,
2: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को, विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा, प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे। आपका हृदय

0: से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से, जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
0: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
1: श्रोताओं, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
0: जी।
1: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
0: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
1: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था। वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
0: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
1: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें।
0: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहां रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे,
1: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रता पूर्वक साफ इनकार कर दिया
0: जी।
1: उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
0: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था। वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
1: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था
0: जी।
1: वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
0: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प जन्म ले रहा था, जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
1: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
0: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
1: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए
0: जी।
1: उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
0: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
1: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
0: तो श्रोताओ, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
1: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
0: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात थी हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
0: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।
2: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
3: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। रामधुन, महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिबे इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: हमारी खुश नसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
2: ये अचकन देसी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और फरमाया,
2: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी

0: हर देसी चीजों में अपनी उसी पांचवीं चीज का ख्याल आ जाता। ४९४५ का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
1: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
2: जी बापू।
1: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
3: जी बापू, हम ध्यान
2: रखेंगे।
1: अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
4: कुछ खास होना चाहिए।
2: मजदूर रहेंगे उसमें,
3: मेहनत करने वाले।
4: बापू, धर्म का काम है ये तो।
2: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
1: धर्मशाला, हाँ ठीक है, धर्मशाला।
0: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते। एक और साहब वहां बैठे हुए थे, बोले,
4: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
0: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
1: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
4: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल, ये ठीक।
0: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल की लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो।
2: मुझे भी लीमू दो ना।
1: ये लो।
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो
2: पड़ी।
0: असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करें।

0: आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं, नहीं।
2: वो किनारे पर ही तो होगा ना?
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था, उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई, दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापू को जरूर बताऊंगी।
1: अरे मेरे
2: पापू।
1: नहीं बेटा, मेरी बात तो सुन।
2: नहीं पापू।
1: नहीं, अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे
2: पापू।
1: नहीं नहीं, अरे
2: पापू।
1: अरे अरे सुन मेरी बात। अरे
0: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
2: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
2: ठीक है बापू।
0: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
3: अच्छा बताओ क्या बात थी?
1: बापू, बापू ये सब बस एक मजाक था।
3: देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
1: जी बापू, मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।
4: कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए। अदब रखकर बैठ जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉल्स्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
2: अरे बापू जी के आने का समय आने वाले हैं। हाँ हाँ, और टमाटर काट लो। हाँ हाँ, और मैं ये मिर्ची काट लूँ।
3: अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
2: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
3: क्या?
2: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
3: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
2: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
3: ठीक है चंपा, ठीक।
4: बापूजी के आने का समय हो रहा है, मैं टमाटर काट।
3: मुझे मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
2: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियां इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
3: नमस्कार बापू।
4: प्रणाम बापू।
5: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
3: बाबूजी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
2: बापू सब्जियां काट रहे थे।
5: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
2: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
5: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
2: जी बापू।
5: अच्छा जाओ।
2: जी।
5: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
3: जी।
2: चलो चलते हैं।
3: जी।
0: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे। तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
4: बापू बापू ये देखिए।
5: अरे हाँ हाँ बिमला, आओ कहो कैसे आना हुआ?
4: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं। दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
5: देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना?
4: जी।
5: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
4: हाँ।
5: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। उन्होंने ऐसे दे दिए। उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
4: जी बापू।
5: हाँ समझ गई ना?
4: जी।
5: जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
4: जी बापू धन्यवाद।
0: साथियों, यह सुनकर बिमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें लेकिन आस पास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
6: अरे बापू ये बर्तन तो धुल गया है।
7: अरे सुधीर नहीं, अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
6: हाँ?
7: अभी तो इसे और चमकाना है।
6: ओ
7: देखो इसे और चमकाना हो। हाँ। ये लो अब देखो, अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
6: चमकने भी लगा।
7: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए, समझे सुधीर?
6: हाँ जी बापूजी।
7: हाँ शाबाश।
0: तो साथियों हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं। और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये छायावासा केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: आज दिन की दूसरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। 20वें एशियाई खेलों में दिन क्या शानदार है रहा है भारत के लिए अब तक। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी साक्षी मंडवाल के साथ। पहली अपडेट में हमने बताया कि आर्चरी की रेंज से स्वर्ण पदक आया, रजत पदक आया और उसके बाद अब बॉक्सिंग का रिंग लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम महिलाओं के मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत लिया है और क्या शानदार जीत है उनकी। पिछली बार भी उनके पास पदक था, वो सिल्वर था। इस बार उन्होंने चीन की जी बाओ को परास्त किया। उनके मुक्कों का दम देखा सारी दुनिया ने। क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल में जरूर थोड़ा मुश्किल से उनको हुई थी, लेकिन आज वो पूरे फॉर्म पे थी और स्वर्ण पदक एक और भारत को।
1: जी, और अगर रेसलिंग की ही बात कर रहे हैं तो इसी न्यूज़ को आगे बरकरार रखते हैं। भारत के सुजीत कलकल ऑल्सो एडवांस टू द मेंस फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल विद अ डोमिनेटिंग 10-0 विक्ट्री ओवर ईरान अब्बास इब्राहिम जदे सवादो की बाय टेक्निकल सुपीरियोरिटी। सुजीत को सिर्फ 30 सेकेंड चाहिए थे ऑफ द सेकेंड पीरियड टू फिनिश द क्वार्टर फाइनल, एडिंग 2 more points टू कम्प्लीट अ कॉम्प्रिहेंसिव विन, और इसके साथ उन्होंने सेमीफाइनल में अब प्रवेश कर लिया। और आपको ये भी बता दें कि सेमीफाइनल का बाउट भी शुरू हो चुका है, जिसका हो सकता है हम आपको अपडेट इसी अपडेट
0: जी, भी बिल्कुल मैं तैयार हूँ इसके लिए।
1: तैयार है जरूर।
0: ये उनका मुकाबला हो रहा है जापान के कोतोरो कियोका से और पहला पीरियड में अब बहुत बढ़िया दाम लगाए वहां पर सुजीत ने। एक समय तो 5-2 की बढ़त ले ली, लेकिन वहां पर चैलेंज किया जापान के पहलवान ने और वो 2 अंक चैलेंज को मान लिया गया, वापस कर दिए गए। 3-2 से बढ़त थी, इसके बाद जापानी ने एक बढ़िया दाम लगाया, 3-3 की बराबरी। मुकाबला बस अभी खत्म हुआ है, ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन लग रहा है अंकों के आधार पर सुजीत अब फाइनल में पहुंच गए हैं। कंफर्मेशन बस होने वाली है।
1: चलिए, थोड़ा इंतजार रहेगा कंफर्मेशन का उसका। लेकिन टैक्वांडो की दुनिया से आपको बता दें कि भारत का सफर इसके अंदर आकर आज समाप्त हो गया। इंडियाज कशिश मलिक सफर्ड 1-2 डिफीट टू कजाकिस्तान रीता बक्शेवा इन द मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल टैक्वांडो क्वार्टर फाइनल्स। मलिक्स कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर शी लॉस्ट आउट ऑन द हेड किक काउंट विद द अदर किक मेट्रिक्स रिमेनिंग क्लोजली मैच्ड बिटवीन द 2 competitors।
0: और इसके अलावा साइकिलिंग में आज तमाम मुकाबले हैं। सुबह से ही वेलोड्रोम जो है गुलजार हो जाता है। आज भारत कई स्पर्धाओं में महिलाओं के ओमनियम में हर्षिता जाखड़ वो 12वें स्थान पर रहीं और कुल 13 लोग ही थे तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। अब पुरुष कीरिन में रोनाल्डो सिंह थे, वो क्वार्टर फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई वो भी नहीं कर सके। लेकिन डेविड बेकहम उन्होंने बहुत शानदार खेल दिखाया, उन्होंने क्वालिफाई किया और वो पहुंच गए हैं अगले चक्र में। लेकिन इसके बाद रिपेचेज में डेविड क्वालिफाई उन्होंने यहां पर बढ़िया खेला। साइकिल के पैडल अभी चलने वाले हैं भारतीय साइकिलिस्ट के,
1: उम्मीद करते हैं कुछ अच्छी खबर लेकर आए वो भारत के लिए। आगे बढ़ेंगे सेपेक्टक्रो की तरफ भी दोस्तों। एंड इन द ग्रुप ए मैच ऑफ द सेपेक्टक्रो वुमेन्स क्वाड्रेंट थाईलैंड हैव एब्सोल्युटली डेसिमेटेड इंडिया। जी हां, दे टुक द सेकंड सेट बाय अ मार्जिन ऑफ 15-4 एज दे वन द मैच इन स्ट्रेट सेट्स। दे वर ड्राउन 13-15 बाय देयर ओपोनेंट्स इन द फर्स्ट सेट एज दे लॉस्ट इट अर्लियर। इंडिया हैव दस बोर्ड आउट ऑफ द इवेंट आफ्टर लूजिंग ऑल 3 ऑफ देयर ग्रुप गेम्स। जी हां, भारत का सफर इसके अंदर भी समाप्त हो ही गया।
0: और रेसलिंग में एक खबर और भी है, अच्छी खबर है। दीपांशी हार गई थी 50 किलोग्राम भार वर्ग में आज, लेकिन उनको मौका एक और मिल गया है रेपेचेज में और कंबोडिया की पहलवान के साथ उनका मुकाबला बस इस समय शुरुआत हो गई है। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है।
1: जी, और आपको याद दिला दें कि आज के दिन की शुरुआत सबसे अच्छी खबर के साथ हुई थी, जहां पर आर्चरी ने हमें आज गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्रदान किया। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो पहली बार आर्चरी की हिस्ट्री में एशियन गेम्स में ऐसा हुआ है कि भारत की टीम फाइनल के अंदर पहुंची। और हम बात करें वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम की, जिसने आज हिस्ट्री बना दी बाय विनिंग द गोल्ड thereby defeating South Korea in a very thrilling final. वहीं पर अगर हम recurve mixed team के final उसकी भी बात करें finals की भी, तो उसमें भी हमने देखा कि भारत ने आज हमें उसके अंदर भी एक silver पदक ला के दिया। So recurve mixed team के अंदर we were able to satisfy ourselves with a silver
0: while, और ये और खुशी की बात इसलिए है क्योंकि कोरिया जो है वो पावर हाउस है। कोरिया 10 बार चैंपियन रहा है, उस टीम को परास्त करना और इस अंदाज से परास्त करना बहुत ही शानदार, लड़कियों ने गजब करके दिखाया।
1: जी, और मिक्स टीम सेमीफाइनल, मिक्स टीम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स वी गॉट द सिल्वर आउट देयर डेफिनेटली। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर गुड न्यूज ऑफ द डे ऑल्सो, और शुड आई से a nice news that's coming up way, which is in rugby sevens, where India produced a dominant performance to defeat Malaysia 26-5 in the women's rugby seven pool E match at the Asian Games. Bhumika Shukla scored 3 tries, while Tudu, Sandhya Rani and Kumari Aarti also crossed the line as India secured a comfortable victory.
0: Sakshi, बहुत अच्छी बात इसलिए भी है ये क्योंकि rugby seven का पहला मैच जो कल भारत ने खेला था बहुत बुरी तरह हारे थे उसको देखते हुए आज उतनी ही अच्छी जीत है 26-5 का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर होता है
1: राइट मेडल टेबल पे हो सकता है थोड़ी सी हलचल जरूर मचे लेकिन सेवेंथ पोजीशन लेकिन क्योंकि अब ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि रेसलिंग के अंदर भी हो सकता है मेडल्स आए तो मेडल टेबल में थोड़ी बहुत हलचल तो मचेगी हम आपको वो अपडेट अगले अपडेट में लाकर देंगे कि भारत की पोजीशन में क्या उत्थान हुआ है और क्या चेंजेस आए हैं ऑन द मेडल टेबल फॉर नाउ इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक सेइंग गुड बाय विल बी ज्वाइनिंग बैक अगेन इन द नेक्स्ट अपडेट एट 11:30 AM
2: और इस वक्त हम खास आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जोहार रांची तो बने रहिए हमारे साथ लौटेंगे कुछ ही पलों में
3: एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-09-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी
2: स्वागत है अभिनंदन है आपका आपके अपने प्रोग्राम जोहार रांची में और आज के जोहार रांची के सफर में एक बार फिर आपकी हम सफर है आपकी दोस्त शिल्पी
4: और साथ में मनीष दोस्तों कहते हैं ना आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से कीजिए यानी दूसरों से उम्मीद करने से पहले क्यों ना हम वैसा बने जिसकी उम्मीद हम दूसरों से करते हैं
2: तो चलिए आज के सुबह की शुरुआत एक नई सोच के साथ करते हैं आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं किसी परेशान इंसान की बात सुनते हैं और किसी एक अच्छे काम की शुरुआत करते हैं क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते
4: कभी कभी एक अच्छी सी छोटी पहल भी किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है तो आइए आज का दिन सिर्फ हर रोज की तरह नहीं बल्कि कुछ बेहतर करने के लिए एक नए अवसर की तरह शुरू करते हैं
2: इसी नई उम्मीद एक नई ऊर्जा और एक सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते हैं आज के सफर पर और कहते हैं
4: जोहार।

जोहार रांची में अब झांकते हैं अतीत के झरोखे में और देखते हैं क्या कुछ खास हुआ था आज की तारीख में गुजरे वर्षों में। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 2 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में विश्व के सबसे कम उम्र के कुलपति बनाए गए थे। सन 1952 में आज ही के दिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई और सन 1961 में बम्बई में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। सन 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने गांधी सदन के नाम से प्रसिद्ध बिरला हाउस देश को समर्पित किया। सन 1985 में दहेज

निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया। सन 1988 में तमिलनाडु में मंडपम और पंबन के बीच समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल यातायात के लिए खुला और सन 1988 में 2 अक्टूबर को ही कोरिया के सियोल में 24वें ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। सन 2000 में आज ही के दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे और सन 2003 में हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मैगे से भारत की यात्रा पर आए। सन 2004 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कांगो में 5,900 सैनिक भेजने का प्रस्ताव मंजूर किया और सन 2006 में दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु ईंधन आपूर्ति मामले पर भारत को समर्थन देने का फैसला किया। सन 2007 में आज ही के दिन उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच दूसरी शिखर बैठक संपन्न हुई। सन 1924 में राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से लाया गया जिनेवा प्रस्ताव महासभा द्वारा स्वीकृत हुआ लेकिन बाद में उसकी पुष्टि नहीं हुई। सन 2007 में ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक शंघाई चीन में शुरू हुआ। सन 1895 में आज ही के दिन पहला कार्टून स्ट्रिप एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ और सन 1903 में पहली आधुनिक विश्व श्रृंखला मेजर लीग बेसबॉल की वार्षिक चैंपियनशिप श्रृंखला शुरू की गई। सन 1955 में मद्रास के पेरम्बूर में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री ने रेल का पहला डब्बा बनाया।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में हम बातें कर रहे हैं आज के इतिहास की। तो आपको बताएं कि 2 अक्टूबर की तारीख का महत्व सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। दरअसल इसी दिन भारत में 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। भारत में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की ही तरह 2 अक्टूबर गांधी जयंती को भी राष्ट्रीय पर्व का दर्जा हासिल है। गांधी जी ने भारत की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई थी और आज भी उनके विचार हर भारतीय के मन को प्रभावित करते हैं। 2 अक्टूबर 1904 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। उनकी सादगी और विनम्रता के लोग कायल थे। सन 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया उनका नारा जय जवान जय किसान आज के वक्त में भी सटीक और सार्थक है। सन 1891 में भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार विनायक पांडुरंग करमकर का जन्म हुआ। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। इन्हें 1964 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 1900 में प्रसिद्ध बंगाली पत्रकार और महिला क्रांतिकारी लीला नाग का जन्म हुआ, और सन 1901 में देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान करने वाले क्रांतिकारियों में से एक गोकुल लाल असावा का जन्म हुआ। सन 1933 में हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार और सिनेमा कथा लेखक शंकर शेष का जन्म हुआ, और सन 1974 में भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम सिवाच का जन्म हुआ। सन 1985 में भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक भव्या लाल का जन्म हुआ, और सन 1997 में भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन का जन्म हुआ। सन 1979 में अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के जांबाज सैनिक हंगपन दादा का जन्म हुआ था, और सन 1924 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा का जन्म हुआ। सन 1942 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म हुआ था। इन्होंने कटी पतंग, कन्यादान, आया सावन झूम के, लव इन टोक्यो, जिद्दी, मेरा गांव मेरा देश, तीसरी मंजिल, उपकार और मैं तो उसी तेरे आंगन की जैसी कई बेहतरीन फिल्में की। इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड समेत पद्मश्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।

0: आप सुन रहे हैं जोहार रांची।
1: और जोहार रांची में अब हम बातें करें उन महान हस्तियों की जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। सन 1906 में प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का निधन हुआ।
0: उनके द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति 1.24 मिलियन डॉलर में बिकी है। और सन 1964 में भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमारी अमृत कौर का निधन हुआ।
1: राजकुमारी अमृत कौर प्रथम भारतीय महिला थी जो केंद्रीय मंत्री बनी। सन 1950 में इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष बनाया गया था और ये सम्मान हासिल करने वाली वो पहली एशियाई महिला बनी।
0: सन 1975 में भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे के कामराज का निधन हुआ। भारतीय राजनीति में इन्हें किंग मेकर के रूप में जाना जाता है।
1: के कामराज 60 के दशक में कांग्रेस संगठन में सुधार के लिए बनाई गई कामराज योजना के लिए प्रसिद्ध हैं।
0: सन 1982 में सीडी देशमुख का निधन हुआ। ये ब्रिटिश शासन के अधीन आईसीएस अधिकारी और स्वतंत्रता के बाद भारत की तीसरे वित्त मंत्री बने और साथ ही ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे।
1: इन्हें पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि ये कई विदेशी भाषाओं की ज्ञाता थे लेकिन संस्कृत भाषा से इनका खास लगाव था।
0: सन 2025 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हुआ। छन्नूलाल मिश्रा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के शीर्ष ग्रेड

0: सलाहकार रहे, साथ ही वे संस्कृति मंत्रालय के सदस्य भी रहे। उन्हें पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
1: साथ ही इन्हें काशी विश्व सम्मान, तानसेन अवार्ड, नौशाद पुरस्कार, बिहार संगीत शिरोमणि पुरस्कार, भातखंडे पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

0: जोहार रांची में अब बातें आज मनाए जाने वाले विशेष दिन की। तो आपको बताएं कि आज यानी 2 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 15 जून 2007 में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से दुनिया भर में अहिंसा, शांति, सहिष्णुता और समझदारी का संदेश फैलाना है।
0: महात्मा गांधी ने अहिंसा को केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का रास्ता बनाया। उनके लिए अहिंसा का अर्थ था सत्य के साथ खड़े रहना, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा न रखना। गांधी जी का एक प्रसिद्ध विचार है, अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी शक्ति है।
1: अहिंसा की शुरुआत सिर्फ दुनिया बदलने से नहीं बल्कि अपने व्यवहार को बदलने से भी होती है। किसी को चोट पहुंचाना आसान हो सकता है, लेकिन चोट पहुंचाने की क्षमता होते हुए भी संयम रखना, यही असली शक्ति है।
0: अहिंसा हमें एक बेहद सरल संदेश देती है, जीतना जरूरी नहीं समझना जरूरी है, और शायद यही अहिंसा की सबसे खूबसूरत शक्ति है। ये सामने वाले को हराने की नहीं दिल जीतने की कोशिश करती है।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि हम अपनी बात कहेंगे लेकिन अपमान के बिना, हम असहमति जताएंगे लेकिन नफरत के बिना, हम अगर क्रोध महसूस भी करें तो हिंसा का रास्ता नहीं चुनेंगे,
0: यानी जहां तक संभव हो विवाद का जवाब संवाद से देंगे, क्योंकि हिंसा एक पल में सब कुछ तोड़ सकती है, बर्बाद कर सकती है, लेकिन अहिंसा धीरे धीरे रिश्ते, समाज और दुनिया को जोड़ती है।
1: तो आइए आज गांधी जी को केवल तस्वीरों और स्मृतियों में याद ना करें, उनके विचारों को अपने व्यवहार में जगह दें। किसी को क्षमा करके, किसी की बात सुनकर, किसी का सम्मान करके और अपने भीतर के क्रोध पर विजय पाकर।
0: क्योंकि दुनिया में शांति की शुरुआत किसी सीमा पर नहीं होती, ये शुरुआत हमारे भीतर से भी होती है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आइए आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर हिंसा के विरुद्ध और मानवता के पक्ष में एक कदम बढ़ाएं।

0: आज 2 अक्टूबर एक ऐसी तारीख जो एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के रूप में भी याद किया जाता है जिनका उन्हें सम्मान से नमन करता है। जी हाँ, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी आज हम मना रहे हैं।
1: 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जन्मे शास्त्री जी का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन कठिन परिस्थितियों ने उनके हौसले को कभी कमजोर नहीं किया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि महान बनने के लिए साधनों की नहीं संकल्प की जरूरत होती है।
0: सादगी, ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा, अगर इन शब्दों को किसी एक व्यक्तित्व में देखना हो तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम सबसे पहले याद आता है।
1: शास्त्री जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और कई बार जेल भी गए, और आजादी के बाद उन्होंने देश की राजनीति में अपनी सादगी और ईमानदारी की अलग पहचान बनाई।
0: और फिर आया वर्ष 1964, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला।
1: उस समय देश कई चुनौतियों से गुजर रहा था, आर्थिक कठिनाइयां, खाद्यान्न संकट और फिर 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध।
0: इसी दौर में शास्त्री जी ने देश को वो नारा दिया जो आज भी भारतीय जनमानस में गूंजता है, जय जवान जय किसान।
1: इस छोटे से नारे में उन्होंने भारत की 2 बड़ी शक्तियों की पहचान कराई, सीमा पर देश की रक्षा करने वाला जवान और खेतों में देश का पेट भरने वाला किसान।
0: शास्त्री जी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो जो कहते थे उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते थे।
1: शास्त्री जी का जीवन यही कहता है कि नेतृत्व पद से बड़ा नहीं होता, नेतृत्व उस जिम्मेदारी से बड़ा होता है जिसे कोई व्यक्ति ईमानदारी से निभाता है।
0: उनका जीवन भले ही छोटा सा रहा हो, लेकिन देश के लिए उनका योगदान और उनकी विचारधारा आज भी प्रेरणा देती है। शास्त्री जी ने अपने जीवन से साबित किया कि व्यक्ति की महानता उसके कद से नहीं उसके कर्मों से तय होती है।
1: शास्त्री जी की जयंती पर हम एक सीख लें कि ईमानदारी को कमजोरी ना समझें, सादगी को पिछड़ापन ना समझें और अपने कर्तव्य को कभी छोटा ना समझें, और इस महान व्यक्तित्व को शत शत नमन करते हैं।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में अब हम बातें करेंगे उन अनमोल जीवों की जिनके बिना हमारी प्रकृति अधूरी है। जी हाँ, हर वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक भारत में मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह, जिसका उद्देश्य है वन्य जीवों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण की आवश्यकता को समझाना।
1: जरा कल्पना कीजिए, अगर जंगल में शेर ना हो, हाथियों की आवाज सुनाई ना दे, पक्षियों का कलरव धीरे धीरे गायब हो जाए और तितलियों के रंग हमारे आसपास नजर ना आए, तो क्या हमारी धरती उतनी खूबसूरत होगी?
0: शायद नहीं, क्योंकि प्रकृति का हर जीव उसकी एक कड़ी है। बाघ जंगल के पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मधुमक्खियां और तितलियां परागण में योगदान देती हैं और गिद्ध जैसे पक्षी प्रकृति के सफाई कर्मी की भूमिका निभाते हैं।
1: यानी प्रकृति में कोई भी जीव बेकार नहीं है। वन्य जीवों की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा कोई शिकारी नहीं होते, कई बार हमारी अपनी गतिविधियां भी उनके अस्तित्व के लिए चुनौती बन जाती है। जंगलों का कम होना, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं वन्य जीवों को प्रभावित करती है।
0: जब किसी जंगल का क्षेत्र छोटा होता है तो केवल पेड़ कम नहीं होते, उन जीवों के घर भी छोटे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और जब उनके घर खत्म हो जाते हैं तो उनके अस्तित्व पर संकट आ जाता है।
1: भारत जैव विविधता से समृद्ध देश है। हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट तक, सुंदरवन से लेकर मध्य भारत के जंगलों तक हमारे देश में वन्य जीवों की अद्भुत विविधता देखने को मिलती है।
0: और अगर हमारे झारखंड की बात करें तो यहाँ के जंगल और वन्य जीव राज्य की प्राकृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू और अनेक पक्षी और अन्य जीव वन्य जीव यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को समृद्ध बनाते हैं।
1: वन्य जीव संरक्षण केवल सरकार या वन्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, हम भी इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जंगल में जाएं तो कभी प्लास्टिक या कचरा ना छोड़ें, वन्य जीवों से दूरी बनाए रखें, जंगली जानवरों को खाना खिलाने की कोशिश ना करें,
0: पेड़ पौधों और कहते हैं ना कि उनकी प्राकृतिक आवास की रक्षा करें, और सबसे जरूरी वन्य जीवों के प्रति डर या अंधविश्वास के बजाय समझ और संवेदनशीलता विकसित करें।
1: इस वन्य जीव सप्ताह आइए एक संकल्प लें, जंगल बचाएंगे, वन्य जीवों का सम्मान करेंगे, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलेंगे। याद रखिए, वन्य जीव बचेंगे तो जंगल बचेंगे, जंगल बचेंगे तो प्रकृति बचेगी, और प्रकृति बचेगी तो हमारा भविष्य बचेगा।

0: जुहार रांची में अब बातें मौसम के मिजाज की। त्योहारों और खास मौकों से सजी अक्टूबर माह की शुरुआत हो चुकी है और रांची का मौसम भी अपने अंदाज में इस फेस्टिव सीजन का स्वागत करने को तैयार है।
1: पिछले दिनों होने वाली बारिश से जो तापमान में गिरावट थी उसके आज हल्के गर्म रहने की उम्मीद है। हालांकि मौसम सुहाना ही रहने वाला है।
0: दिन का तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, लेकिन सुबह थोड़ी सिरन भरी और शाम राहत वाली महसूस होगी।
1: आसमान में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश की संभावना तो नहीं है। लेकिन अक्टूबर माह की शुरुआत हो चुकी है तो मौसम में बदलाव तो जरूर महसूस होगा।
0: हालांकि मौसम इन दिनों बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, कभी भी करवट ले सकता है। तो हल्के बादल या कहीं कभी कभार बूंदाबांदी से पूरी तरह इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मौसम विभाग की माने मनीष तो उसके अनुसार मॉनसून की विदाई भी हो चली है।
1: कुल मिलाकर आज हमारे शहर में ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी और न ठंड की संभावना है। बस अक्टूबर की एक खुशनुमा शुरुआत हो चुकी है।
0: तो बस आसमान पर नजर रखिए और मौसम के इस बदलते रंग का भरपूर आनंद लीजिए।

0: और चलते चलते आखिर में बस ये कहना चाहेंगे कि रास्ते कितने भी मुश्किल हों, उम्मीद का एक दिया जलाए रखना, वक्त चाहे जैसा भी हो चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना।
1: वो कहते हैं ना कि मुश्किल हालात भी कभी कभी हमारी मुस्कुराहट के आगे घुटने दिन एक नया अवसर है, और हर छोटी सी अच्छी कोशिश एक बड़े बदलाव की नींव बन सकती है।
0: उम्मीद है हमारे प्रोग्राम के किसी एक अच्छी बात ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास भी खुशियां बांटते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इन्हीं बातों के साथ वक्त हो चला है जोहार राज्य के पन्नों को यहीं समेटने का।
1: तो कहते हैं
0: जोहार।

0: वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम जोहार रांची। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो रहे हैं और ये वक्त है श्रोताओं के फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची पर वक्त है श्रोताओं की फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का, और आपकी पसंद कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं समीर का लिखा गीत सोनू निगम की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने और फिल्म का नाम है संघर्ष। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने।

अगली फरमाइश हमने ली है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर की। और इन्होंने सुनना चाहा है जावेद अख्तर का लिखा गीत सोनू निगम और मधुश्री की आवाज़ों में। इस गीत की धुन बनाई है ए आर रहमान ने और फिल्म का नाम है जोधा अकबर।

आइए अब सुनते हैं इनकी फरमाइश। ये हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा, और इन्होंने सुनना चाहा है लम्हे फिल्म से लता मंगेशकर और हरिहरन को। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है शिव हरी ने।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ हैं राखी और वंदना।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आज के इस खूबसूरत से सफर में आपके साथ हैं हम दो सखियां राखी और
1: वंदना। सखियों, आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज एक साथ दो महापुरुषों की जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री की। पर उन्हें श्रद्धा सम्मान अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं।
0: हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है बहनों। महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा मानव जाति के लिए सबसे बड़ी शक्ति है, यह दुनिया के किसी भी विनाशकारी हथियार से अधिक शक्तिशाली है।
1: हिंसा का आसक्त बड़ा व्यापक है, यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि कई स्तरों पर हो सकती है। और अहिंसा की हम बात करें तो मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा न देना, किसी के प्रति द्वेष घृणा न करना और साथ ही सत्य, प्रेम, करुणा और आत्मबल से परिपूर्ण रहना। अहिंसा के लिए आत्मबल बहुत ही जरूरी है, यह कायरता नहीं बल्कि हमारी शक्ति है।
0: हाँ, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया। उनका मानना था कि हिंसा और घृणा के बिना भी अन्याय का विरोध किया जा सकता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया, उसका मार्ग सत्याग्रह ही तो था।
1: उन्होंने व्यक्ति और समाज के नैतिक उत्थान पर भी बल दिया। छुआछूत के घोर विरोधी, अस्पृश्यता के समर्थक, बापू के जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जिनकी चर्चा हम सखियों से करना चाहेंगे।
0: सचमुच,
1: जैसे कि यरवदा जेल में कारावास के दौरान गांधी जी के मित्र जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उन्हें गांधी जी ने पत्र लिखा था कि
0: हाँ, उन्होंने पत्र लिखा था और उसमें ये लिखा था कि हमारे शरीर को बीमारी हो सकती है, लेकिन आप शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं, अपनी चेतना को जागृत करें। जेल से निकलने के बाद गांधी जी ने स्वयं अपने मित्र की सेवा की थी।
1: एक बार साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी ने अपने मित्र दूधा भाई और उनके परिवार को आने की अनुमति दे दी थी। आश्रम में इस बात का घोर विरोध हुआ था कि एक दलित परिवार को क्यों अनुमति दी गई।
0: हाँ।
1: आश्रम बंद होने की कगार पर आ गया, लेकिन गांधी जी की दृढ़ता और आत्मबल ने अस्पृश्यता की भावना को आगे भी बनाए रखा। और फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने आश्रम के लिए धनराशि दान की थी। ऐसी कई घटनाएं हैं उनके जीवन की जो हम नहीं जानते हैं।
0: हाँ, बहुत सी घटनाएं हैं। और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था। और सखियों, पंडित लाल बहादुर शास्त्री का जीवन भी सादगी और ईमानदारी का उदाहरण रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस मार्ग पर चलकर देश सेवा की थी। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो इन दो महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आइए सुनते हैं ये गीत।

अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है

0: अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: विराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है बहनों आपके ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और आज आपके साथ हैं हम दो सखियां, राखी और वंदना। और वंदना, आगे क्या लाए हैं हम बहनों के लिए अपने कार्यक्रम में, बताओ।
4: हाँ राखी जी, चलिए आज के कार्यक्रम अपराजिता में हम जानेंगे कि महिलाएं स्वरोजगार को अपनाकर कैसे खुद को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, और इसके बारे में हमें बताएंगी उर्मिला राकेश।
5: अगर एक महिला के हाथ में हुनर हो, उसके मन में आत्मविश्वास हो और वह अपने पैरों पर खड़ी होने का साहस रखती हो, तो क्या वह केवल अपना जीवन बदल सकती है? जी हाँ, वह अपने परिवार की दिशा बदल सकती है, वह अपने बच्चों का भविष्य बदल सकती है, वह अपने आस पड़ोस की दूसरी महिलाओं को प्रेरित कर सकती है और धीरे धीरे वह पूरे समाज की सोच को बदल सकती है। इसलिए मैं मानती हूँ कि एक महिला का आत्मनिर्भर होना केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की प्रगति है। कहा भी जाता है, एक शिक्षित महिला केवल स्वयं आगे नहीं बढ़ती, बल्कि पूरे परिवार और समाज को आगे बढ़ाती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में केवल पैसा कमाने का विचार आता है, लेकिन आत्मनिर्भरता का अर्थ इससे कहीं और बड़ा है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने फैसले स्वयं लेने का साहस, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता, अपने हुनर पर विश्वास, कठिन परिस्थितियों में भी खड़े रहने की ताकत और सबसे महत्वपूर्ण अपने जीवन की दिशा तय करने का अधिकार। एक महिला जब कमाती है तो उसके हाथ में केवल पैसा नहीं आता, उसके अंदर आत्मविश्वास आता है, उसकी आवाज में विश्वास आता है, उसके निर्णयों में स्वतंत्रता आती है और उसके सपनों को एक नई उड़ान मिलती है। इसलिए हमें महिलाओं के रोजगार को केवल आर्थिक विषय के रूप में नहीं देखना चाहिए, यह सम्मान, अवसर, आत्मविश्वास और समान भागीदारी का भी विषय है। स्वरोजगार क्या है? अब सवाल आता है, स्वरोजगार आखिर है क्या? इसका सरल अर्थ है किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करने के बजाय अपने कौशल, ज्ञान, मेहनत या संसाधनों के आधार पर स्वयं कोई काम या व्यवसाय शुरू करना। यह काम छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी, जैसे सिलाई कढ़ाई का काम, ब्यूटी और मेकअप सेवाएं, टिफिन या भोजन का व्यवसाय, अचार, पापड़ और मसाले बनाना, डेयरी या पशुपालन, कृषि आधारित व्यवसाय, हस्तशिल्प और कला, ऑनलाइन सामान बिक्री करना, डिजिटल सेवाएं, ट्यूशन या कोचिंग, फोटोग्राफी, डिजाइनिंग, कंटेंट निर्माण, छोटे स्तर पर दुकान या सर्विस सेंटर। आज तो मोबाइल फोन और इंटरनेट ने स्वरोजगार के कई रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, स्वरोजगार का मतलब यह नहीं है कि हर महिला को व्यवसायी ही बनना चाहिए। हर महिला की परिस्थिति अलग है, किसी के लिए नौकरी सही हो सकती है, किसी के लिए व्यवसाय, किसी के लिए घर से किया जाने वाला काम और किसी के लिए आगे की पढ़ाई। अब प्रश्न उठता है कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार ही क्यों आवश्यक है? पहला कारण है आर्थिक स्वतंत्रता। जब महिला स्वयं कमाती है तो वह अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती, वह परिवार के आर्थिक निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती है। दूसरा कारण है आत्मविश्वास। अपनी मेहनत से कमाई हुई पहली आय केवल पैसे का साधन नहीं होती, वह महिला के लिए आत्मविश्वास और अपनी क्षमता पर विश्वास का प्रतीक भी होती है। तीसरा कारण है निर्णय लेने की क्षमता। आर्थिक रूप से सक्रिय महिला परिवार और समाज से जुड़े कई निर्णयों में अपनी बात अधिक मजबूती से रख सकती है और चौथा कारण है रोजगार का निर्माण। यदि कोई महिला अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाती है और आगे चलकर दूसरी महिलाओं को भी काम देती है तो वह केवल स्वयं आत्मनिर्भर नहीं बनती बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करती है। इसलिए एक महिला का स्वरोजगार केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है बल्कि यह परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हर महिला व्यवसाय कर सकती है? तो उत्तर है हाँ, यदि उसे सही अवसर, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन मिले। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि महिलाओं के सामने कई चुनौतियां होती हैं। कई महिलाओं को परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। कुछ महिलाओं के पास पूंजी की कमी होती है। कई महिलाओं को बाजार की जानकारी नहीं होती। कुछ को डिजिटल तकनीक का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन और बाजार तक पहुंचना भी एक चुनौती हो सकती है। इसके अलावा कई बार सामाजिक सोच भी महिलाओं के सामने बाधा बन जाती है। हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है कि व्यवसाय करना केवल पुरुषों का काम है नहीं, यह महिला के पास प्रतिभा है, मेहनत करने की इच्छा है और उसे उचित अवसर मिलता है तो वह सफल उद्यमी बन सकती है। स्वरोजगार की शुरुआत तब कैसे करें? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कोई लड़का या लड़की महिला रोजगार शुरू करना चाहती है तो शुरुआत कहाँ से करें? इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। जैसे अपना हुनर पहचानिए। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्षमता होती है। किसी को खाना बनाना आता है, किसी को सिलाई आती है, किसी को पढ़ाना आता है, किसी को डिजाइनिंग आती है, कोई खेती की जानकारी रखता है, किसी को कंप्यूटर आता है तो किसी को सोशल मीडिया की समझ है। तो पहले खुद से एक सवाल करना होगा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ जिसके लिए लोग मुझे पैसा दे सकते हैं। दूसरा है सीखना शुरू कीजिए। हुनर तो अच्छी बात है लेकिन आज के समय में केवल हुनर काफी नहीं है। हमें सीखना होगा जैसे ग्राहक से कैसे बात करें, कीमत कैसे तय करें, हिसाब किताब कैसे रखें, सामान की गुणवत्ता कैसे बनाए रखें, अपने उत्पाद का प्रचार कैसे करें, डिजिटल भुगतान कैसे करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करें। कहने का तात्पर्य केवल काम करना ही नहीं है बल्कि काम को व्यवस्थित ढंग से चलाना भी सीखना होगा। तीसरा, छोटी शुरुआत कीजिए। बहुत लोग शुरुआत इसलिए नहीं करते कि वे सोचते हैं हमारे पास बहुत कम पैसा है। लेकिन हर व्यवसाय बड़े निवेश से शुरू हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार शुरुआत घर से हो सकती है, एक मशीन से हो सकती है, कुछ ग्राहकों से हो सकती है, एक छोटे ऑर्डर से हो सकती है, एक मोबाइल फोन से हो सकती है। छोटी शुरुआत केवल कमजोरी नहीं है, यह हमें सीखने का मौका देती है। चौथा, बाजार को समझिए। इसमें यह समझना होगा कि ग्राहक को क्या चाहिए। केवल अच्छा उत्पाद बनाना पर्याप्त नहीं है। हमें यह समझना होगा कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं, कितनी कीमत पर खरीदना चाहते हैं, हमारा ग्राहक कौन है, हम उनसे कैसे जुड़ेंगे, हम अपने उत्पाद की जानकारी कैसे दे सकते हैं। आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस काम में मदद कर सकते हैं। असफलता से डरना बंद कीजिए। पहली कोशिश में हर व्यक्ति सफल हो यह जरूरी नहीं है। कभी ग्राहक कम मिलेंगे, कभी नुकसान हो सकता है, कभी लोग आलोचना करेंगे, कभी हमें लगेगा कि शायद हमसे यह काम नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, असफलता अंत नहीं है। असफलता हमें बताती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। अब मैं परिवार की भूमिका की बात करना चाहती हूँ। किसी महिला के आत्मनिर्भर बनने में उसका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक पिता अपनी बेटी से कह सकता है, तुम पढ़ो, सीखो और अपने सपने को पूरा करो। भाई अपनी बहन से कह सकता है, अगर तुम्हें किसी प्रकार की तकनीकी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पति कह सकता है, तुम अपने काम को आगे बढ़ाओ, घर की जिम्मेदारियाँ हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। और एक माँ कह सकती है, तुम्हारी उड़ान मेरे सपनों से भी बड़ी हो सकती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी केवल परिवार की ही नहीं है, समाज को भी महिलाओं के काम को सम्मान

0: देना चाहिए। यदि कोई महिला घर से छोटा व्यवसाय शुरू करती है तो हमें उसके काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें उसके उत्पाद खरीदकर, उसके व्यवसाय की जानकारी दूसरों तक पहुंचाकर और उचित मूल्य देकर उसका समर्थन करना चाहिए। ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए स्वरोजगार की विशेष संभावनाएं हैं, जैसे कृषि से जुड़े कार्य, पशुपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों की बिक्री जैसे अनेक क्षेत्र हो सकते हैं। ग्रामीण महिला यदि अपने क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों और पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़ सके तो वह अपनी आय बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। इससे स्थानीय संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिल सकता है। आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ियों में से एक है शिक्षा और कौशल। आज केवल पढ़ा लिखा होना ही पर्याप्त नहीं है, बदलते समय के साथ नए कौशल सीखना भी आवश्यक है। एक महिला जितना अधिक सीखेगी उतना ही बेहतर तरीके से अपने व्यवसाय को समझ और चला सकेगी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, चाहे महिला 20 वर्ष की हो या 50 वर्ष की। यदि सीखने की इच्छा है तो वह नया कौशल स्वीकार कर आगे बढ़ सकती है, सीख सकती है। आज की दुनिया में आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है डिजिटल ज्ञान। मोबाइल फोन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, यह सीखने का माध्यम हो सकता है, यह ग्राहक तक पहुंचने का माध्यम हो सकता है, यह भुगतान लेने का माध्यम हो सकता है, यह अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार करने का भी माध्यम हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। वास्तव में यदि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा। दूसरा है छोटे व्यवसाय शुरू कर उनके उत्पादों को उचित मूल्य पर बाजार में दिलाने का प्रयास करना होगा। इससे वह केवल अपनी आय नहीं बढ़ाएंगी बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगी और अपने परिवार को मजबूत बनाएंगी और समाज के आर्थिक विकास में योगदान देंगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है महिलाओं को स्वयं अपने अंदर विश्वास उत्पन्न करना होगा। हम अक्सर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में आत्मनिर्भर भारत हो सकता है? अगर उसकी आधी आबादी भी अपनी पूरी क्षमता के साथ आर्थिक और सामाजिक जीवन में भाग न ले, इसलिए महिला आत्मनिर्भरता और देश की प्रगति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती हैं, कौशल सीखती हैं, रोजगार शुरू करती हैं, व्यवसाय बढ़ाती हैं, रोजगार पैदा करती हैं, तो उनका प्रभाव परिवार से निकलकर समाज और अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है। इसलिए महिलाओं को अवसर देना केवल महिलाओं के हित में ही नहीं है, यह देश के विकास में भी निवेश है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि महिला को सशक्त बनाने का अर्थ केवल उसके लिए अवसर पैदा करना नहीं है, बल्कि उसे उन अवसरों का उपयोग करने के लिए शिक्षा, कौशल, संसाधन और आत्मविश्वास देना भी है। एक महिला जब स्वरोजगार अपनाती है तो वह केवल अपनी आय नहीं बढ़ाती, वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाती है, अपने परिवार को मजबूत बनाती है और समाज के आर्थिक विकास में योगदान देती है। आइए हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर महिला को अपनी प्रतिभा पहचानने, अपना काम शुरू करने और अपने पैरों पर खड़े होकर अवसर मिले। याद रखें, जब महिला आत्मनिर्भर बनती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक परिवार, एक पीढ़ी और पूरा समाज मजबूत होता है। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: हाँ तो बहनों, अभी हमने जानकारी की कि महिलाएं स्वरोजगार अपना कर अपने को आत्मनिर्भर कैसे बना सकती हैं, और इसके विषय में हमें बता रही थी उर्मिला राकेश।
2: हाँ, और अब बहनों को इतनी गंभीर जानकारियों के बाद चलो फिर से ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में इस गीत के साथ। और बहनों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है बहनों, तो आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: बस बहनों, चलते चलते आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना का अगर आपको लाभ उठाना है तो आप आयुष्मान भारत के ऐप पर जाएं और वहाँ सारी जानकारियाँ मिलेंगी, उसका लाभ उठाएं। और इसी के साथ अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। चलते चलते बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी
1: और वंदना को दे इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

गृहलक्ष्मी। अभी हम सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। 12:30 होने को है। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे जापान में आयोजित हो रहे एशियन गेम्स 2026 के अपडेट्स हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: 12:30 PM ऑन आकाशवाणी। हम लेकर आ गए आपके लिए ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स। मैं हूँ साक्षी मांडवाल, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अनुपम पाठक। तो सबसे पहले द बिग न्यूज ऑफ द डे कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ आर्चरी। आज हमारे आर्चर्स ने भारत का दिल खुश कर दिया। जी हाँ, हमें देखा कि मेन्स रिकर्व टीम फाइनल में भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। जी हाँ, इंडिया वन द सिल्वर इन द मेन्स रिकर्व टीम इवेंट आफ्टर साउथ कोरिया क्लिंच द गोल्ड मेडल विद द 2-0 सेट विन इन द फाइनल फेज, कंप्लीटिंग अ 5-1 विक्ट्री ओवरऑल। India started the third set strongly with Neeraj Chauhan hitting a 10, followed by 9s from Yashdeep Bogey and Dheeraj Bommadewara. However, Neeraj's 7 in the second rotation hurt India's chances as they finished the set on 54. South Korea needed 27 from their final 3 arrows to win the gold. Lee Woo-ryok hit a 10, Kim Jae-deok a 9, and Kim Woo-jin sealed the title with a 9 as the Koreans secured back-to-back Asian gold medals in the event. Anupam.
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर। कुल मिलाकर हम इसको जरूर कहेंगे, क्योंकि आर्चरी में अगर हम पिछले प्रदर्शनों को देखते हैं तो इस बार बहुत पिछले, इसके पहले रिकर्व में कुल मिलाकर एशियन गेम्स में 3 पदक आए थे, इस बार आज एक दिन में 3 पदक आए हैं, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। हालांकि ये जो पहला सेट था उसकी शुरुआत बहुत अच्छी भारत ने की थी, दोनों बराबर बराबर थे और एकदम आखिरी एरो पर जाकर ये स्थिति आई थी कि मामला बराबरी पर हुआ, वरना भारत जीतता, उसको अंक बराबर रहे। दूसरे सेट में यशदीप ने एक एरो गड़बड़ किया और जैसा आपने बताया आखिरी सेट में नीरज का वो तीर ऐसा भटका। लेकिन आज के लिए ये बात जरूर कही जाएगी, जब हवा थोड़ी सी आज तेज चल रही थी लगातार, तो हवा के साथ अमूमन लोगों की शिकायत आर्चर्स की रहती है कि एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन प्रदर्शन और अंतिम निर्णय जो आता है वही आपको पदक तालिका पर ले जाता है, पोडियम पर ले जाता है। लेकिन फिर भी रजत बहुत स्वागत योग्य बात है। और इसके अलावा हम बात करें, अभी दो जगह दो बॉक्सर्स हमारे उतरने हैं, दो जगह स्वर्ण पदक की उम्मीद है। उसके अलावा अभी कुश्ती में फाइनल खेलना है नीरज को और कांस्य पदक की भी उम्मीद है दीपांशी से। मैं आपको ताजा जानकारी बता दूं, इस समय केनो में कयाक क्रॉस में शिखा चौहान 9वें स्थान पर रहकर क्वालिफाई की थी, हमने बताया था। क्वार्टर फाइनल में वो 3रे स्थान पर आई, क्वालिफाई नहीं कर पाई। प्रद्युम्न सिंह राठौर ने क्वालिफाई किया था लेकिन क्वार्टर फाइनल इस बीच हो चुका है, उसमें वो भी क्वालिफाई नहीं कर सके और 4थे स्थान पर रहे, जबकि टॉप पहले जो 2 स्थान पर आते हैं वो क्वालिफाई करते हैं।
0: जी, और डिंगी की दुनिया से भी आपको कुछ लेटेस्ट खबर दे दे कि आज इंडियाज नेत्रा कुमानन सेक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स डिंगी सेलिंग इवेंट आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फाइट बैक इन द फाइनल रेसेस। आफ्टर अ डिफिकल्ट ओपनिंग रेस नेत्रा बाउंस्ड बैक ब्रिलियंटली टू विन द सेकंड फाइनल रेस। शी फिनिश्ड लेवल ऑन पॉइंट्स विद हांगकांग स्टेफनी लुईस नॉर्टन, बट नेत्रा सुपीरियर हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट नॉर्टन सॉ हर क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल। एंड जस्ट वन क्विक गुड न्यूज दैट वी ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर एंड हैड शेयर इन द लास्ट अपडेट की बॉक्सिंग की दुनिया से आज हमें गोल्ड मेडल आ गया। जी हाँ, द बर्थडे गर्ल इंडियाज लवलीना बोरगोहेन बैग्ड द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग चाइनाज बाउजी इन द वुमेन्स 75 किलोग्राम गोल्ड मेडल बाउट एट द एशियन गेम्स एंड thereby शी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री by becoming the only second Indian woman boxer to win an Asian Games gold medal after the legendary MC Mary Kom. What a feat, what an achievement, Anubhav.
1: बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात। और जो आपने बात की साक्षी नेत्रा कुमारन की, सेलिंग में भारत गाहे बगाहे पदक लाता रहा है। नेत्रा कुमारन तमिलनाडु से आती हैं, चेन्नई की रहने वाली हैं, 15 वर्ष की उम्र से ट्रेनिंग शुरू की थी। और मजे की बात क्या है ना, जो बड़े लोगों के साथ होता है, कई खेल खेलती थी, टेनिस खेलती थी, स्केटिंग खेलती थी और भरतनाट्यम की डांसर हैं। इसके बाद जब उनके ने फाइनल कर लिया कि नहीं मुझे अब सेलिंग ही करनी है, तो स्पेन में ट्रेनिंग की है, ओलंपिक में खेल चुकी हैं भारत की ओर से, तो यकीनन उनका ये जो कांस्य पदक है बहुत हमारे लिए बहुत अच्छे चमकते दमकते रंग का पदक है।
0: Indeed, and Sepak Takraw की दुनिया से भी आपको quick update दे दे कि Group A के match of the Sepak Takraw Women's Quadrant, Thailand absolutely decimated and finished India. They took the second set by a margin of 15-4 as they won the match in straight sets. First, initially we also saw that Indians were drowned 13-15 by Thailand in the first set as they lost it earlier. India thus have bowed out of the event after losing all of their group games. तो Sepak Takraw के अंदर भारत का सफर यहाँ पर आकर समाप्त हो गया।
1: बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा क्षण है, अविस्मरणीय, जो लोग भी इसको वहां पर उपस्थित हैं जिनको जानकारी मिल रही, लवलीना बोरगोहेन के गले में स्वर्ण पदक इस समय डाला जा रहा है। पदक सेरेमनी जो होती है वो हो रही है, भारत का राष्ट्रगान की जो धुन है बस वो गूंजने वाली है। आपने देश का नाम रोशन किया है लवलीना, और आपको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई। साइकिलिंग का ताजा जो समाचार है वो ये है, डेविड बेकहम जो रिपेचेस में होकर पहुंच गया था, क्वालिफाई कर लिया था उन्होंने मेंस पुरुषों की कायरन स्पर्धा में साइकिलिंग में, वो पांचवें स्थान पर आए हैं, क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, और इस समय पुरुषों की मेडिसिन प्रतियोगिता जो है स्पर्धा वो चल रही है।
0: जी, अ वेरी हार्ट वार्मिंग मोमेंट अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज ऑन द टेलीविजन एज वी विटनेस द हिस्टोरिक गोल बाय लवलीना बोरगोहेन जस्ट अवेटिंग मोमेंट्स अवे फ्रॉम द नेशनल एंथम अपराइट आवर लव।
1: साक्षी, जन्मदिन पे इससे बेहतर तोहफा चाहोगी क्या?
0: बिल्कुल भी नहीं, उससे ज्यादा क्या खूबसूरत हो सकता है अनुपम, कि आपको आपके जन्मदिन पर मौका मिले कि आप अपने देश को और अपने देशवासियों को, अपने परिवार के जनों को गौरवान्वित महसूस करवा सके थ्रू योर अकम्प्लिशमेंट्स, व्हाट बेटर देन दैट। ऑन दैट नोट, इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक फॉर नाउ सेइंग गुड बाय, विल बी जॉइनिंग यू राइट बैक एट 1:30 PM विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026।
1: नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026, आईची नगोया।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं समीर अंजान का लिखा गीत शान की आवाज में। गीत की धुन बनाई है मॉन्टी शर्मा ने और फिल्म का नाम है सांवरिया।

सुई धागा यह फिल्म का नाम और आइए सुनते हैं इस फिल्म से पेपॉन और रागिणी गुप्ता को। इस गीत को लिखा है वरुण ग्रोवर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां से आप सुन सकेंगे समाचार। समाचार हम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे।

0: अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोरिसिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।
2: Wait,

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मैरीकॉम ने 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत की नित्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजित कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के लिए 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 71 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 34 कांस्य पदक शामिल हैं। महात्मा गांधी जयंती के कारण आज भारतीय शेयर बाजार बंद हैं। बाजार सोमवार को फिर से खुलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smit Machar, whose heroics in thwarting an attack by his co-pilot

0: saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Bachar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. The co-pilot accused of assaulting Captain Smith Bachar has been transferred to Abu Dhabi, UAE. The Saudi press agency SBA, quoting an official source at the Saudi Ministry of Interior, reported that both pilots left the country for Abu Dhabi after receiving medical clearance. The Indian Embassy in Abu Dhabi had yesterday informed that Captain Bachar had been brought to the UAE and was recovering well. As reported by SBA, the aircraft landed safely at Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport in Tabuk at 9:45 a.m. on Wednesday, with 174 passengers and an 8-member crew, all of whom received necessary logistical and medical assistance. At 5:40 p.m., passengers continued their journey on a replacement Fly Dubai aircraft, while the crew returned to Dubai on a separate flight. The nation is paying homage today to two great leaders, the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary, and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his 122nd birth anniversary. A Sarvadharma Prarthana Sabha was held at Bapu's Samadhi Rajghat in the national capital this morning. President Draupadi Murmu attended the Sabha and paid floral tributes to the father of the nation. President Draupadi Murmu also paid homage to Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat this morning. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and several union ministers paid floral tributes to both the leaders at the Samvidhan Sadan in New Delhi today. BJP President Nitin Naveen, Congress President and Leader of Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi, Members of Parliament, Senior Officials of Parliament and school students also paid their tributes. Union Home Minister Amit Shah today said Russian President Vladimir Putin's appreciation of Prime Minister Narendra Modi's tireless efforts towards global peace brings immense pride to every Indian. Mr. Shah said Mr. Putin's statement, which coincides with the birth anniversary of Mahatma Gandhi, demonstrates that India, under the leadership of Mr. Modi, has emerged as a trusted voice for global peace. In a social media post, the Home Minister added that during periods marked by wars, conflicts and turbulence, Mr. Modi has conveyed the message that solutions do not emerge from battlefields, but through dialogue and diplomacy. The special investigation team probing Sunday's unrest at the Satyajit Ray Film and Television Institute has submitted its first report to the West Bengal Home and Hill Affairs Department. The 6-page report was submitted yesterday. They have identified 250 people and questioned 23 so far. The Delhi Metro Rail Corporation, the MRC, has informed that 12 metro stations have been closed till further instructions in the national capital. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House, INA, New Delhi and Central Secretariat. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh for the day. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of the southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and most parts of Gujarat and Madhya Pradesh during the next 24 hours. Indian athletes continued their strong performance at the ongoing Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, winning several medals across multiple sporting events today. In boxing, Lovlina Borgohain clinched a historic gold medal in the women's 75-kilogram category, defeating China's Pao Ziyi by a unanimous 5-0 decision in the final. It is India's only second gold medal in women's boxing at the Asian Games, following Mary Kom's gold in 2014. Earlier, India's women's recurve archery team created history by winning its maiden Asian Games gold medal. With these performances, India climbed to 6th position in the overall medal standings. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हो चुके हैं। वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचार का।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र दे रहा श्रद्धांजलि। झारखंड में विभिन्न जिलों में जागरूकता और जनभागीदारी के कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। नगर निगम की ओर से रांची में व्यापारियों को टैक्स को लेकर नोटिस भेजे जाने पर झारखंड चैंबर ने जताई आपत्ति। नागरिक सुविधाएं मिलने तक वसूली पर पुनर्विचार की मांग। दुर्गा पूजा में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर JBVNL की तैयारी पूरी। शिकायतों के लिए विशेष कोषांग गठित। बिना वैध कनेक्शन बिजली उपयोग पर होगी कार्रवाई। और रांची में 9 अक्टूबर को भारत वेस्ट इंडीज T20 और दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां की गई स्थगित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर हेमंत सोरेन ने कहा कि गांधी जी के आदर्शों को केवल स्मरण करने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास भी होना चाहिए। इधर जामताड़ा में वन प्रमंडल की ओर से वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। हजारीबाग में उपायुक्त हेमंत सती ने गांधी स्मारक पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं बोकारो में गांधी जयंती पर स्वस्थ जीवन का संदेश देने के लिए 7 किलोमीटर की दौड़ और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नागरिक उड्डयन सचिव समित कुमार सिन्हा ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को सरल करना और सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन को बढ़ाना देना है। मंत्रालय के अनुसार सुरक्षा मंजूरी को प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। रांची में नगर निगम की ओर से व्यापारियों को टैक्स जमा करने संबंधित नोटिस भेजे जाने पर चैंबर ने आपत्ति जताई है। झारखंड चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि जब तक व्यापारियों को आवश्यक नागरिक सुविधाएं नहीं मिलती तब तक टैक्स की वसूली पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने बताया कि नगर निगम की कार्रवाई से विधानसभा अध्यक्ष को भी अवगत कराया गया है।
3: रांची में जो बजा टण की जो हम नगर निगम से किया वो तो उस पर भी एक हम आज पत्र लिख रहे हैं कि वहाँ पर अचानक से नगर निगम और कोऑपरेटिव बैंक का जो ये विषय कैसे उठा और अचानक से वो सील करने चल गए कि भाई आपका ट्रेड लाइसेंस नवीकरण नहीं हुआ है या आपका रेंट अभी तक नहीं किया गया, तो ठीक है आप नोटिस दीजिए हम लोग उस पर देख लेते हैं। लेकिन उसने अचानक तुगलकी फरमान की तरह आ गए और सील करने लग गए।
2: रांची में दुर्गा पूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने तैयारी पूरी कर ली है। पूजा के दौरान बिजली संबंधित शिकायतों के लिए विशेष कोषांग भी गठित किया गया है। अधीक्षण अभियंता DN साहू ने बताया कि बिना वैध कनेक्शन के पूजा पंडाल में बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
4: एक वर्ष दुर्गा पूजा में जो हम लोग सभी पूजा समितियों से एवं आम जनता से अपील करते हैं, लगभग वही अपील इस बार भी है। हम लोगों ने जो अपील जारी किया है उसमें है कि जो भी पूजा पंडाल हैं, जो भी समिति हैं, दुर्गा पूजा समिति, वो विद्युत विभाग से वैध विद्युत कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें।
2: भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल और सह प्रभारी सौरभ सिंह 5 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगे। सह प्रभारी निवेदिता सिंह और संगठन महामंत्री पवन साय 4 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगे। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक विषयों पर बैठकें होंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार, एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है।

0: और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज की विशेष श्रृंखला का विषय है इज ऑफ डूइंग बिजनेस। केंद्र के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को लागू करने से औद्योगिक और प्रशासनिक कार्यशैली में बुनियादी बदलाव आए हैं।
1: हमारा ध्यान लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर मजबूती के साथ हम कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं। बिजनेसेस के लिए 40,000 से अधिक अननेसेसरी कंप्लायंसेस को हटाया गया। जन विश्वास एक्ट के माध्यम से 3,400 से ज्यादा कानूनी धाराओं को डीक्रिमिनलाइज किया गया।
0: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बने अनुकूल नीतियों से झारखंड में भी ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे नए क्षेत्रों में निजी निवेश आकर्षित हुआ है।
2: ये उद्योग रोजगार सृजन तो करती है, स्थानीय संसाधनों का उपयोग राज्य के औद्योगिक विकास की मजबूत आधारशिला भी है। झारखंड में उद्योग को सुविधा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन अप्रूवल, सेल्फ सर्टिफिकेशन, टाइम बाउंड अप्रूवल जैसी व्यवस्थाएं पहले से लागू की हुई है।
3: झारखंड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब एक छोटा व्यवसाय आगे बढ़ता है तो उसके साथ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और कई दूसरे छोटे व्यवसायों को भी काम मिलता है, इसलिए उद्यमियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।
0: झारखंड सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को विशेषज्ञ चिकित्सकों से सुदृढ़ करने के लिए 306 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करेगी। इनमें 200 नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और 106 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर से शुरू होंगे और 31 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,34,000 रुपये प्रति किलो है। रांची यातायात पुलिस ने सितंबर महीने में मोटर यान अभियान के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कुल 95,665 चालान काटे गए, जिनसे 6,47,15,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई। सबसे अधिक 48,096 चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने पर किए गए। वहीं 38 मामलों में अभियोजन की कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने लोगों से मोटर यान नियमों का पालन करने की अपील की है। आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए रांची जिले के सभी थानों और ओपी में आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान वरीय पुलिस पदाधिकारी विभिन्न थानों में खुद मौजूद हैं और नागरिकों की समस्याएं सुन रहे हैं। रांची में 9 अक्टूबर को भारत वेस्ट इंडीज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच और दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। रांची के ASSP राकेश रंजन ने बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती को देखते हुए सभी श्रेणी के पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है। झारखंड के दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस वर्ष राज्य में मॉनसून सीजन के दौरान कुल मिलाकर सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र दे रहा श्रद्धांजलि। झारखंड में विभिन्न जिलों में जागरूकता और जन भागीदारी के कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। नगर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। नगर निगम की ओर से रांची में व्यापारियों को टैक्स को लेकर नोटिस भेजे जाने पर झारखंड चैंबर ने जताई आपत्ति। नागरिक सुविधाएं मिलने तक वसूली पर पुनर्विचार की मांग। दुर्गा पूजा में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर JBVNL की तैयारी पूरी। शिकायतों के लिए विशेष कोषांग गठित। बिना वैध कनेक्शन बिजली उपयोग पर होगी कार्रवाई। और रांची में 9 अक्टूबर को भारत वेस्ट इंडीज T20 और दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां की गई स्थगित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:20 हो रहे हैं। वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राग देव गांधार। कलाकार हैं गिरिजा देवी।

0: अभी आप सुन रहे हैं अनुरंजनी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हम सुनेंगे जापान में आयोजित हो रहे एशियन गेम्स 2026 के अपडेट्स हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स का।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल। मेरे साथ यहां पर मौजूद है दोस्तों अनुपम पाठक। हम लेकर आ गए आपके लिए द

0: लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 घड़ी में बज रहे हैं दोपहर की डेढ़ एंड द गुड न्यूज दैट हैज कम इन द लास्ट वन आवर नाउ कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सेपक तक्रो जहां पर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर कर लिया अपने लिए और अपने देश के लिए दे लॉस्ट टू जापान 0-2 इन द थर्ड प्लेस प्ले ऑफ एट द एशियन गेम्स इंडिया लॉस्ट बोथ द सेट्स 12-15 13-15 टू कंप्लीट अ स्ट्रेट सेट विक्ट्री एंड देयर बाय फिनिश ऑन द पोडियम हारे तो जरूर भारतीय लेकिन भारत की टीम यानी लेकिन क्योंकि ये ब्रॉन्ज मेडल मैच था तो इसमें अगर हम बात करें तो भारत हैज बीन एबल टू नाउ फाइनली सिक्योर अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर देमसेल्व्स
1: क्या बात है और आज का दिन वैसे भी पदकों के हिसाब से खासा अच्छा रहा है बल्कि जैसे जैसे एशियन गेम्स अपने समापन की ओर बढ़े हैं हमारे पदकों की संख्या एकदम से बढ़ी है खासी आज बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक आ चुका है कुश्ती में एक स्वर्ण पदक की उम्मीद है बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण पदकों की और उम्मीद है हम अपनी अगली अपडेट्स में बताते रहेंगे इसके अलावा आर्चरी में स्वर्ण पदक आ चुका है 2 रजत आ चुके हैं अभी एक कांस्य की आपने बात की तो ये तो बहुत अच्छा था और इसके अलावा हाँ सेलिंग में नेत्रा कुमारन ने एक कांस्य पदक हासिल किया है इस बीच हम ताज़ा खबर आपको बता दें साइकिलिंग में जो डेविड बेकहम रिपेचेस से पहुंचे थे उनका सफर समाप्त हो गया है और अब वो 7वें से 12वें स्थान के लिए अपनी साइकिल में पैडल में ताकत लगाने का प्रयास करेंगे पुरुषों के मेडिसन के मुकाबले भी चल रहे हैं इस समय भारत 8वें स्थान पर है जिसमें हर्षवीर सिंह शेखों और विश्वजीत सिंह की जोड़ी है गोल्फ में बहुत अच्छी खबर है 3रा राउंड चल रहा है लड़कियों की ओर से है हमारी जो टीम है प्रणवी उर्स अदिति अशोक और दीक्षा डागर की 3रे राउंड के बाद 2रे स्थान पर पहुंची हुई है और महिलाओं के स्ट्रोक प्ले की बात करें तो राउंड 3 में प्रणवी उर्स पहले स्थान पर इस समय बनी है बस ये लीड अपनी बनाए रखें ये दुआ करेगा हर भारतीय प्रेमी
0: जी और वुमेन्स स्किफ इवेंट के अंदर इंडिया हैव बीन अवार्डेड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स स्किफ इवेंट विद हर्षिता तोमर एंड शीतल वर्मा मूविंग अप टू द थर्ड प्लेस आफ्टर चाइना वुड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम 2 रेसेस इंडिया हैड इनिशियली फिनिश्ड 4th एट द एंड ऑफ ऑल रेसेस बट द सबसिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशंस ऑल्टर्ड द स्टैंडिंग्स एंड एलिवेटेड द इंडियन पेयर टू द पोडियम वहीं रग्बी सेवन्स के अंदर आज भारत ने एक बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ मलेशिया को 26-5 से हराकर वुमेन्स रग्बी सेवन पूल ई मैच में जीत हासिल कर ली भूमिका शुक्ला स्कोर 3 ट्राइज वाइल टूडू संध्या रानी एंड कुमारी आरती ऑल्सो क्रॉस द लाइन एज इंडिया सिक्योर्ड अ कंफर्टेबल विक्ट्री
1: बिल्कुल और रग्बी सेवन में लड़कियों को अच्छा करते हुए देखना इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है रग्बी सेवन बहुत ज्यादा ताकत वाला बड़ी स्पीड वाला और कहते हैं ना भिड़ंत वाला खेल है तो उसमें अगर लड़कियां पहला मैच तो उन्होंने खासा खराब खेला था बहुत बुरी तरह हारी थी लेकिन आज उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और हम आपसे गोल्फ की बात कर रहे थे पुरुषों में हाल बहुत अच्छा नहीं है युवराज संधू हैं वीर अहलावत हैं सब तक तलवार हैं 3रा राउंड इसमें भी हो रहा है इस समय और वीर अहलावत 10वें स्थान पर हैं सब तक उनके ठीक पीछे 11वें स्थान पर हैं और युवराज संधू जो हैं वो 23वें स्थान पर हैं और जो टीम है वो मिलाकर 6ठे स्थान पर है तो लेकिन अब जो आने वाला समय है उसमें तो साक्षी सारी निगाहें रहने वाली हैं हॉकी के मैच पे जहां पर एक स्वर्ण पदक की उम्मीद है भारत उसमें उतरेगी भारत की लड़कियां उतरेंगी स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाने के लिए इसके अलावा 2 बाउट्स जो होनी है जबरदस्त बाउट्स होने की संभावना है बॉक्सिंग में और हरियाणा के हैं दोनों परवीन हुडा जो हैं वो रोहतक से आती हैं अंकुश पंघाल जो हैं हिसार से आते हैं साउथ पा हैं और जो लेफ्ट हुक लगाते हैं ना तो उसको देखने की बात ही अलग होती है रिंग में बस देखें अच्छा करें पहले कबड्डी खेला करते थे बाद में बॉक्सिंग में आ गए
0: यस तो आपको आज देखने को मिलेंगे दोपहर 2:15 से 2 बॉक्सिंग के बाउट्स और रेसलिंग के भी 2 बाउट्स लेकिन अभी अगर आपको एक और अपडेट दे दे तो टैक्वांडो की दुनिया से है जहां कशिश मलिक सफर्ड 1-2 डिफीट टू कजाकिस्तान रीता बाक्शीवा इन द मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल टैक्वांडो क्वार्टर फाइनल्स मलिक्स कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर शी लॉस्ट आउट ऑन द हेड किक काउंट विद द अदर किक मेट्रिक्स रिमेनिंग क्लोजली मैच बिटवीन द 2 कॉम्पिटिटर्स एंड ऑफ इंडियाज कैंपेन इन दिस स्पोर्ट विद इट सो कशिश मलिक के इस हार के साथ भारत का टैक्वांडो सफर भी समाप्त हो गया है एंड अ क्विक ग्लांस थ्रू हाउ द मेडल टेबल नाउ स्टैंड्स भारत की पोजीशन इस वक्त है 6ठे स्थान पर इन द मेडल टेबल हमारे पास कुल मिलाकर अब 72 मेडल हो गए हैं जिसमें हमारे पास है 12 गोल्ड 25 सिल्वर 35 ब्रॉन्ज एंड थैंकफुली दिस इज अ मच मोर इंप्रूव्ड स्पॉट दैट इंडिया प्रेजेंटली होल्ड्स कंपेयर टू वेयर वी वर यस्टरडे ऑन द 8th वन लेकिन 8वें से 6ठे पे और उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे कदमों के साथ ये सफर चौथे तक भी समाप्त हो सके।
1: पिछली बार चौथे पे था, लगभग उसके नजदीक तो हम पहुंच ही सकते हैं, और अभी इसमें दीपांशी भी कोशिश कर सकती है, लगभग 4 बजे के आसपास उनकी कुश्ती होगी और सुजीत पर तो सबकी निगाहें होंगी
0: जी। और इसके साथ अब मुझे साक्षी मांडवाल और अनुपम पाठक को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। हम आपके साथ दोबारा एक बार दोपहर के 3:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। थैंक यू एंड गुड बाय।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए एक बार फिर से सुनते हैं अनुरंजनी कार्यक्रम, जिसमें हम सुन रहे हैं गिरजा देवी को।

अनुरंजनी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक के स्वर में कुछ गीत।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, 2 बजने वाले हैं। आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: घट पड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। और जय भारती कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं योद्धा फिल्म से बी प्राग को। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने और धुन बनाई है तनिष्क बख्शी ने।

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर।
1: आइए सुनते हैं बी ब्रैक और सुनिधि चौहान को होटल मुंबई फिल्म से। गीत और संगीत मिथुन का है।

महेंद्र कपूर की गाय इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर हेमंत सोरेन ने कहा कि गांधी जी के आदर्शों को केवल स्मरण करने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलने का भी प्रयास होना चाहिए। इधर जामतारा में वन प्रमंडल की ओर से वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक रैली निकाली गई। हजारीबाग में उपायुक्त हेमंत सती ने गांधी स्मारक पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं बोकारो में गांधी जयंती पर स्वच्छ जीवन का संदेश देने के लिए 7 किलोमीटर की दौड़ और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जामताड़ा समाहरणालय परिसर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपायुक्त आलोक कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों ने पौधरोपण और उसके रखरखाव के साथ लोगों को

0: बनाए रखना है, साफ सफाई करना, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। अगर हम इसे मिलके काम करते तो ये सफल हो सकता।
1: झारखंड सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को विशेषज्ञ चिकित्सकों से सुदृढ़ करने के लिए 306 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करेगी। इसमें 200 नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और 106 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर से शुरू होंगे और 31 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए रांची जिले के सभी थानों और ओपी में आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान वरीय पुलिस पदाधिकारी विभिन्न थानों में खुद मौजूद हैं और नागरिकों की समस्याएं सुन रहे हैं। रांची में दुर्गा पूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने तैयारी पूरी कर ली है। पूजा के दौरान बिजली संबंधी शिकायतों के लिए विशेष कोषांग भी गठित किया गया है। अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने बताया कि बिना वैध कनेक्शन के पूजा पंडाल में बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रांची में 9 अक्टूबर को भारत वेस्ट इंडीज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच और दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रांची के SSP राकेश रंजन ने बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती को देखते हुए सभी श्रेणी के पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है। लोहरदगा के किस्को और जुबांग थाना क्षेत्र की सीमा पर देवदरिया पंचायत के मसूरिया खाड़ पुलिस पिकेट के पूर्वी हिस्से में स्थित स्मॉल फॉल में नहाने के दौरान दो ममेरे फुफेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी परिजनों को घटना के दूसरे दिन मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉल से एक युवक का शव बरामद किया, वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी है। परिजनों के अनुसार दोनों युवक घूमने की बात कहकर घर से निकले थे। जापान एशियाई खेलों में आज भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। लवलीना ने चीन की बाओजी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मैरी कॉम ने 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: और अजीत का भी नमस्कार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है। प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
0: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को। विमलेश मैडम

0: जी अजीत साहिब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा, प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहिब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
0: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे, आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
0: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
1: श्रोताओ, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
0: जी।
1: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
0: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
1: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था, वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
0: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
1: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें।
0: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहाँ रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे।
1: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे, उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रता पूर्वक साफ इनकार कर दिया। उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
0: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था, वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
1: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था। वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
0: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प जन्म ले रहा था, जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
1: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
0: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
1: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है, और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए। उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
0: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
1: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
0: तो श्रोताओ, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
1: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
0: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात थी हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800044055 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो आप सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
0: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।
2: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का देखने का सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
3: सुने उस्ताद अमजद अली खान को।

0: एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे?
1: महात्मा
0: गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। रामधुन, महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिब इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए, मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: हमारी खुश नसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
2: ये अचकन देसी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकह लगाया और फरमाया,
2: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीजों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
2: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
1: जी बापू।
2: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
3: जी बापू, जी हम ध्यान रखेंगे।
2: अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
4: कुछ खास होना चाहिए,
1: मजदूर रहेंगे उस
3: मेहनत करने वाले।
4: बापू, धर्म का काम है ये तो।
1: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
2: धर्मशाला, हाँ ठीक है, धर्मशाला।
0: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, अब उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहां बैठे हुए थे, बोले,
4: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
0: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
2: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
4: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल ये ठीक। हाँ बिल्कुल।
0: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलने और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, ये लो, ये लो, अरे लो,
2: मुझे भी लीमू दो ना,
1: ये लो
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता? जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करें। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में। हाँ, वो गया। अरे रो मत,
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं।
1: अरे नहीं, नहीं।
2: किनारे पर ही तो होगा ना।
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई, दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापा को जरूर बताऊंगी।
1: अरे मेरे
2: पापू।
1: नहीं बेटा, मेरी बात
2: नहीं,
1: तो सुन।
2: नहीं पापू।
1: नहीं, अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे
2: पापू।
1: नहीं नहीं, अरे
2: पापू।
1: अरे, अरे सुन मेरी बात। अरे
0: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
2: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
2: ठीक है बापू।
0: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
3: अच्छा बताओ क्या बात थी?
1: बापू, बापू ये सब बस एक मजाक था।
3: देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
1: जी बापू, मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।
4: कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है। इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए। अदब रखकर बैठ जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।

0: साथियों नमस्कार। हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉल्स्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
1: अरे बापू जी के आने का समय आने वाला है। हाँ हाँ, और टमाटर काट लो। मैं टमाटर काट, और मैं ये मिर्ची काट।
2: अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
1: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
2: क्या?
1: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
2: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
1: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बाबूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
2: ठीक है चंपा, ठीक।
3: बाबूजी के आने का समय हो रहा है।
2: मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
1: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियाँ इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
2: नमस्कार बापू।
3: प्रणाम बापू।
4: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
2: बाबूजी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
1: बापू सब्जियां काट रहे थे।
4: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
1: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
4: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और न ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
1: जी बापू।
4: अच्छा जाओ।
1: जी।
4: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
2: जी, जी।
1: चलो चलते हैं।
2: जी।
0: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे, तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
3: बापू बापू ये देखिए।
4: अरे हाँ हाँ बिमला, आओ कहो कैसे आना हुआ?
3: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं। दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
4: देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना?
3: जी।
4: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
3: हाँ।
4: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दे। उन्होंने ऐसे दे दिए। उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
3: जी बापू।
4: हाँ, समझ गई ना?
3: जी।
4: जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे।
3: जी बापू, धन्यवाद।
0: साथियों, यह सुनकर विमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
5: अरे बापू ये बर्तन तो धुल गया है।
4: अरे सुधीर नहीं, अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
5: हाँ?
4: अभी तो इसे और चमकाना है।
5: ओ
4: देखो इसे और चमकाना है। ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
5: चमकने भी लगा।
4: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए, समझे सुधीर?
5: हाँ जी बापूजी।
4: हाँ शाबाश।
0: तो साथियों हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं। और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
6: जगबंधु,
0: चेतना,
6: अर्शद,
0: सौम्या,
6: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
6: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
7: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:30 होने को है। थोड़ी देर में हम सुनेंगे विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। भाग लेने वाले विशेषज्ञ हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: नमस्कार, विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में आप सभी का स्वागत। विकास की दौड़ में आज दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक ओर ऊर्जा की बढ़ती मांग और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा करना। भारत ने इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, सौर शक्ति, जैव ईंधन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जलवायु अनुकूल विकास को अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों के दौरान गुजरात में जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और मिशन लाइफ जैसी पहलों तक हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव सामने आए हैं। गुजरात का चारण का सोलर पार्क देश में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए भारत वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विस्तार में सहयोग कर रहा है। और आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की सौर क्रांति किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कहां तक पहुंची है, ऊर्जा सुरक्षा में स्वच्छ ऊर्जा की क्या भूमिका है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान तकनीक नीतियों और जनभागीदारी का किस प्रकार समन्वय किया जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक श्री आनंद शर्मा। आप दोनों मेहमानों का आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: और आइए सुनते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत क्या कुछ कर रहा है और अभी तक क्या कुछ किया जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से।
4: भारत में सौर ऊर्जा देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। बड़े सोलर पार्क से लेकर घरों की छतों तक सौर ऊर्जा का विस्तार लगातार हो रहा है। भारत की इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और फ्रांस की पहल पर 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान शुरू किया गया ISA सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक सहयोग मंच है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की तैनाती को गति देना और तकनीक, निवेश, क्षमता निर्माण तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। देश के भीतर सौर ऊर्जा को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी पहल है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को इसे मंजूरी दी। योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में भी पिछले एक दशक में बड़ी वृद्धि हुई है। 31 जुलाई 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 164.59 गीगावाट हो चुकी थी। वर्ष 2014 में ये क्षमता लगभग 2.8 गीगावाट थी। सौर ऊर्जा का विस्तार केवल अधिक बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं है, इसका संबंध ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने से भी है। साथ ही रूफटॉप सोलर के विस्तार से परिवार बिजली की लागत कम करने और कुछ मामलों में अतिरिक्त बिजली से आय अर्जित करने में भी सक्षम हो रहे हैं।
1: आनंद शर्मा जी, आपसे ही शुरू करते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहलें बहुत चर्चा में रही हैं। गुजरात के इस अनुभव ने देश की जलवायु और ऊर्जा नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया है? क्या गुजरात का जो ये मॉडल था, ये देश के दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है?
2: बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, ये विजनरी स्टेप था और वो भी 2009 में, जब शायद इतनी ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही थी नेशनल और ग्लोबल लेवल पर। उस समय एक स्टेप लेना और एक ऐसे डिपार्टमेंट का गठन करना जो कि ग्लोबल वार्मिंग, मिटिगेशन, अडेप्टेशन मुद्दों पे जिसने एक लीड रोल निभाया और एक उसी विभाग के अंडर जो है उन्होंने अपना एनर्जी का डिपार्टमेंट है, गुजरात एनर्जी डिपार्टमेंट, उसकी भी स्थापना की और वो आज एक पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल है, वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल है। करीब करीब वहां पर आप देखेंगे तो 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी आज जनरेट की जा रही है और 2000 मुझे लगता है 30 तक उसका टारगेट शायद 150 गीगावाट का है और 2050 तक 300 गीगावाट का है। और उसी की देखरेख में, उसी की पहल को देखते हुए अन्य स्टेट जो है, केरल भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है भारत जिस तरह से सौर ऊर्जा में गुजरात ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी फिलहाल मोदी जी, उनके अंडर जो विजनरी स्टेप लिया था वो एक मतलब कि इस समय जो दिख रहा है कि उस समय जो स्टेप लिया था, आप सोचिए कि इस समय जब लड़ाइयां शुरू हुई खासकर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर और हमारी एनर्जी जो है पेट्रोल डीजल ये सब प्रभावित हुआ है, तो अब समझ आ रहा है कि देखिए उस समय जो लिया हुआ स्टेप है कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। तो एक बहुत ही विजनरी स्टेप था और मुझे लग रहा है आज इसको हम और मतलब जैसे कहते हैं गति लानी होगी और उसके लिए भी सरकार जो है पूरा सब्सिडी दे रही है के साथ साथ जो उसके लिए इंटरेस्ट जो है 5-6% पे इंटरेस्ट पे पैसा भी मिल रहा है सोलर पैनल लगाने का। और आपने जैसे कहा पीएम सूर्य घर, करीब करीब 10 लाख घर जो है वो इसको लगा चुके हैं और मुझे लगता है टारगेट शायद 1 करोड़ जी से ज्यादा घरों का है आने वाले दिनों में। और उसके साथ साथ सोलर पंप्स, वो एक बहुत फायदा होगा किसानों को। कई बार क्या होता है आपके ग्राउंड में पानी तो है मगर आपके पास डीजल नहीं है उसको निकालने के लिए पानी के, सोलर पंप है तो आप खासकर सिंचाई कर पाएंगे फसल को उस समय जब आपकी लंबे समय से बारिश नहीं होती है। तो आपको ये देखिए ये जो एनर्जी सिक्योरिटी मिली उससे आपको फूड सिक्योरिटी में भी फायदा हो रहा है
1: जी।
2: तो ये एक बहुत अच्छी पहल है मैं कहूंगा। और अन्य कंट्रीज को एग्जांपल दिया जा रहा है जहां यूरोप और चाइना इवन उनकी पूरी इकोनॉमी कोल बेस्ड है और खासकर लड़ाई के बाद उन्हें पूरा कोल पे आ गए और वहीं इंडिया जो पहले शायद 5-7 साल पहले हम भी यही बात कर रहे थे पर अब हमने शिफ्ट होके सोलर पे आ गए। तो जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात होगी क्योंकि हमें जीरो कार्बन पे आना है मिनिमम और नेचुरली कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो आपकी तो क्लाइमेट चेंज में मिनिमम होगा या कम हो जाएगा। तो और यदि वो होता है तो हैजार्ड्स कम होंगे तो आपके जो पैसा और उससे जो नुकसान होता है और वो रिलीफ में जो पैसा था वो बचेगा और वो पैसा फिर डेवलपमेंट में जाएगा। तो ये अल्टीमेटली लिंक्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से
1: और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ये फुल साइकिल आपने चर्चा की। आनंद शर्मा जी 25 सालों का अनुभव सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबा अनुभव होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और जो अनुभव वहां से उन्होंने इकट्ठा किए उसे प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी दूर दृष्टि को देखते हुए उन्होंने लागू किया और उसके जो परिणाम हैं आज हम वो देख रहे हैं। हम कई देश में शहरों में कई राज्यों से जब गुजरते हैं तो घरों की छतों पर लगा हुआ सोलर पैनल इस बात की गवाही देता है। आज कई राज्य हमारे कई शहर जो हैं जितनी अपनी ज़रूरतें हैं उससे कहीं ज़्यादा बिजली उत्पादन कर रहा है। और आपने अभी जिस पूरी एक साइकिल की बात की देश के विकास में किस तरीके से लोगों की बिजली की बिल में जो बचत हो रही है वो पैसा अल्टीमेटली जीडीपी में बढ़ावा दे रहा है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहना है आपका कि ये क्या जो सोलर पैनल हैं घर घर में कहाँ तक हम पहुँचे हैं और आगे 5-10 साल में हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं?
2: नहीं देखिए बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है उसमें कोई डाउट नहीं है। यदि पूरे वर्ल्ड लेवल पर चले तो इंडिया की प्रोग्रेस सराहनीय है और कुछ स्टेट जो है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये पहला स्टेप गुजरात में लिया गया तो गुजरात तो बहुत जबरदस्त कर रहा है। आपने अभी एक वो पार्क की बात करी वो उसके अभी खेवड़ा जो है सोलर पार्क है वो तो बहुत जबरदस्त उसके कहते हैं 30 गीगावाट जो कि एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट या कोई थर्मल पावर उतनी एनर्जी जनरेट करने वाला है जो कि करीब करीब मुझे लगता है 5,300 एकड़ में फैला हुआ है और आपने आप में शायद ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एक जनरेशन वाला रीजन होगा। तो एक ये बहुत बड़ी पहल है और आपने भी सही कहा कुछ दिनों में ये गुजरात जो होगा सरप्लस स्टेट में होगा। और वो यही नहीं कर रहे उसके साथ साथ उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग वहां शुरू कर दिया है मतलब कि पानी भी होगा आपके पास ऊर्जा भी हो सकता है और वो सब ये मार्जिनल लैंड में
1: जी
2: जहाँ कुछ ग्रो नहीं करता था। तो ये भी बड़ा अच्छा है कि वो वाली कोई अच्छी वाली कई बार लोग कहते हैं ना उपजाऊ भूमि खराब हो गई वो भी नहीं है तो मार्जिनल लैंड थी तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाया है और हु नोस कि कल को उसी के नीचे कुछ और पानी हार्वेस्ट हो जाएगा तो कुछ और लगने लग जाएगा। तो ये सोलर पैनल बड़ी अच्छी प्रयास है और मुझे लग रहा है इसको जिसे वार फुटिंग पे मुझे करना चाहिए क्योंकि ये क्राइसिस को अभी जो हाल ही में एनर्जी क्राइसिस हुआ है तो हर घर पे हर बिल्डिंग पे ये जरूर देखने चाहिए और वार फुटिंग पे ये काम होना चाहिए मेरा ये मानना है। और ये होता है तो हम लोगों की जीडीपी भी बढ़ेगी, जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों से डीजल पेट्रोल की वो करने के लिए वो भी खत्म होगी और जब एनर्जी सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी तो आपकी फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा और आप एक सुपर पावर भी बन पाएंगे।
1: बिल्कुल, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में जो सौर ऊर्जा की क्रांति हुई है, काफी घरों की छतों पर अब हम देखते हैं सोलर पैनल लगा हुआ है और हर घर लगभग बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। अब ये नहीं है कि बिजली आएगी गांव में, पोल लगेगा तब होगा, लोग बड़े आराम से उसको लगा रहे हैं और सरकार सहयोग कर रही है। तो इन 12 वर्षों में अगर सिर्फ सोलर पैनल की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, कहां से कहां हम पहुंचे हैं?
2: एक समय ऐसा आ रहा था कि नेचुरली आपको मालूम होगा कई प्रदेशों में तो बिजली आती ही नहीं थी, और आती भी थी तो मात्र 3-4 घंटे रहती थी। अब क्या है, लोग इंडिविजुअल अपने यहाँ जब से लगाने लगे हैं तो उनके पास अब घर में बिजली भी आ रही है, और नेचुरली बिजली होगी तो पढ़ाई लिखाई भी बढ़ेगी आपकी, और साथ साथ आपके सोलर पंप हैं, आप पानी भी निकाल पाएंगे, तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी आपका बढ़ रहा है, बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एक समय भी ये बात हो रही थी कि ऑफ द ग्रिड, मतलब आपको मेजर ग्रिड से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सोलर पैनल लगाइए और अपनी बिजली खुद पैदा कीजिए। और अब जिस तरह से ये बढ़ रहा है तो फिर बात हो रही है कि ये वाली जो ग्रिड है ऑफ ग्रिड नहीं, इसको मेन ग्रिड से, मतलब आप खुद तो अपने घर का खर्चा निकालेंगे ही बिजली का और बेचेंगे भी सरप्लस को, तो अब ऐसी स्थिति आ रही है कहीं जहां ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मेन ग्रिड।
1: मतलब आप अपनी जरूरत तो पूरी कर ही रहे हैं निःशुल्क और साथ ही पैसे भी कमा रहे हैं।
2: पैसे भी कमा रहे हैं।
1: बिल्कुल आनंद जी, आपसे एक सवाल और है कि जलवायु परिवर्तन जो है आज केवल पर्यावरण का विषय ही नहीं रहा, बल्कि कृषि, जैसा भी आप बता भी रहे थे, कृषि है, स्वास्थ्य है, जल संसाधन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये हमारे आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है।
2: जी,
1: भारत में बदलते मौसम के पैटर्न और चरम मौसमी घटनाओं को देखते हुए, कहीं बहुत तीव्र गर्मी है तो कहीं बहुत ठंडा है, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा है, इन सबको देखते हुए जलवायु अनुकूल विकास की क्या आवश्यकता है और मौसम विज्ञान विभाग इस दिशा में किस प्रकार से योगदान कर रहा है?
2: देखिए, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की बात हो रही है वो एक बेसिकली एक स्ट्रेटजी है जो कि कंबाइन करती है अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू रियलाइज द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ये दोनों चीजों को अलग अलग नहीं मानते हैं, कह रहे हैं क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट करेंगे आप तो यू विल बी बिल्डिंग रेजिलियंस इन द सोसाइटी, मतलब कि अडेप्टेशन है एक तरफ आपका मिटिगेशन है, और ये साथ में जुड़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो बेसिक गोल तो क्या है कि हमें, यदि आपको क्लाइमेट एक्शन जो है उस पर मेजर फोकस है, और क्लाइमेट एक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है आपका अडेप्टेशन, एक है मिटिगेशन। मिटिगेशन में मीन्स है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है, नेचुरली आपको ये तो मालूम ही होगा एस्पिरेशनल सोसाइटी है, सबको बड़े घर चाहिए, कारें चाहिए, रहन सहन की और सहूलतें चाहिए, तो जब आप ये प्रोवाइड करते हैं तो आप ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन करते हैं, और उसके चलते जो होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है, और वो ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज से नेचुरली जब क्लाइमेट जल्दी से बदलेगा और जबरदस्त बदलाव आएंगे तो चरम सीमाएं, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, कभी सूखा होगा, कभी फ्लड होंगे, कभी हीट वेव होगी, तो ये सब करने के लिए, इसको बचने के लिए हमें मिटिगेशन बड़ा जरूरी है कि हम कम से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करें, यानी कि हमारा जीरो कार्बन इकोनॉमी की तरफ हमें आगे चलना है, मिटिगेशन आ गया ये पहला। दूसरा एस्पेक्ट हो गया इसका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है कि जहां भी कोई रिस्क है, जैसे समुद्र के पास है, गुजरात की बहुत बड़ी कोस्ट है, या ज्यादा पूरा इंडिया में इतनी, वहां पे सी लेवल राइज का खतरा लोग कह रहे हैं, साइक्लोन का खतरा रहता है, तो ये जो खतरे हैं उसमें कहां रिस्क है वो रिस्क को जानना, और उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके लिए मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। यदि आप सही समय पे, आपको रिस्क मालूम है और आप हजार्ड को प्रिडिक्ट कर देते हैं, उसकी वार्निंग जनता को देते हैं, उनको समय पे हटा देते हैं, तो जान माल आप बचा लेंगे, और यदि आप ये कर लेते हैं तो वही बात होगी, आपका पैसा बच गया, वही पैसा आप डेवलपमेंट में जाएगा जो कि रिलीफ में जा रहा था पहले। तो यही अडेप्टेशन और मिटिगेशन है, और जब अडेप्टेशन मिटिगेशन ढंग से होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा, हर बार हैजार्ड आएगा, आपने प्रेडिक्शन नहीं किया, हजारों जाने जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उजड़ेगा और आपका पैसा रिलीफ में जाता रहेगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखनी कि जब हम इतने सारे काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड हमारी चॉइसेस होनी चाहिए, यानी कि ये है कि ऐसा ना हो कि हम घर बना रहे तो वो उसके चलते क्या हुआ, घर ऐसी जगह पे बना दिया कि वो हजार्ड बाढ़ में बह गया। तो आपस में इन सब में लिंक्स होने चाहिए अक्रॉस द पॉलिसी, मतलब हाउसिंग, एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक को फिक्स करते हुए हम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो आपस में एक इंटेग्रेटेड वो रहना चाहिए, मगर साथ में ये भी ध्यान रखना है हमें कि क्लियर इंप्लीमेंटेशन जो गैप है उसको क्लियर करना है। अभी क्या है कि कई चीजें तो हम बोल रहे हैं, कमिट कर रहे हैं उनको, बट उसको अभी शायद उसका कार्यान्वयन करने की बहुत स्कोप पड़ा है हमारे पास, और यदि वो हम करते हैं तो ये गैप जो है हमारे गोल में और एक्शन में अभी थोड़ा गैप है, उसको पूरा करना होगा।
1: आनंद शर्मा जी, सौर ऊर्जा उत्पादन और सौर उपकरणों का जो निर्माण है, इस क्षेत्र में भी भारत ने काफी प्रगति की है, पहले हम इसे आयात करते थे, अब उत्पादन तो हो ही रहा है और इसके उत्पादन में जो सामान लगता है, जो उपकरण लगते हैं, उसका निर्माण भी हम घरेलू स्तर पर कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से आप अभी बात कर रहे थे, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है?
2: नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई, क्योंकि ऐसा था अभी हम कुछ साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले, तो एक्चुअली जितने भी सोलर पैनल थे हम सब लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, और इम्पोर्ट कर रहे थे वो तो एक चीज थी। उसके बाद में जब से फिर ये चला आगे को, तो जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो अब सवाल आया कि भाई दिन में तो हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और रात को तो नहीं है, तो इसको स्टोर कहाँ करें एक्स्ट्रा को? तो उसके लिए बैटरीज की बात आई, लिथियम बैटरी, वो भी हम कहाँ से इम्पोर्ट कर, बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे, तो हमारा बहुत सारा पैसा उसमें लग जा रहा था। अब यह है कि बहुत लार्ज स्केल पे जो है अब हमने ये सोलर पैनल इंडिया में बनने लग गए हैं और ऐसे ही बैटरीज भी बनने लग गए हैं, मगर फिर भी आज बहुत सख्त जरूरत है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लिथियम हमें जो है उसके लिए और सिलिका जो कहते हैं हमें इसके लिए चाहिए सोलर पैनल्स की, इन दोनों पे आज भी हमें निर्भर होना पड़ रहा है चाइना के ऊपर। तो वो निर्भरता हमको कम करनी पड़ेगी, इनोवेटिव कहते हैं हमें टेक्नोलॉजीज और डेवलप करनी पड़ेंगी स्टोरेज के लिए, और पैनल्स बनाने के लिए भी हमें मतलब सिलिका से जो है जो उस पर डिपेंडेंस है उसको खत्म करना पड़ेगा। यदि वो हम खत्म कर पाते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह की हमारी भारत सरकार की पॉलिसीज हैं, तो हम शीघ्र ही उसमें भी मतलब कि अच्छे रिजल्ट आएंगे हमारे सामने में, और ऊर्जा में तो डेफिनेटली आ ही चुके हैं और ये तो बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे। सिर्फ हमें जो दो करने की जरूरत है वो यही है कि लिथियम की जो बैटरीज हैं वो भी हम पूर्ण अपने मतलब कि खुद ही सेल्फ रिलायंट हो जाएं उसमें भी, और पूरे पैनल को बनाने से लेकर उसके जो उसमें जो सिलिका जो भी पार्ट लगते हैं उसमें भी हम पूर्ण सेल्फ रिलायंट होना हमें जरूरी है अभी।
1: और आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में मिशन लाइफ क्या है।

0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों और तकनीक के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है। इसी सोच के साथ भारत ने मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों और समुदायों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मिशन के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, कचरा कम करना, ई कचरा कम करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और टिकायु खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। मिशन लाइफ के तहत देश भर में अब तक 40 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 7 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया है। बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए देश भर में 12 लाख से अधिक इको क्लब भी मिशन लाइफ के तहत काम कर रहे हैं। मिशन लाइफ का संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों और संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है। मिशन लाइफ इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल यानी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है और टिकायु जीवन शैली को जन भागीदारी से जोड़ता है।
1: आनंद शर्मा जी, इसके माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, काफी बड़े पैमाने पर सरकार कर रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में आम नागरिकों की दैनिक आदतों, ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन और टिकाऊ उपभोग की कितनी भूमिका हो सकती है और इस मिशन को जन आंदोलन का स्वरूप देने में मौसम विभाग और पर्यावरण जागरूकता की खास तौर पर क्या भूमिका आप देखते हैं?
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि ये जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो इनिशिएटिव था, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में जो आपका COP26 हुआ था ग्लासगो में, वहां ये इन्होंने ये इनिशिएटिव जो था लिया था और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। और इसका बेसिकली जो मेन है टू प्रमोट माइंडफुल कंजम्पशन एंड रिड्यूस माइंडलेस कंजम्पशन। तो अभी समय क्या हो रहा है, माइंडलेस कंजम्पशन हो रहा है, जबकि होना चाहिए माइंडफुल कंजम्पशन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और साथ में रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन भी। दूसरा है कि अभी तक हम कर रहे थे यूज एंड थ्रो, यूज करो और थ्रो करो, और उससे क्या हो रहा है गार्बेज और बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। तो उसको अब चेंज कर दिया है सर्कुलर इकोनॉमी में, यानी कि आप कचरा भी पैदा करेंगे तो उसको सेपरेट भी करेंगे और उसको आप रीयूज करेंगे। जैसे कि आपका वेस्ट निकल गया बायोमास, उससे आप बायोमास से अपना एनर्जी निकाल ली आपने, उससे आपने कहते खाद बना ली आपने, उसको मल्च की तरह यूज कर लिया खेती में, ये बहुत सारे बेनिफिट हो गए उससे, बायोगैस बना ली आपने। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी में सब आ रहा है और उसमें पूरे एकदम जैसे कहते हैं ना SOP बनी है बड़े अच्छे ढंग से कि हर चीज को मॉनिटरिंग भी हो रही है और उसमें जॉब भी क्रिएट होंगी और आपका वेस्टेज भी मिनिमम होगा। और ये प्रमोट करता है इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को। और इसमें फोकस क्या है, फोकस है आपका प्रो प्लैनेट पीपल, यानी कि हर जो नागरिक हो वो एक जिसे कहते हैं ना एक्टिवली प्ले करेगा कि भाई मैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्रो प्लैनेट पीपल, वो इसका मेन फोकस है। तो उसमें आपने पूछा कि मौसम विभाग और पर्यावरण विभाग का क्या रोल हो सकता है इसमें, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आज की आ रही है वो ये आ रही है कि जो ज्यादातर लोग एयर कंडीशन एनवायरमेंट में रह रहे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस है, एयर कंडीशन स्कूल है, एयर कंडीशन मॉल है, एयर कंडीशन घर है, एयर कंडीशन कार है, तो वो नेचर से जो है हमारी प्रकृति से कट ऑफ हो गए हैं। इसको मैं इसको कहता हूं नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर हो गया कि उसको प्रकृति में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है बाहर। तो जब वो पता ही नहीं तो वो उसको कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, उसको पता ही नहीं मेरी यमुना नदी खराब हो चुकी है, मेरे लैंडफिल इतने ऊंचे ऊंचे हो गए। पहले उसको कनेक्ट करना है, किताबी ज्ञान से ये लोग सीख नहीं पाएंगे पर्यावरण के बारे में, उनको फील्ड में ले जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एक चीज। दूसरी बात, जब कनेक्टेडनेस कैसे होगी, जब उनको समझाना पड़ेगा भाई देखिए आप जब एक्स्ट्रा कोई पॉलिथीन लेते हैं या आप एसी को ही आप कहते हैं करना चाहिए, आपने 18 डिग्री पे लगा के रखा है, यदि आप उसको 24 डिग्री पे करके रखते हैं बिजली बचा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आपको ये भी बताना चाहिए बिजली कहां से आ रही है
1: और आप अपना स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं,
2: स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, एवरीथिंग इज लिंक्ड, बिल्कुल स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं आप। और जब आपने और इसको ये मालूम होना चाहिए पॉलिथीन कहां जा रहा है, ये नदी में जा रहा है, फिर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो फिश वगैरह में जा रहे हैं, उसी को लोग खा रहे हैं, तो कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उनको ये सारा कनेक्टेडनेस जो है इकोसिस्टम की, इकोनेस का आइसोलेटेड नहीं है, पूरा कनेक्शन है, ये जब हम समझाएंगे और बताएंगे वही पॉलिथीन को आप जला रहे हो तो फिर CO2 गैस निकल रही है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है और आप पिछड़ते रहेंगे क्योंकि आपका सारा पैसा तो कहते इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाएगा आपका, फिर आप उसी में पैसा लगाओगे तो नए स्कूल, नए कॉलेजेस, नए हॉस्पिटल, नई यूनिवर्सिटीज आप कैसे खोलेंगे।
1: बिल्कुल,
2: ये कनेक्टेडनेस जब लोगों को ये समझ आ जाएगी सिंपल भाषा में कि भाई हाँ ये तो मुझे तो प्रो प्लैनेट पीपल बनना है,
1: बिल्कुल
2: मुझे है ना, मेरे को धरती पे अपना बोझ कम से कम करना है, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम कितना पानी डेली यूज कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आपका डेली वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो लोग नहीं बता पाते। कोई कहता 10 लीटर, कोई कहता 50 लीटर, जबकि वो 500 लीटर कर रहे हैं। तो वही जो है ना,
1: दे आर नॉट माइंडफुल, उसके बारे में माइंडफुलनेस
2: जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि माइंडफुलनेस लेके आनी है उनमें, कि उनको रियलाइजेशन हो कि भाई हम कर क्या रहे हैं। आजकल के देखा होगा जो बच्चे हैं, हर उठाते हैं फोन, सामान पे सामान आ जा रहा है, और आप देखेंगे तो दिन भर में इतना कचरा इकट्ठा हो जा रहा है, तो कहाँ जाएगा वो कचरा? वो सारा फिर वो आप जला देंगे कहीं ले जाकर। सेग्रीगेट तो सब नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकारों ने बड़ा अच्छा कर दिया, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है। तो वही उनको समझाना है, ये फेंकना नहीं है, इसको रिसाइकल करना है। और काफी इसमें पहल हो रही है, काफी इंडस्ट्रीज आ गई हैं। आजकल तो कपड़े भी मिलते हैं, आपको बोलते हैं रिसाइकल्ड है ये कपड़ा, या ये बैग है जो रिसाइकल्ड हो रहा है। तो मगर इसमें एक और भी ध्यान रखना है कि ग्रीन वॉशिंग ना हो, कि बोल रहे हैं कर नहीं रहे हैं, करना है, करके दिखाना, क्योंकि अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है।
1: आपने सही कहा, पॉपुलेशन बड़ी है, क्योंकि भारत इतना विशाल देश है, इसकी टोपोग्राफी हर जगह अलग अलग है। कहां अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और नागालैंड, और कहां केरल, और कहां जम्मू कश्मीर, कहां गुजरात, कच्छ, इतना बड़ा देश है। अब ऐसे इतने बड़े भौगोलिक देश में एक्सट्रीम वेदर्स की भी समस्या है, कहीं हीट वेव है, कहीं अत्यधिक वर्षा है, बाढ़ है, कहीं चक्रवात है। लेकिन पिछले 12 वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और उनका सार्वजनिक जीवन में जो अनुभव रहा है, उस पर चलते हुए उनके नेतृत्व में इन सब चीजों पर खास तौर पर ध्यान देना शुरू किया है। हमने ये भी देखा था एक वक्त पर कि IMD, आप वहां रहे हुए हैं एक बड़े पद पर, IMD जब कहती थी कि बारिश होने वाली है, बारिश होती नहीं थी, और उनके कई सारे जो पूर्वानुमान होते थे वो या तो सटीक नहीं होते थे या कई बार गलत साबित होते थे। लेकिन अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि पूर्वानुमान की सटीकता सही रही है, समयबद्धता में सुधार हुआ है, आम नागरिकों तक चेतावनी भी समुद्री इलाकों में बड़े समय से पहुंच रही है। IMD ने ये कैसे किया, क्या रणनीति है
2: इसमें? बहुत सारी चीजें आप किसी से पूछेंगे मीडिया से, तो एक एक्सेलेंट फोरकास्ट मेरी, चाहे वो मैं कर्नाटका में था, चाहे मैं सिक्किम में था, चाहे मैं देहरादून में था, दिल्ली में था, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसके पीछे सब कुछ है कि निरंतर प्रयास। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी पिछले 15 साल में तो बहुत तेजी आई है इन प्रयासों में, पर पहले भी प्रयास हुए हम लोगों को, जो जिस तरह से मतलब सुपर कंप्यूटर 87 में आ गया था, और उसका एक मेजर रोल रहा, सबसे मेजर रोल रहा, क्योंकि उससे पहले अमेरिका में सुपर कंप्यूटर दे नहीं रहा था, फिर सुपर कंप्यूटर मिला, और उस सुपर कंप्यूटर के चलते जो है न्यूमेरिकल वेदर प्रोडिक्शन शुरू हुआ, उसने एक बहुत बड़ा रोल लाया। दूसरा सैटेलाइट जो आए, सैटेलाइट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल, डॉपलर वेदर रडार आ गए, मगर इनके नंबर कम था डॉपलर वेदर रडार का, सैटेलाइट में भी कुछ इतने सेंसर्स नहीं थे जितने हम मौसम विभाग को चाहिए थे। फिर वो जब बोला गया और बीच में, तो ये पिछले 10-15 साल में इनमें बहुत भयंकर तेजी आई, यानी कि मतलब काफी पैसा इसमें गया, और नए सुपर कंप्यूटर्स लिए गए, नेटवर्क को बढ़ाया गया। डॉपलर वेदर रडार जो है मेरा ख्याल अभी 25-30 लग चुके हैं, और मेरा ख्याल 100 इनका नंबर पहुंचने की बात हो रही है अगले कुछ 1-2 साल के अंदर। तो इसमें निरंतर प्रयास हो रहे हैं, और बिल्कुल सही है कि आज से 25-30 साल पहले लोग बोलते थे ऐसा कि भाई मौसम विभाग जो बोलता है गलत, अब नहीं है, अब काफी सालों से 15-20 साल से ये धारणा बदली है, और रिजल्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं, और बहुत लोगों की जानें बच रही हैं सबसे बड़ी बात। तो ये सारी जो प्रयास हैं, ये हमारे जो है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमारी सोसाइटी को रेजिलिएंट बना रहे हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि और मानसून का कितना महत्व है ये कहने की जरूरत नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के वितरण, तापमान और मानसून के व्यवहार में होने वाले बदलाव किसानों के लिए क्या चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, कृषि मौसम सेवाएं, जिला स्तर के पूर्वानुमान और समय पर सलाह किसानों को इन चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार से मदद कर सकती हैं, और क्या नई तकनीक और IMD लेकर आ रहा है?
2: ये सवाल बहुत बढ़िया है। आपको एक तो मालूम है कि एक तरफ तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, और ये कहा गया कि भाई इससे क्या होगा, बीमारियां बढ़ेंगी पौधों में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी, वाटर सिक्योरिटी का भी इशू होगा, भाई नेचुरली जहां बारिश नहीं वहां सूखा पड़ेगा। मगर उसके विपरीत आप देखेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है ओवर द ईयर्स। आप देखिए, हालांकि इस साल थोड़ा प्रोडक्शन में कमी हो सकती है क्योंकि एल नीनो ईयर था, मगर उसके बावजूद भी मौसम विभाग ने जिस तरह से तरक्की की है, और जिस तरह से मौसम आधारित कृषि सलाह लोगों को मिल रही है, जिस तरह से कहते हैं ICR ने ड्राउट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप करी हैं, तो इन सब का एक मेजर रोल रहा है। अब जैसे एग्जांपल है, समय समय पर यदि किसान को मौसम आधारित सलाह मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई अभी ये बारिश आने वाली है, तो हम किसान भाइयों को बोलेंगे देखो किसान भाइयों आपकी फसल जो तैयार पड़ी है 3 दिन में बारिश आने वाली है, तो आपकी तैयार फसल को काट के सुरक्षित स्थान पर रख लो, तो नुकसान बच गया उसका। ऐसा ही है, मान लीजिए किसान को इस समय फसल है उसमें फ्लावरिंग आ रही है जैसे महाराष्ट्र में, और बारिश मान लीजिए कि आने वाली है, तो आप कहोगे

0: बचा रहे हैं हम लोग, और वही स्प्रे जो केमिकल के पानी में जाते हैं, मच्छी में जा रहे हैं, फिर लोग उसको खा रहे हैं, तो हेल्थ खराब हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा है। मौसम आधारित जो कृषि सलाह है उससे हम किसान का पैसा बचा रहे हैं, लोगों की हेल्थ बचा रहे हैं और साथ साथ पर्यावरण को भी बचा रहे हैं।
1: और देखिए, भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल पर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की स्थापना हुई। आज ये सौर ऊर्जा के वैश्विक विस्तार और विकासशील देशों में निवेश और तकनीक सहयोग का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है, जिसका हम लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं। यूरोप के कई देश अगर आप देखें, जैसे डेनमार्क, तो वहां पर पवन ऊर्जा भी बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल में आ रहा है और उससे ऊर्जा पैदा की जा रही है। भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर, पवन, जैव ईंधन और परमाणु ऊर्जा जैसे जो विभिन्न स्रोत हैं, इनका संतुलित मिश्रण कितना जरूरी आप मानते हैं? क्या पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं?
0: नहीं, उसमें भी बिल्कुल बढ़ रहे हैं, और हम सोलर एनर्जी पे ज्यादा हमने मतलब कि उसमें अचीवमेंट है हमारी। और बिल्कुल आपने कहा कि हमें मिश्रित चाहिए, हमें सोलर एनर्जी भी चाहिए, हमको विंड एनर्जी भी चाहिए, हमको ओशन वेव से भी एनर्जी जनरेट करना है, जियो थर्मल एनर्जी को भी एक्सप्लॉइट करना है, बायोफ्यूल्स को भी एक्सप्लॉइट करना है। यदि हम ये सब कर पाते हैं, और ये बड़ा अच्छा है कि जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने 2009 में गुजरात क्लाइमेट सेंटर से लेकर 2015 में जो हमारा COP 21 हुआ था पेरिस में, वहां ये इनिशिएटिव लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो एक बहुत ही दूरदर्शिता थी उसके अंदर। और मुझे लगता है 140 कंट्रीज उसके मेंबर है, जिसे सनशाइन कंट्रीज कहते हैं, और बिल्कुल उससे काफी बल मिला और हमें लीडरशिप एक मिली। और अब भारत सरकार जो है बिल्कुल बायोमास पे जो है पूरा फोकस है उनका, बायोफ्यूल्स, फिर वही मैंने कहा कि वो जो प्लांट्स लगाए जाएंगे मार्जिनल लैंड्स पे लगाए जाएंगे, और जो एनर्जी क्रॉप्स होंगी जहां पे कुछ नहीं उग रहा था, उसके साथ जो आपकी यूज कुकिंग ऑयल है आप उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोमीथेन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो हमें मल्टी, जिसे कहते हैं प्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए, सिर्फ एक पे निर्भर नहीं होना है। सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, जितने पॉसिबल है उसको एक्सप्लॉइट करना है और टू द मैक्सिमम करना है, क्योंकि क्लीन एनर्जी चाहिए, ग्रीन एनर्जी चाहिए, और हमारा टारगेट है टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो इमिशन, ये हमारा गोल है।
1: सौर ऊर्जा में तो हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, क्या विंड एनर्जी के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं भारत में?
0: नहीं, चुनौतियां देखिए सोलर एनर्जी में तो एडवांटेज ये है कि क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है, पूरे एक कोने से दूसरे कोने सनशाइन रहता है, ब्राइट सनशाइन रहता है, तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया, तो ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। मगर विंड एनर्जी को हर जगह नहीं लगा सकते आप, उसके लिए आपको वहां पे विंड तेज चलेगी वहीं लगाया जा सकता है, या तो कुछ कोस्टल सिटीज हैं या फिर पहाड़ों के ऊपर आपको। और इसके लिए ये अगेन मौसम विभाग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे पास विंड एटलस है, सोलर एटलस है, जहां बताया जाएगा आपका कि भी कहां आपको लगाना है कहां नहीं लगाना है। सोलर एनर्जी के लिए हमारे लिए प्लस पॉइंट है, विंड के लिए कोस्टल सिटीज पे लग सकता है, और कोस्टल सिटीज में भी हमें ध्यान रखना है कि हम लगाएंगे तो वहां साइक्लोन भी आते हैं, तो साइक्लोन आएगा तो वो नेचुरली बहुत तेज होगी स्पीड, 150-200-250 की, तो वो उखाड़ भी सकता है। मगर हाँ, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम विंड स्पीड जो 250 आती है करीब, तो उससे जो है ज्यादा की ताकत का हमें वो स्ट्रक्चर वहां खड़ा करना है, जिससे कि वो आ भी जाए तो रेजिलियंट होगा, वो टूटेगा नहीं।
1: विंड एनर्जी के लिए हवा की स्पीड एक आमतौर पर कितनी होनी चाहिए?
0: देखिए कम से कम 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो होनी ही चाहिए, तो वो आम ज्यादातर जगहों पे आपको नहीं मिलती है, वो आपको कोस्टल सिटीज में मिलेगी, या हाइट, जैसे जब हाइट ऊपर जाते हैं हम लोग तो विंड स्पीड बढ़ती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता जाता है, और यदि आप 12 किलोमीटर पे चले जाएंगे तो हवाएं चल रही हैं 150 किलोमीटर की स्पीड से, जिसे हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे तो पहाड़ है, पेड़ है, बिल्डिंग है, वो रेजिस्टेंस होता है तो विंड स्पीड कम हो जाती है, और जहाँ खुला इलाका होता है तो वहाँ विंड स्पीड ज्यादा होती है।
1: तो हेडविंड और टेलविंड जो होता है वो 80-100 बहुत आम
0: बात है। और आपने देखा होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जेट स्ट्रीम का डिस्कवरी हुई थी, कि जब अमेरिकन प्लेन्स जब कहते हैं जा रहे थे, कहते हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो वो फास्ट जा पा रहे थे, और जब वो ईस्ट से वेस्ट लौटते तो उनको ज्यादा समय लगता था, तो उन्होंने देखा क्यों हो रहा है, क्योंकि विंड उनको जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट जाने में मदद करती थी उनको, और जब आते थे तो अगेंस्ट,
1: जब भी हेडविंड होगा तो वो ज्यादा वक्त लगेगा। आनंद शर्मा जी, विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगले दशक में भारत की हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्या नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे और जन भागीदारी को एकीकृत कर यानी इंटीग्रेट करके भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर सकता है?
0: नहीं, बिल्कुल कर सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात है, एक तो हमने लीडरशिप तो ली, और एक और भी ध्यान रखिए, आज से 1000 साल पहले भी भारत जो था, देश जो था, हमारा जिस तरह का कल्चर था, हम लोग कंजर्वेशन में, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन में लीडर थे
1: जी,
0: पर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है, और अब फिर दोबारा से हम एक इंटरनेशनल लेवल पे लीडरशिप का रोल अब निभा रहे हैं, और जिस तरह से हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, हम डेफिनेटली जो है इस चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की समस्या

0: क्या हो, चाहे सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ने का प्रयास हो, उस सब में हम बिल्कुल कहते हैं सक्षम हैं। मगर हाँ, प्रयास ये है कि लोगों को, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब तक हम पर्यावरण से कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं पूरे साइकिल को कि किस तरह से काम करता है, और ग्रीन वॉशिंग ना हो, मॉनिटरिंग रेगुलरली हो और इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे उसके लिए आपको जितनी सब्सिडी देनी है सब्सिडी दीजिए, टैक्स रिलीफ देना है टैक्स रिलीफ दीजिए, मगर हर कॉस्ट पे हमको पर्यावरण को बचाना होगा कि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। एनवायरमेंट सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी,
1: हर कॉस्ट पर पर्यावरण को बचाना होगा और तभी हम विकसित भारत 2047 की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। आज की चर्चा में हमने जाना कि हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा केवल भविष्य की जरूरत नहीं बल्कि वर्तमान की अनिवार्यता भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद शर्मा जी, आप अतिरिक्त महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ था। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: आकाशवाणी रांची है। सामईन की खिदमत में पेश है हमारा उर्दू प्रोग्राम। सामईन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपसे रूबरू है आपकी दोस्त फौजिया तजीम, और हमारे साथ हैं हमारे साथी।
1: मैं आपका दोस्त हिदायतुल्लाह। आदाब फौजिया।
0: आदाब।
1: और खैरियत से हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे और हमारे सामईन भी।
1: बिल्कुल, खैरियत से होने की एक बड़ी वजह ये है फौजिया कि पहले के बनिस्बत अब मौसम थोड़ा साजगार है। कहा जाए कि त्योहारों के मौसम में हम चल रहे हैं, दाखिल हो गए हैं, और अभी रोड पर गहमा गहमी त्योहारों का देखा जा रहा है।
0: बिल्कुल जी हाँ सामीन, अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और इसे हम त्योहारों का महीना भी कहते हैं।
1: बिल्कुल, और ये फौजिया हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान एक तरह से देवी देवता और सूफी यानी कहा जाए के मानने वालों का, ये ईश्वर पर ईमान रखने वालों का, अल्लाह को मानने वालों का ये मुल्क है। तो इसलिए हमेशा हम किसी न किसी त्योहार को मनाते रहते हैं और इसी त्योहार के तहत हमारी मोहब्बत हमारे भाईचारे बढ़ते रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हिदायतुल्लाह सबसे पहले आज हम बातें करेंगे, आज है 2 अक्टूबर।
1: जी बिल्कुल।
0: तो 2 अक्टूबर बहुत ही खास दिन है, तान में आजादी के माहौल में सांस ले रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया, हमारे बाबाए वतन यानी ये कहा जाए कि एक मुजाहिद आजादी, बल्कि वो एक अजीम मुफक्किर भी कहा जाए, बाबाए वतन महात्मा गांधी
0: जो
1: है एक मुजाहिद आजादी ही नहीं थे बल्कि वो एक अजीम मुफक्किर फिलोसफर और अपने दौर की एक बेमिसाल शख्सियत थे। और इस यौम पैदाइश के मौके पर फौजिया उनके नजरियात के बारे में हम लोग बात करेंगे, उनके ख्यालात के बारे में बात करेंगे, उनके विचारों के बारे में बात करेंगे। तो फौजिया गांधी जी का मानना था कि सच्चाई ही खुदा है।
0: और बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, स्वच्छ परिवेश स्वस्थ देश के बारे में। और इसी के मद्देनजर आज हमारे स्टूडियो में मधु है मोहतरमा
1: अमरीन परवीन। फौजिया उनका मकाला का उनवान भी है गांधी की आदम तशद्दुद की आज के दौर में अहमियत।
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा मौजू है और इस मौजू पर वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सामीन आइए हम एक ऐसे हिंदुस्तान का तखयल आम करें जहां इंसानियत की सबसे आला कदर हो और इंसानी हस्ती का एहतराम मुकद्दस तरीन फरीजा हो। एक ऐसे हिंदुस्तान की नींव रखें जिसे हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने रखा था। सभी जात व धर्म को भुला कर आपस में बिल्कुल भाई भाई की तरह रहें। हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी की यौम पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुई थी। गांधी जी ने हमारे मुल्क को अंग्रेजों के जुल्म और जाबिर हुकूमत से आजाद करवाया था। 1929 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। हिंदुस्तान की आजादी के लिए उन्होंने कई जद्दोजहद की रहबरी की। देश को आजादी दिलाने की जंग में सबसे अहम किरदार निभाने वाले महात्मा गांधी थे। उनकी यौम पैदाइश की खुशी का दिन है।
1: बिल्कुल फौजिया, गांधी जी ने दुनिया को नॉन वायलेंस यानी अदम तशद्दुद को बताया कि तशद्दुद से कभी किसी मसले का हल नहीं निकल सकता। अदम तशद्दुद कोई कमजोरी नहीं बल्कि ये सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बगैर कोई हथियार उठाए सिर्फ अपने जब्त और आदम तशद्दुद के बल को सामने रखकर बरतानवी सल्तनत को झुकने पर मजबूर कर दिया।
0: बिल्कुल सामईन, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती का ये मुकद्दस दिन हमें बापू के अजीम नजरियात और उनके पैगाम की याद दिलाता है। आज की तेज रफ्तार और पेचीदा दुनिया में गांधी जी के अफकार, खासकर अहिंसा, सच्चाई और आपसी भाईचारा पहले से कहीं ज्यादा अहम और प्रासंगिक हो गए हैं। बापू का मानना था कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि सब्र, तहम्मुल और मोहब्बत से दिया जा सकता है। उनका ये मकूला कि दुनिया में वो तब्दीली बने जो तुम देखना चाहते हो, आज भी हर इंसान को अपने अंदर सुधार लाने की तरगीब देता है। अगर आज हम आफाकी अमन, माहौलियात की हिफाजत और मुआशरे में बराबरी चाहते हैं तो हमें गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना होगा। यही उनके तई हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: बिल्कुल फौजिया, गांधी जी का अकीदा था कि अगर आपका मकसद सच्चा है तो आपको किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए नफरत की जरूरत नहीं है। आप मेहनत और अमन के जरिए भी मुखालिफ का दिल जीत सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने स्वदेशी یعنی کہ مقامی مصنوعات، مقامی جو سامان ہے ان کے اوپر خاص زور دیا ہے، یعنی کہ خود انحصاری پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ انہوں نے کھادی کو فروغ دیا تاکہ ملک کا ہر شہری خود کفیل بن سکے۔ پسماندہ ترین شخص کی فلاح و بہبود کے لیے قائل تھے۔ صفائی ستھرائی اور چھوا چھوت جیسی سماجی برائیوں کے خلاف ان کی مہم آج کے دور میں بھی اتنی ہی اہم ہے۔ آج کی اس افراتفری، تناؤ اور نظریاتی ٹکراؤ سے بھری دنیا میں گاندھی جی کے افکار کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ گاندھی جی نے فرمایا تھا، میری زندگی ہی میرا پیغام ہے، اس لیے آج کے دن صرف ان کے خیالات کو یاد کرنا کافی نہیں بلکہ ان کے اصولوں کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا اصل کامیابی ہے۔
0: بالکل، بہت خوب۔ جی ہاں سامعین، ہمیں جس اہم اور روح پرور موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سوچھ بھارت ابھیان، یعنی پاک بھارت مہم۔ یہ محض ایک سرکاری یا نعرہ نہیں بلکہ یہ ہمارے ملک کے ہر شہری کی صحت، عزت نفس اور ترقی سے جڑا ایک عظیم قومی مشن ہے۔ تو سامعین، آگے ہم اسی پر اور بھی باتیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے سامعین کو لیے چلتے ہیں نغمے کی طرف۔ تو سامعین، آئیے سماعت فرماتے ہیں یہ خوبصورت سی غزل۔

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते चले आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में थोड़ी सी जानकारी कार्यक्रम विवरण के माध्यम से। अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। फिल्म संगीत सांझ सरगम का वक्त होगा 4:50 पर। 5 बजे आप सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।

5:02 पर कार्यक्रम होगा युवाणी। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा 5:30 पर। 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:00 होगा कार्यक्रम खेती बाड़ी।

और 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 7 बजे आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार और 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर आदिवासी अखड़ा। आज आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे हो भाषा में। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। और 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा सहिया। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 8 बजे। 8:30 पर, माफ कीजिएगा, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधित जानकारी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में अपने 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित केंद्र सरकार साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए अहर्निश कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का यह समर्पण देश के कोने कोने में लोगों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है। विकसित भारत 2047 के बड़े लक्ष्य को हासिल करने में झारखंड अपनी कला, संस्कृति और अद्वितीय उत्पादों के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP ने राज्य के सुदूर क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान किया है। देवघर के 120 साल पुराने प्रसिद्ध पेड़े के स्वाद से लेकर सरायकेला खरसावां के विश्व प्रसिद्ध छऊ मुखौटों के हुनर तक यह योजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बन चुकी है।
1: विविधता और अद्भुत हुनर से धनी झारखंड की माटी, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के पारंपरिक स्वाद में एक अनूठा संगम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे होने के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर ODOP योजना ने झारखंड के पारंपरिक उत्पादों को एक नया जीवन और वैश्विक पहचान दी है। यह योजना राज्य के कोने कोने में छिपे स्थानीय हुनर को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। देश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के इसी विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
2: सद्य सरकार मेक इन इंडिया के अभियान को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है। साथियों, गांव की अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए नई संभावनाएं बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम हर जिले के लोकल उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री के इसी संकल्प को जमीन पर उतार रहा है झारखंड का देवघर जिला। बाबा वैजनाथ धाम की यह पावन नगरी न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ की एक और खास पहचान है यहाँ का प्रसिद्ध पेड़ा। केंद्र सरकार की ODOP योजना के तहत देवघर जिले के लिए इसी पेड़ा को चुना गया है। अकेले देवघर शहर में इसकी 300 से अधिक दुकानें हैं, जबकि देवघर से 30 किलोमीटर दूर घोड़मारा बाजार में, जिसे पेड़ा नगरी भी कहा जाता है, 500 से अधिक दुकानें इस व्यवसाय से जुड़ी हैं, जिससे हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। इस पारंपरिक व्यवसाय की जमीनी हकीकत और उम्मीदों को बयां कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय पेड़ा व्यवसायी अजय झा और आनंद कुमार।
3: नमस्कार, मैं आनंद कुमार केसरी, मैं यहाँ का पेड़ा विक्रेता, मुख्य पेड़ा विक्रेता। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से हम लोग का व्यवसाय काफी फला फूला है और हम लोग अभी अपना जीवन यापन सब अच्छे से कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के होने आने से हम लोग का पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही जाता था पेड़ा, उसके बाद फिर अब पूरे भारत में जा रहा है और उसके बाद विदेश में भी अब हम लोग का पेड़ा जाने लगा।
4: अजय झा हमारा शुभ नाम हुआ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो आज देवघर जिला में बहुत ही अच्छे ढंग से ये दिख रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होता दिख रहा है ये हमारे पूरे देश में। तो मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी।
1: देवघर के बाजारों से निकलकर अब यह पेड़ा देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई तक श्रद्धालु इसे चाव से ले जाते हैं। यही नहीं, अब डाक विभाग की बाबा बैजनाथ प्रसाद योजना के तहत लोग देश के किसी भी कोने में घर बैठे स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पावन प्रसाद को मंगा सकते हैं। इस व्यवस्था का लाभ दुकानदारों को कैसे मिल रहा है बता रहे हैं एक और स्थानीय व्यवसायी विकास कुमार।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद हमारी पेड़ की पहचान कुछ और बदल गई। पहले कुछ थी और उसके ज्यादा मुनाफा हुआ, हमारे पेड़ को और देश विदेश तक जानने लगे और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो हो रहा है उससे हमारा मुनाफा हुआ। और जैसे कि पहले कुछ 10 किलो 5 किलो बेचते थे, अभी 20 किलो 30 किलो 40 किलो बिकता है, अभव भी बिकता है। ये श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है।
1: लेकिन देवघर के पेड़े की यह कहानी सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। जिला प्रशासन और मेधा डेयरी की संयुक्त पहल पर अपेडा से इसे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला है। इसके बाद इसकी पहली 32 किलोग्राम की खेप बहरीन भेजी गई, जो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर पूरी तरह खड़ी उतरी। आज बहरीन और कुवैत जैसे देशों से इसके बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं। लगभग 120 साल पुराने इतिहास वाले इस अनूठे पेड़े को अब भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिलाने की प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में है। इस बड़ी प्रशासनिक और वैश्विक उपलब्धि पर जानकारी दे रहे हैं देवघर के SDO और DDC।
6: नमस्कार, मैं रवि कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित प्रभारी देवघर। देवघर का पेड़ा जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये काफी फेमस है, जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो देवघर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने आते हैं और उसी का एक अहम पार्ट रहा है, हिस्सा रहा है देवघर का पेड़ा और चूड़ा का प्रसाद। ये एक गर्व की बात है हमारे देवघर जिले के लिए। देवघर के आर्थिक व्यवस्था में थोड़ी सी सुधार आई है। ऐसे इस प्रोग्राम के तहत सभी डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट जो है जो नेशन वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके तहत देवघर को भी एक नई पहचान मिली है। हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है कि देवघर को पेड़ा को GI टैग भी मिले, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
7: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है उसके अंतर्गत देवघर जिले का पेड़ा एक प्रोडक्ट के रूप में चुना गया है, तो अभी हम लोगों का प्रयास है कि इसको हम लोग GI टैग भी किसी पर GI टैग के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी जो देवघर का पेड़ा है वो काफी ज्यादा फेमस है और आने वाले समय में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत हम लोगों को उम्मीद है कि इसका और भी डिमांड बढ़ेगा और यहाँ के जितने लोग हैं देवघर जिले के जो पेड़े के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनका व्यवसाय और अच्छा होगा।
1: देवघर की मिठास के साथ झारखंड की कलात्मक पहचान भी ODOP योजना के माध्यम से दुनिया भर में गूंज रही है। राज्य का सरायकेला खरसावां जिला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विश्व प्रसिद्ध सरायकेला छऊ नृत्य के लिए जाना जाता है। इस नृत्य की आत्मा छिपी है यहाँ के आकर्षक और जीवंत मुखौटों में। ये मुखौटे यहाँ के कलाकारों के धैर्य, अटूट हुनर, पारंपरिक कला की एक अनूठी मिसाल है। यही कारण है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले के लिए इन छह मुखौटों को चुना गया है, ताकि इस सदियों पुरानी कला को आधुनिक बाजार और नई संभावनाओं से जोड़ा जा सके। रंग बिरंगे चेहरे, पौराणिक आकृतियां और बारीक नक्काशी से सजे ये मुखौटे सिर्फ नृत्य का एक उपकरण नहीं बल्कि सरायकेला की सांस्कृतिक पहचान है। मिट्टी, कागज और कपड़ों की परतों से एक मुखौटे को तैयार करने में कलाकार को कई दिनों की कड़ी मेहनत और विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इस कला को अपने खून में समेटे हुए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मुखौटाकार सुशांत कुमार महापात्र इस कला के संरक्षण में जुटे हैं।
8: आज का सनी नाटक अकादमी ये मुखौटा बनाने के लिए दिया प्रोजेक्ट मुझे, बच्चों को सिखाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, कैसे फिर आगे बढ़ेगा ये मुखौटा कला बनाने का। तो आजकल बच्चे देख रहे हो सीख रहे हो इंटरेस्ट ज्यादा आकर बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कुछ करना होगा आगे झारखंड सरकार या भारत सरकार ने तो कर रहा है लेकिन टाइमली इसको बच्चों का आजकल जरूरत समय पर उनको प्रोत्साहन चाहिए तो ये समय पर मिलने से उनको इंटरेस्ट पड़ेगा और आगे बढ़ाने के लिए वो लोग सीखेंगे हमको लगता है तो सरकार भी इससे पूरी तरह ध्यान देना पड़ेगा कि इस कला को आगे में कैसे आगे बढ़े कला के प्रति उनको इस कला को
1: सरायकेला छऊ में मुखौटे की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके माध्यम से ही कलाकार बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी शारीरिक भंगिमाओं से पात्र के चरित्र और उसकी गहरी भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाता है। इस कला को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूती से स्थापित करने और इसकी ब्रांडिंग को लेकर राजतेंदु कला निकेतन के निदेशक राजतेंदु रत सरकार से बेहतर विपणन की वकालत करते हैं।
9: मैं रजतेंदुरत रजतेंदु कला निकेतन का डायरेक्टर हैं और शोध करता हूं। तो हमें बहुत खुशी है हमारा भारत सरकार विभिन्न योजनाओं में हमारे कलाकार भाई को 1953 से सहयोग कर रहे हैं और लाभान्वित कर रहे हैं और फिलहाल मैं उसको विस्तार के रूप में भी बहुत सारे योजना किए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं हमारा जो ये डांस फॉर्म है कम समय के अंदर नर्तक भोभाव को प्रकट करता है मास्क पहन के जो कि एवरी सिचुएशन में मास्क का एवरी सिचुएशन को दर्शाता है वहां प्रतिबिंबित होता है। 2010 में यूनेस्को ने अनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज के मान्यता दिया है।
1: मिट्टी और रंगों के इस अनूठे तालमेल को सहजने और युवाओं को इसके माध्यम से रोजगार देने के लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। राजकीय छऊ कला केंद्र इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कला को रोजगार का एक मजबूत आधार बनाने और इसके भविष्य को सुरक्षित करने के उपायों पर प्रकाश डाल रहे हैं राजकीय छऊ कला केंद्र के कोऑर्डिनेटर सुदीप कवि।
10: मैं सुदीप कुमार कवि समन्वयक राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला। सरायकेला जिले की धरोहर संस्कृति है सरायकेला छऊ। सरायकेला की आत्मा है सरायकेला छऊ। 1938 से परचम लहराते आ रहे हैं और सरायकेला को इस छऊ के लिए ही विशेष रूप से जाना जाता है। और सरायकेला छऊ की जो मुख्य आकर्षण है या फिर सरायकेला छऊ को जो परिभाषित करती है वो है सरायकेला छऊ का मुखौटा। जिस मुखौटे को पहनकर नर्तक अपनी प्रस्तुति देते हैं उसी रूप में वो ढल जाते हैं। बिना मुखौटे के हम अधूरे हैं, सरायकेला छऊ ही अधूरा है। ये छऊ मास्क एक व्यवसायीकृत ढांचे में ढलेगा जिससे छऊ नृत्य और निखरेगा।
1: देवघर के पेड़े की मिठास से लेकर सरायकेला के छऊ मुखौटों की भव्यता तक झारखंड की यह कलात्मक और आर्थिक यात्रा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे एक जिला एक उत्पाद योजना जमीन पर एक मूक क्रांति ला रही है। झारखंड के ये छोटे शिल्पी व्यवसायी और कलाकार अपनी कड़ी मेहनत और हुनर के दम पर विकसित भारत 2047 के महान संकल्प में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आकाशवाणी रांची के लिए देवघर से आशीष अम्बस्ट और सरायकेला खरसावां से गोलक बिहारी के साथ समाचार कक्ष से मैं कुंदन कुमार ब।

अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर हमारी यह विशेष प्रस्तुति। इस विशेष पैकेज में आपने सुना कि कैसे एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से झारखंड का आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। यह जमीनी बदलाव साबित करता है कि जब नीतियां सशक्त हों और जनभागीदारी मजबूत हो तो विकसित भारत 2047 का संकल्प निश्चित रूप से सिद्ध होता है। विशेष श्रृंखला की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। समाचार कक्ष की इस विशेष प्रस्तुति के संपादक हैं महविश रहमान और प्रवक्ता तथा आलेखकार कुंदन कुमार वर्मा के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त कामिनी को दीजिए अनुमति। इस यात्रा में झारखंड के बदलते स्वरूप को लेकर 5 अक्टूबर को फिर एक नए विषय के साथ हम इसी समय आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अभी आप इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म जब वी मेट फिल्म से। गीत लिखे हैं फैज अनवर ने, संगीत दिया है संदेश शांडिल्य ने, गायक कलाकार हैं उस्ताद राशिद खान।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं. शाम के 5 बज चुके हैं. आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार.
2: नमस्कार. अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी. राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर हेमंत सोरेन ने कहा कि गांधी जी के आदर्शों को केवल स्मरण करने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास भी होना चाहिए. उधर सरायकेला के दुगनी स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 134वीं वाहिनी में स्वच्छता ही सेवा 2026 एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का नेतृत्व वाहिनी के कमांडेंट त्रिलोकनाथ सिंह ने किया. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर खूंटी के दतिया ग्राम स्थित गांधी चौक पर आयोजित समारोह में उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन, पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग सहित जिला स्तरीय अधिकारियों, वार्ड पार्षदों और ग्रामीणों ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान पौधरोपण के साथ ही कचरा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. उधर मुरहू प्रखंड के घाघरा गांव और खूंटी के सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति देवीगुड़ी की ओर से भी स्वच्छता अभियान चलाया गया. पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित भनगांव बाजार के समीप डिपासाई जंगल में आज एक जंगली हथिनी का शव बरामद हुआ. वन अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र और आसपास के इलाकों में करीब 7 हाथियों की मौत हो चुकी है. आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए रांची जिले के सभी थानों और ओपी में आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इस दौरान वरीय पुलिस अधिकारी विभिन्न थानों में खुद मौजूद हैं और नागरिकों की समस्याएं सुन रहे हैं. इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए. अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा. नमस्कार.

ये आकाशवाणी चाईबासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम अभिवरण। पांच बजकर 5 मिनट पर होगा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम। 5:30 बजे सुन सकते हैं खेती गृहस्थी कार्यक्रम। 6 बजे मुख्य समाचार। 6:02 पर हो अखरा। 6:30 बजे

बच्चों का कार्यक्रम होगा नन्ही दुनिया, 7 बजे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले में आजकल। आपकी पसंद ये कार्यक्रम होगा 7:15 बजे, 8 बजे रजनीगंधा, 8:45 बजे समाचार संध्या का प्रसारण होता है, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 बजे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम होंगे, 10 बजे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेलवी कैप्सूल हाईलाइट होगा, 10:20 पर महफिल कार्यक्रम, 10:30 बजे सुनो के रंग फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के बाद 11 बजे हिंदी समाचार, 11:05 पर इंग्लिश न्यूज, और आज की सभा संपन्न होगी 11:11 पर। तो ये था इस सभा का कार्यक्रम अभिवरण।

गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं एक ही गीतकार आनंद बख्शी के लिखे हुए चंद गीत। कार्यक्रम का आगाज किशोर कुमार की आवाज़ से, फिल्म का नाम है झील के उस पार।

द ग्रेट गैम्बलर। आप सुन रहे थे इस फिल्म का नगमा, और इसके बाद फिर एक बार किशोर साहब की आवाज़ होगी, और फिल्म का नाम है नमक हराम।

0: चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: इस संदेश के साथ ही समाप्त होता है आज का गुलदस्ता कार्यक्रम। इसमें आप सुन रहे थे एक ही गीतकार आनंद बख्शी के लिखे चंद गीत। ये आकाशवाणी चाईबासा है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोए का जोहार। श्रोता, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कई प्रकार की जानकारियां लेते हैं, तो आज हम चर्चा के माध्यम से जानकारी लेंगे कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को ही इस देश या पूरे विश्व में जिसे माना जाता है सत्य और अहिंसा का पाठ जिस महापुरुष ने दिया है, आज उन्हीं का जन्मदिवस है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। श्रोताओं, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी का नाम नहीं बुलाया जा सकता है। इसके साथ साथ इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। अंग्रेजों के शासन काल में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का जो माहौल था उसके खिलाफ संघर्ष करने के बाद गांधी जी 1915 में भारत लौटे और देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा का अपना मुख्य इसे हथियार बनाया था। और उनके आंदोलनों में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह जिसे हम दांडी यात्रा कह सकते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन ये महत्वपूर्ण आंदोलन रहे हैं। और श्रोताओं, यदि हम देखें उनके कुछ सिद्धांत भी हैं, इस कारण उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी पर भी उन्हें माना जाता है। गांधी जी के मुख्य सिद्धांतों में सत्य और अहिंसा है। गांधी जी मानते थे कि सत्य ही ईश्वर है और हिंसा से बड़ी समस्या को नहीं बल्कि प्रेम और शांति से हल किया जा सकता है। स्वदेशी और स्वावलंबन, उन्होंने देशवासियों को खादी अपनाने और चरखे का उपयोग कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रेरणा दिया था। श्रोताओं, आज के समय में जिस आत्मनिर्भर भारत की हम परिकल्पना कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी के उन सपनों को चरितार्थ करने में भूमिका निभा सकता है जिसके कारण स्वदेशी और स्वावलंबन की परिकल्पना की गई है। स्वच्छता, ये भी उनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों में है। और सामाजिक समरसता, इस देश में कई वर्ग, कई धर्म, कई जाति के लोग हैं और छुआछूत जैसे जातिगत जैसी भेदभाव के खिलाफ वो संघर्ष किए थे। इस कारण आज उन्हें विश्व में ही नहीं पूरे देश के साथ साथ विश्व में भी उन्हें माना जाता है। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: परिचर्चा के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं रबी एवं दलहनी फसलों में समुचित देखभाल विषय पर। जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं डॉक्टर संजय कुमार साथी, सन्नत कुमार सवैया और उनके साथ साथ कृषक बंधु हुए। तो आइए हम इस परिचर्चा के माध्यम से हम इसके संबंध में जानकारी लेते हैं।
1: रबी कृषि में दलहनी फसलों की समुचित देखभाल विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर से डॉक्टर संजय कुमार साथी जी और सन्नत कुमार सवैया जी। कृषकों में राजेंद्र सुंडी पूर्णापानी से, नरेश कुमार सिंहदेव रायडी सरायकेला खरसवां से। आप सबों का स्टूडियो में स्वागत है। जोहार।
2: जोहार। जोहार।
1: संजय जी, मानव जीवन में दलहनी फसलों की महत्व पर प्रकाश डालिए।
3: दलहनी फसल मानव जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। दलहनी फसल ही एक से ऐसा फसल है जो हम लोग को प्रोटीन, खाने से प्रोटीन मिलता है, और इस दलहनी फसल ही ऐसा है जिसमें इसके जड़ में राइजोबियम रहता है और उसके गांठ में राइजोबियम और जीवाणु रहता है, जिसके द्वारा हम लोग के वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको भी जमीन में फिक्स करता है, जमा करता है, और इस तरह से हम लोग का जमीन का जो है उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। तो उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, इससे हम लोग को खाद की मात्रा कम देना से भी चलता है। और
4: किस प्रकार की मिट्टी होना चाहिए?
3: दलहनी फसल के लिए हल्का एसिडिक अम्लीय और क्षारीय, मैंने 6.5 से लेकर 7.5 पीएच का उपयुक्त माना जाता है, और हो सके तो आप अम्लीय ज्यादा है तो इसके लिए चूना का भी प्रयोग करें। कम से 1.5 क्विंटल आपका डोलोमाइट प्रति एकड़ की दर से जब खेत की जोताई कर रहे हैं तो हल के पीछे पीछे उसको डालें, पाउडर करें और उसके बाद पाटा कर दें। यदि ज़्यादा अम्ल है तो उसको सामान्य में करेगा, मतलब 6.5 से 7.5 के रेंज में लाएगा। तो इस तरह से मिट्टी में अम्लीयता जो अधिक रहता है उसके लिए डोलोमाइट का प्रयोग कर, तो इससे भी मिट्टी आपका अच्छा। दूसरा फायदा क्या है चूना देने से, जो मिट्टी में आपका औसत पकड़ के जो रखा है पोषक तत्व जो पकड़ के रखा है, लेकिन वो छोड़ के पौधा उसको ले नहीं पाता।
1: सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मिट्टी की जांच इसमें करना जरूरी है किसानों के फसल के लिए, जो दलहनी फसल के लिए मिट्टी जो उपयुक्त है कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं।
3: दलहनी फसल के सभी फसल के लिए मिट्टी की जाँच बहुत ही जरूरी है।
1: मिट्टी जाँच के लिए हमें कहाँ जाना होगा?
3: मिट्टी की जांच के लिए आपको कृषि विज्ञान केंद्र में भी होता है, उसके बाद चक्रधरपुर अनुमंडल कृषि कार्यालय चक्रधरपुर में भी होता है, आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में होता है, जोनल रिसर्च स्टेशन दारीसाई में होता है, घाटशिला, इस सारे जगह में आप मिट्टी जांच होता है, जो बहुत ही मामूली फीस 1 रुपया या 2 रुपया आपको प्रति सैंपल प्रति नमूना लिया जाएगा।
1: लेकिन इसमें आपको नमूना लेने का
5: एक ही जगह से नहीं उठाएंगे, तो वहाँ पे हमको अलग अलग जगह से मिट्टी लेना है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपको मेड़ के सामने से, मेड़ के नजदीक से आपको सैंपल नहीं लेना है, और जहाँ माली पेड़ है तो उसका छाया जहाँ पड़ता हो वहाँ से भी नहीं लेना, और पहले अगर आप वहाँ पर गोबर खाद अगर जमा किए थे है ना, तो वैसा जगह से आपको मिट्टी नहीं उठाना है। तो इसको छोड़ के बाकी जो जगह है वहाँ से आप लीजिएगा, तो एक खेत से 8-10 जितना भी हो सकता है वहाँ से सैंपल, हाँ बीच बीच आप लीजिएगा है ना, तो वहाँ से आपको मिट्टी लेना है और एक खेत से एक सैंपल बनाना है, उसके लिए एक सैंपल बनाने के लिए आपको 8-10 जगह से उठाना, तो मिट्टी आपको कलेक्ट करने के लिए आप वहाँ से या तो कुदाल से भी ले सकते हैं, या तो आपका अगर बोलते हैं हम लोग तो या जिसे लकड़ी से हम लोग छेद करते हैं ना, गिरमिट, हाँ गिर सही बोले गिरमिट, अगर गिरमिट है पुराना वाला तो उससे आप उसको छेद कीजिए मिट्टी को, उसको घुमाइए तो मिट्टी आपका जो गिरमिट है घुसते जाएगा, मिट्टी को बाहर फेंकते जाए, हाँ तो इस तरह से भी उसको ले सकते हैं। मान लीजिए 10 जगह से लिए, फिर सबको एक जगह जमा करेंगे, फिर जमा करेंगे उसको अच्छा से पीस वगैरह पीस लेंगे, अच्छा से मिला लेंगे, उसके बाद उसको रोटी ये सब गोल कर देंगे, फैला देना होगा, कोई छाया जगह में या पेपर अगर बिछा के उसको ऐसा रोटी जैसा फैला देंगे, उसको हम लोग हाथ से ऐसा चार भाग में बांट। तो आपने अभी हमको सैंपल लेना है, आप तो 10 जगह से लिए, तो हो सकता है कि आपको 5 किलो 10 किलो हो गया होगा, है ना, ज्यादा हो जाएगा। हमको उसको आधा किलो कम से कम बनाना है। तो ऐसा करते हुए जैसे रोटी बनाए उसको आप फिर चार भाग किए, आपने सामने वाले को हटाते गए और जो बाकी रहा उसको फिर मिलाएंगे और रोटी बनाएंगे, इस तरह से करते जाएंगे।
4: हाँ,
5: जब आधा किलो जैसा हो जाएगा तो उसको सैंपल में रखें। अगर आपके यहाँ गिरमिट नहीं है तो कुदाल से भी कर सकते हैं। तो कुदाल से करने के लिए थोड़ा सा कि आपको भी सेम में, है ना, एक बार इधर से आप कुदाल चलाए तो ऐसे कटा, फिर उल्टा दिशा में गए, फिर उधर से काटिएगा, फिर आपका भी टाइप का बन गया। उस पूरे मिट्टी को हटा देना, उसको नहीं लेना सैंपल ग्रुप,
4: वहाँ का मिट्टी को हटा देना है।
5: हाँ, अब जो आपका गड्ढा बनाना है उसमें से ऊपर से नीचे तक आधा इंच मोटाई से आपको क्रोच क्रोच निकालना है मिट्टी को, उसको सैंपल में लेना है। और सैंपल बन गया उसके बाद आप उसमें आपका कौन सा खेत है, खेत का नाम, प्लॉट नंबर, अपना नाम, पता पता सारा लिख के, या तो हम लोग केवी के पास उसको भेज दीजिए, या सीकेपी में है आपका मिट्टी जांच वाला,
4: वहाँ पे इसके माध्यम से जाएगा।
5: फसल के अनुसार हर एक किस्म है,
2: जैसे चने की है, चने की बुआई कितने दूरी पे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए?
5: चना का यहाँ जो अभी तक जो देख रहे हैं उसके अनुसार से एक किस्म है जाकी,
4: जाकी,
5: हाँ जाकी, और ये यहाँ पर थोड़ा अच्छा उसका रिजल्ट आया है।
4: मिलेगा कहाँ?
5: ये आपको मिल जाएगा, अभी तो इस बार बांटा गया था आपको आत्मा की तरफ से भी, हम लोग पिछला साल बांटे थे।
2: कृषि करने के लिए किसानों को किससे संपर्क करना होगा?
5: संपर्क उसके लिए आपको बीटीएम से कर सकते हैं, ब्लॉक का बीओ से कर सकते हैं, या तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र में कर सकते हैं।
4: कभी कभी जैसे हम लोग इतनी दूरी पर संपर्क नहीं कर पाते, बीटीएम से नहीं होता है, या समय निकलता जाता है, उस वक्त में क्या बाजार से हमको जो वैरायटीज है मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? बाजार से
5: बाजार में आपको मिल जाएगी, बाजार में मिलती है ये,
4: क्योंकि इस बार जैसे हम लोग का ब्लॉक में सर बहुत लेट से बीज, लेट सी बीज ही कहा जाए, जबकि हमारा नवंबर खत्म हो गया, उसके बाद बीज वितरण हुआ है। तो होता क्या है कि यहाँ फिर हम लोग को बीज लेट में मिलता है, समय कम हो जाता है, पानी की कुछ असुविधा हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं लगा पाते हैं। तो हम बाजार से कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि बीज हमारा इसके माने क्वालिटी का है बोल करके? सर,
5: हाँ, हम तो ये कोशिश करते हैं कि किसान खुद बीज पैदा करे, हम दूसरे के भरोसे क्यों रहे।
4: तो इसके विषय में कुछ नया जानकारी बता देते तो सुविधा होगी
5: जी। जैसा हम लोग यहाँ, आप हम लोग के यहाँ से आप आधार बीज ले लीजिए कृषि विज्ञान केंद्र से, फिर उसको आप बीज उत्पादन कीजिए उससे
4: जी।
5: वो बीज फिर आप अगले साल उसको यूज कर सकते हैं, अपने भी कर सकते हैं और दूसरों को कि हाँ बेच भी सकते हैं, इससे आपका अच्छा आमदनी भी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका होगा वो उसमें आपको बीज का दाम मिलेगा।
2: इसमें एक बात है कि आधार बीज है क्या?
5: हाँ, आधार बीज इसका हम लोग कैटेगरी करते हैं बीज का, है ना, जैसे कि आपका ब्रीडर सीड
4: जी,
5: पहले तो न्यूक्लियस सीड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस सीड मतलब जो उसको साइंटिस्ट बनाया उसको,
4: ठीक।
5: अब उसको फिर उससे जो निकला वो हो गया आपका ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड से फिर जो उसका उत्पादन निकला
4: जी,
5: वो हो जाएगा फिर
4: फाउंडेशन
5: से आधार बीज।
4: अच्छा,
5: तो इसका कैटेगरी आपका होते जाएगा। तो आधार बीज लगाने से फिर आपका उसको लगाएगा, फिर जो पैदा होगा वो आपका प्रमाणित बीज।
2: दलहनी फसलों के मुख्य रोग कौन कौन से हैं तथा इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?
3: दलहनी फसल में प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग रोग लगता है। जैसे चना हो गया, चना में जैसे आपका मुरझा रोग बहुत ज्यादा लगता है। देखिएगा आपका अभी बहुत सारा फसल जो लगाए हैं उसमें देखिएगा जड़ तरफ से सूख जाता है, उसमें काला काला हो जाता है, पूरा पौधा पीला हो जाता है।
2: इसके नियंत्रण के लिए कौन सा दवा कब इस्तेमाल करना चाहिए?
3: इसके लिए किसान भाइयों को आपका ट्राइकोडर्मा वेरिटी करके एक पाउडर आता है, जैविक है, इसको आप खेत का जब जुताई कर रहे हैं उसी समय, हाँ जुताई के समय क्या करना है, इसको पहले गोबर में मिला लेना है 40 से 50 किलो सड़ा हुआ गोबर में 1 किलो ट्राइकोडर्मा वेरिटी के पाउडर को मिला दीजिए, और खेत में जैसे हल जोत रहे हैं उसके पीछे पीछे भी गिरा सकते हैं और हल चला दीजिए तो चारों तरफ मिल जाएगा एकड़ में मोटा मोटी 50 किलो। और या तो फिर ऐसा कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा से आप बीज उपचारित कर लीजिए, जैसे आपका 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर और 1 किलो बीज, इसको क्या कीजिएगा जैसे लगाने के पहले 1 किलो चना ले लीजिए, उसमें 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा वेरिटी का पाउडर मैंने दवा दे मिला दीजिए, 10 ग्राम मतलब आपका 2 ढक्कन।
1: अच्छा, तो इसमें संजय जी और एक पूछना चाहेंगे,
3: उसका हल्का पानी दे दीजिए, मिक्स कर दीजिए, मिलाने के बाद उसको छाया जगह में फैला दीजिए।
1: अच्छा,
3: पेपर में 1-2 घंटा में वो सूख जाएगा, 1-2 घंटा में दूसरा दिन भी आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस बीज उपचारित करने से भी आपका मुरझा रोग नियंत्रित होता है, या फिर ट्राइकोडर्मा को गोबर में मिलाइए और उसको आपका जो मिट्टी है उसमें मिला दीजिए, इससे भी आपका मुरझा रोग नियंत्रित होता है।
1: अच्छा, तो ये बीजोपचार हम क्यों करते हैं? वर्तमान समय में तो हमारे किसान जो है बीजोपचार के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, तो ये बीजोपचार का महत्व के बारे में और उसकी विधि के बारे में भी थोड़ी प्रकाश डालिए।
3: बीज उपचार एक प्रकार का मतलब टीकाकरण है, जैसे आदमी का बच्चा जन्म लेता है तुरंत उसको पल्स क्या पोलियो का टीका देता है,
6: पोलियो का टीका बोलते हैं,
3: तो वो टीका कर देने से क्या होता है उसका बाद में पोलियो उसे ग्रसित होने का चांस कम रहता है, तो उसी तरह ये टीकाकरण है, मुर्गी में टीकाकरण होता है, उसी तरह बीज में भी आपका रोकथाम के लिए बाद में रोग आए नहीं, खर्चा ज्यादा नहीं हो, फसल सुरक्षित हो, इसके लिए बीज का उपचार किया जाता है, और हर एक प्रकार से बीज का उपचार किया जाता है, हर एक दवा सबका अलग अलग है, और बीज उपचारित करने से लगाने से जो उसका जीवाणु है बीमारी जनक जो जीवाणु है वो दब के रह जाता है, ये दवा उसको मार देता है।
6: जिससे फसल यहाँ जानना चाहिए कि मान लीजिए ट्राइकोडर्मा जो हुआ कल्चर जो अगर नहीं मिला इस वर्तमान समय तो यहाँ जो बीज दुकान है बाजार से, तो उसमें कौन सा हमको बीज उपचार के लिए दवा लेना होगा?
3: जिससे आपका बैगन हो, ये आपका बैगन टमाटर है, इसके लिए मेटालेक्जिल करके आता है 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज उपचार करना है, वो ट्राइकोडर्मा तो चाईबासा में या उपलब्ध है, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जिला में भी उपलब्ध है, पेस्ट कंट्रोल इंडिया का ज़्यादा अच्छा रहता है, PCI पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया का, चूँकि ट्राइकोडर्मा भी और कोई भी कीटनाशक दवा या कुछ भी आपका बहुत डुप्लीकेट भी आया, ट्राइकोडर्मा का पाउडर रहेगा लेकिन आपका कुछ काम नहीं देगा, दवा रहेगा लेकिन काम नहीं देगा, तो इसलिए आप कंपनी को भी देखिए, सही जगह से लीजिए और रसीद लीजिए।
2: संजय जी, कभी कभी ऐसा ही होता है कि फूल तो लगते हैं किंतु फल नहीं बनते हैं, इसके क्या कारण है और इसका नियंत्रण कैसे किया जाए?
3: फूल नहीं बनने के 2-3 कारण है।
2: जी हाँ,
3: जैसे आपका पोषक तत्व आपका मिट्टी में नहीं है उससे भी हो सकता है आपका फूल कम बनेंगे
2: जी।
3: या नहीं बनेंगे
2: जी हाँ।
3: चूंकि उसको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो यदि आपका मिट्टी जांच करा के खाद उद दिए हैं तो आपका यदि कमी नहीं है, चेक आप खाद नहीं दिए हैं तो पोषक तत्व तो जरूर दीजिए, डाई पोटास यूरिया संतुलित मात्रा में, उसके बावजूद भी आपका नहीं आ रहा है फूल नहीं आ रहा है तो आपका हार्मोन का छिड़काव कीजिए।
2: कौन सा हार्मोन है?
3: प्लेनोफिक्स करके दवा आता है, हार्मोन विटामिन है वो।
2: इसका कब कितना मात्रा कितना पड़ेगा?
3: इसका 2.5 ml प्रति 10 लीटर पानी, ये आपका सब्जी में भी काम करेगा।
2: अच्छा,
3: आम के फल में भी, लीची में, अमरूद में, सब में काम करेगा इसका 2.5 ml प्रति 10 लीटर पानी। एक बार फूल आने के पहले 10 दिन पहले दे दीजिए, फिर जब मटर का दाना जैसा हो जाए फूल से दाना में परिवर्तित होगा
2: जी,
3: उस समय फिर एक बार छिड़काव कर दीजिए तो दाना भी अच्छा बनेगा।
2: कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि सिंचाई करने के बाद सभी फूल झड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है सर?
3: सिंचाई करने के बाद किसमें
2: फूल झड़ जाते हैं?
3: दलहन फसल में।
2: हाँ, ऐसा देखा गया,
3: दलहन फसल में सिंचाई करने के बाद फूल झड़ जाते, इसका कारण है कि अचानक आप जैसे आप दलहन फसल में कोई सिंचाई तो करता नहीं है, उसका लंबा दिन तक मान लीजिए 2 महीना जैसे 3 महीना तक वो जमीन सूखा हुआ है, ठीक है
2: जी,
3: अचानक बारिश हो गया
2: जी,
3: तो उससे क्या होगा, उसका जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस है
2: जी,
3: शारीरिक बैलेंस थोड़ा सा इम्बेलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है।
2: अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं कि
3: तो इसलिए आपको सिंचाई कीजिए तो आप फूल आने के पहले भी एक बार कीजिए।
6: अच्छा, पहले भी करके
5: ऐसा हुआ सिंचाई नहीं
2: नहीं
3: करना
6: सर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पंक्तिबद्ध कहीं भी हम लोग बैठते हैं बात करते हैं तो पंक्तिबद्ध तरीके से लगाने के लिए प्रक्रिया कर बताया जाता है, तो पंक्तिबद्ध तरीके लगाने से और छिड़काव विधि में जरा अंतर बता देते, उसे उत्पादन की क्या कम बेसी होता है, इसके विषय में जानकारी देते।
5: जी सही बोले, हम लोग बोलते हैं कि आप लोग लाइन्स लगाइए
6: जी,
5: और हो सके तो आप हल के पीछे हल चलाते हैं तो जो गड्ढा बनता है
6: जी
5: उसमें लगाइए बोलते हैं, तो और आप लोग छींटा करते हैं तो छींटा नहीं करना चाहिए, लाइन्स लगाना चाहिए, क्यों है ना
6: जी? यही क्वेश्चन है।
5: तो छींटा जब करते हैं तो आप देखेंगे आपका बीज दूसरा जगह गिरा है, आप खाद भी दे रहे हैं उसको भी छींट रहे हैं
6: जी,
5: तो खाद दूसरा जगह गिरा हुआ, आपका बीज दूसरा जगह गिरा हुआ। अब जब लाइन से करते हैं तो क्या होता है कि पहले हम लोग खाद गिराते हैं, है ना
6: जी, जी।
5: तो खाद आपका नीचे हो गया, अब उसके ऊपर हम लोग बीज गिरा, तो जैसे उसका अंकुर होगा जड़ निकलेगा सीधा, उसका जड़ आपका खाद में ही चला जाएगा, इसमें आपका खाद का बर्बादी नहीं होगा,
6: इससे फायदा मैंने खाद की बचत हो जाती है।
5: जैसा आप छींटा करते उससे कम खाद इसमें लगता है, जब लाइन से कर कम दे रहा है और उसका पूर्णता उसका व्यवहार हो जा रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप लोग लाइन से लगाइए। साथ में क्या होगा फिर बाद का जो निकाई गुड़ाई वगैरह करते हैं उसमें भी आपको सुविधा होगी।
6: कभी कभी सर फल का पत्तियां वगैरह जो सिकुड़न रोग आ जाता है, पीलापन आ जाता है, तो इसके विषय में थोड़ा सा कुछ जानकारी दी।
3: किसमें किस फसल में?
6: ये मटर वगैरह, मटर में खासकर पीलापन आ जाता है, पत्ता नीचे की पत्ती आ जाती है,
3: पीलापन मटर में आए चाहे किसी और फसल में आए
6: जी,
3: इसका इसमें साफ लक्षण यही है कि मैंने आपका नाइट्रोजन का कमी निचला हिस्सा।
6: अच्छा,
3: जब पीलापन आ तो आप हल्का हल्का यूरिया का छिड़काव करें, और यदि ऊपर का पत्ता पीलापन आ गया है
6: जी,
3: इसका मतलब है आपका सल्फर का कमी, समझ गए
6: जी,
3: तो वैसा स्थिति में आप सल्फर, जैसे आपका जिंक सल्फेट में भी मिलता है सल्फर
6: जी,
3: SSP में मिलता है सिंगल सुपर फॉस्फेट
6: जी,
3: उसका आप लोग जमीन में खेत में छिड़काव करें तो आपका उसका कमी से दूर हो जाएगा। और ज्यादा सिंचाई नहीं करना चाहिए, ज्यादा ओवर डोज सिंचाई करने से भी बहुत सारा पोषक तत्व क्या होता है आपका जमीन में नीचे चल जाता है,
6: मतलब कम सिंचाई ही सुविधाजनक है,
3: एकदम भींगा रहना चाहिए,
5: खाली
3: नमी चाहिए पौधा को, खाली नमी चाहिए, जहाँ ज्यादा दीजिएगा बीमारी से ग्रसित होगा, कीड़ा का प्रकोप होगा, इसलिए आप एकदम खाली खाली मिट्टी भिंगाइए।
0: रवि कृषि में दलहनी फसलों की समुचित देखभाल विषय पर चर्चा के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर संजय कुमार साथी जी, सनत कुमार सवैया जी और कृषकों के रूप में राजेंद्र सुंडे जी और नरेश कुमार सिंहदेव जी, आप सबों ने बहुमूल्य वक्त देकर हमारे आकाशवाणी को गौरवान्वित किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
6: जोहार।
0: श्रोताओं, अभी हम परिचर्चा के माध्यम से जानकारी ले रहे थे रवि एवं दलहनी फसलों की समुचित देखभाल विषय पर। जानकारी दे रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर संजय कुमार साथी और सन्नत कुमार सवैया, और किसानों के रूप में उपस्थित हुए थे राजेंद्र सुंडी और नरेश कुमार सिंहदेव। इस परिचर्चा के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब सम्पन्न होता है। अब सुरेश चंद्र सोय को विदा दीजिए। जोहार।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर हेमंत सोरेन ने कहा कि गांधी जी के आदर्शों को केवल स्मरण करने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास भी होना चाहिए। उधर सरायकेला के दुगनी स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 134वीं वाहिनी में स्वच्छता ही सेवा 2026 एवं एक पेड़ मांग के नाम अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व वाहिनी के कमांडेंट त्रिलोकनाथ सिंह ने किया। पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित भनगांव बाजार के समीप ढीपासाई जंगल में आज एक जंगली हथिनी का शव बरामद हुआ। वन अधिकारी और कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र और आसपास के इलाकों में करीब 7 हाथियों की मौत हो चुकी है। आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए रांची जिले के सभी थानों और ओपी में आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान वरीय पुलिस पदाधिकारी विभिन्न थानों में खुद मौजूद रहे और नागरिकों की समस्याएं सुनी। जमशेदपुर में नशे और अवैध कारोबार के खिलाफ विचार क्रांति सम्मेलन आयोजित किया गया। विधायक सरयू राय की अगुवाई में समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों ने ड्रग्स, गांजा, अफीम, जुआ और लॉटरी के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने की बात कही। रांची में 9 अक्टूबर को भारत वेस्ट इंडीज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच और दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रांची के SSP राकेश रंजन ने बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती को देखते हुए सभी श्रेणी के पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: prayumten agamun.
1: Cikgu bu ayumten teh kena nak domar. Ayer pa durian lote jangan japagar. Aking apa rici aking taking emia marjuar ge.
2: Marjuar ge. Aling kulcian pura. Hatu burdoye. Golkra pakan. Nama minta cewasa hari kotor ling. Dukan teral aling.
1: Acha. Acha abunen ye elektrisian ci. Elektrik se sambandit parti to chilikat ban suru kada.
2: Ya suru aling junun taikina. Jenen parti kote terang mana asal orang ko bawa mantai.
1: Ya.
2: Endo jab suru aling aling dukan le taikin do imin ika kaling atkar le taikina. Endo eto imin do kaling eto le taikina sari sapagaji do.
1: Ya.
2: Endo parti parti te aling o jenam ika junun ubai na. Endo parti o ika ling eto kita parti kuli namit kitte. Jenam parti re rasau parti endo parti o ika ling parti tin na do.
1: Acha ni na parti lagi tu bijili dia masalah tu na ente bijili tu bacaan tiada lagi china cik itu apa
2: bijili tu bacaan tiada apna khudka safety tu mentiya kaji pura surutit dang tu parti lagi tu
1: jadi
2: sebab sepele tu juta cepal tu sinkan tu ke apa
1: acha
2: en badar plus pecah tu ke parti tu apa angkat ti itu tu kasap itu apa jana ko
1: ti itu kasap acha en do plus pecah sere agar di bhul hubah mana mente cili ke jan suraccha ko do.
2: Ya, anda suraccha obat itu jasa mana bijili pun baik tenar tu, jah mana calo line pun baik tenar.
1: Entah
2: pura juga experience subahan bahadre calo line ro baik tu, tapi nama ro tu ina kap party dia terkara.
1: Tapat dia terkara.
2: Iya.
1: Acha. Esok pura bijili misteri ko bijili kote ko short doa. Ente nena duri bayi lagi tu cimin sal de experience hona cie.
2: Ina apna upar nirbhar mina inka to jese bahut kam samay ro party to eto ba
1: battery
2: rasre enato sep te mintiya kaji
1: ya
2: jese ki na aling te ro mina ko 5 jan lika sepet ko mina ko gaya
1: ya
2: inko jan technician do jana bano ena men daling te re taikina te ga ko party ko eto tar mintiya kaji ek do sal to ke inka to ling experience tak ko sabin na to
1: acha anda to wa kore bijli wiring mai riki wiring ri lage to chilke chike to
2: ya ena lage to na kajre na varsing do wa ko ye wiring tan do underground orang buat mana ya, cat di tera ke, nanti ginil di tera korang buat topak ke, tu puna buat party itu underground, nanti bar ya, tu bar tu buat bawa,
1: kan?
2: Dan adik tu underground, na orang party buat bantu, na, jadi catra air tu dalai air tu pipe bica, kan?
1: Iya.
2: En badar latar centering kulan 20 din bas centering kulawa, en badar group cutting wa dival tu, en de piping wa board ko laga wa, en badar fir ina plaster tupa wa. Inai tu white washing mo, en badra tar kulle parami, en badra finishing paiti electric ya dobo.
1: Aba oka.
2: Iya.
1: Underground tikiye je mana bahar ya wiring tikiye.
2: Inka tu na wa ko nemin ko nongre, bayi tu sabin ko rasa oce underground ke baniye kumaniye.
1: Acha acha.
2: Iya.
1: Acha, ente chicken lap mana?
2: Lap tu mantia wa finishing baniye lelu wa, no jan ondo wiring tenro mantia, jan na aira aite na espure inka ye kujui nih saman ko.
1: Iya.
2: And short circuit itu baca itu ya. Enam mantu jangan dikit tu bano na underground property itu.
1: Acha acha.
2: Iya. Mana inna MCB ko, RCCB ko, inkan ye saman ko juga inna.
1: Iya.
2: Turunta agar bijili kerja itu turunta shutdown tu bawa. Unda baki saman ko baca oh enat mantu ya.
1: Acha acha.
2: Oh.
1: Mendo short circuit okon da pura hoba. Underground aici, bahar wala.
2: Bari gel da kau bawa do. Agar sahih tarikat orang terdo.
1: Acha acha.
2: Iya. Kayak orang dia tarikat bari gel da minggu ke mina bahar wala lar. Bar walar eh bar pipe lelo anda underground tu kalle lo.
1: Kalle lo. Ini
2: minong kantar tu ye.
1: Acha mali tar kosi jeno underground rendo ina tu all day semua sekali.
2: Kaga.
1: Kanama.
2: Kaga all lo. Mana inka short circuit kau bawa aje. Agar panih te circuit bay jaga inka wiring terdo jangan dikit dikit kau bawa.
1: Acha acha.
2: Oh.
1: Ina tu kunta karabak nama tu cili cut karwa.
2: Ina cut karwa section bay jaga sabi nating kena. Ina tu end section re jesse main board aite end. And switch agar on itu anda bar-bar entar ya fuse jodoh itu nanti MCB ya itu nanti end room pernah enna entah volt agan nanti atkaru.
1: Atkaru kecik.
2: Iya.
1: Acha. Acha. Pangka ko jana aku malle karabu jana. Entah tu ina ko cilik kecik itu bawa ni ya underground bijili ya dia karen ter.
2: Iya. Naa jisse pangka agar karabu agan.
1: Iya.
2: Entah switch on kerja agar pangka kacilah itu nanti. Ya tu agar MCB ya itu nanti. Endo pangka sorta kan ta pangkarya switch on kerja atkaru enna tu.
1: Acha.
2: End switch on kerja ina akun dia switch ina pangkarya. Endo pangka karabakna.
1: Iya.
2: Agar light ya switch on kerja agar jangan trip out naichi fuse jodoh tu endo light section karabakna inka atkaru.
1: Inka atkaru kan?
2: Iya.
1: Acha. Endo waran ko khudte ko bayi di achi electric akun ko
2: अपना सुरक्षित अपने के तो वो मिलने का थे अगर पूरे का आदान रहता है इलेक्ट्रिशियन को भी क्या कोते आगे दुर्कर मनती है
1: ये चीज़ ना जैसे अकोन लेका ना तो वेरिंग है कना ये ना ये आटकर बना और तो
2: काव बाव आई है
1: ये जा जितने तोल तर दिनों
2: शॉर्ट सर्किट हो आई है
1: अच्छा तो इन्हें तो बचाउन ते अलग इलेक्ट्रिशियन को नम कोते हो बाव अच्छा मिंडो बिल्डिंग वेरिंग है लगे छिलके चिमिन चिना अच्छा दुर्कर हो बाव
2: मैंने अंडरग्राउंड ये वेरिंग है लेकिन अंडरग्राउंड पाइप मोटाई ची थिकनेस इंग्लिश तो मिलती है इन्हें इंडिया 2.5 mm पाइप हुजू इना बिचे हुआ डलाई डलाई तुपा इना डलाई मिसे हुआ इन सात पंखा या बॉक्स बिठा हुआ तो ना बस चात्र के लाइट को भी लगा तो लाइट बॉक्स को बिठा हुआ
1: अच्छा
2: इना चढ़ चिल के तो लुचका हुआ इन बाद इना को लगा हुआ
1: अच्छा
2: इन बाद डलाई हुआ
1: इन बाद डलाई हुआ
2: इन बाद डलाई हुआ
1: अच्छा इना ते इना डलाई तुपा जाना है तो छिमिन दिन बाद या सेंटिंग खुला जाना तो छिमिन दिन बाद ना पैटी शुरू हुआ
2: ये ना तो सेंटिंग वाला को निर्भर में ना आपको इनका तो 20 दिन बाद को खुला है सेंटिंग तो सेंटिंग खुला बाद रहे जनम ये दीवार रे पैटी तय हुआ दीवार रे ये ग्रुप कटिंग हुआ
1: या
2: ग्रुप कटिंग के बाद रहे ना पाइप बिछे हुआ बोर्ड को लगा हुआ
1: या
2: इना कम्प्लीट दिन बाद रहे तो जनम आपको प्लस्तर पैटी को पैटी है
1: अयर तक आपको प्लस्तर रहती चाहिए
2: या अयर तक आप प्लस्तर रहती है करो
1: अच्छा यार तो प्लस्टर के दिन तो फिर ग्रुप कटिंग हुआ तो मैंने
2: कटिंग इड़ा वैंड तो मेहनत पूरे हुआ वैंड प्लस्टर तो फिनिशिंग
1: कर लो अच्छी मनते आते मैंने प्लस्टर यार तक ना बिजली पेट पेट रीतिया चाहिए इना लगे चिमिन खर्चा तो होगा
2: बोर्ड के हिसाब से जुकान 19-20 खर्चा तो मिना जैसे ना वर्ष तो पूरे मॉडलर बोर्ड होना मॉडलर स्विच को लगा होता
1: ना
2: आयर तैकना प्लेन वाला तैकना
1: इन
2: प्लेन वाला मॉडलर वाला जो का डिफरेंस तो मिना गया जैसे नॉर्मल वाला रे अगर लतर पा ये पाइपिंग रे मोटा मोटी 10,000 हुआ और तो मॉडलर वाला रे इन्ना रे 5,000 का डिफरेंस होगा
1: 15,000
2: रे
1: अच्छा अच्छा इन दो चिमिन टू रूम रे इमिन खर्चा दो बाव
2: इन्ना जैसे दो रूम एक हॉल एक किचन लेटरिन बाथरूम
1: इमिन रे
2: या
1: अच्छा अच्छा तो मान लिए बाहर वाला ये रहो वेरिंग रहो
2: बाहर वाला वेरिंग रहो तो इंडिया का जी मोटा मोटी आधार है वो अपना
1: आधार है वो
2: तो या मैंने खाली बोर्ड रिया ना तो बोर्ड रिया और पाइप रिया लंग जगह रहता ना तार का इंक्लूड हो किनो तार तार चनाप तो डला हुआ चा नहीं ये अंडरग्राउंड तो
1: या या
2: या ना तो तार रिया जैसे ग्राउंड रे इमनों रूम रे मोटा मोटी अपना 25-30,000 रुपये तार खर्चा हो
1: जिस जान तो खर्चा हो अच्छा इन दो कौन साइज तार खर्चा हुआ
2: नंदे वायरिंग रे मोटा मोटी चार आ रहा तार लगाओ तो
1: या
2: अढ़ाई एम एम डेढ़ एम एम वन एम एम इनाते 0.75 एसी रिया को मैंने तन तो एंडे ऑनडो एक इनाते मोटा तिया 4 एम एम रिया तार दौड़ाओ एंडे
1: अंदर तो एसी आओ आयात के तैयारी तिया दरकार
2: ये आयात के तैयारी तिया दरकार कह कि एसी कौन तार पॉइंट में तिया अगर पॉइंट आउट तर दो जनाते बार बार रा का ये तो वो इनामें तैयार के पॉइंट आउट तर दो बढ़िया गेम तिया
1: या या ना समय तो एसी रिया जा समय बता करना मराठी के
2: या
1: ये तो पूरे एसी को लगा रही है
2: या
1: मैं तो खर्चा चिल कटा हुआ
2: ओरिंग खर्चा रहता जान पूरे अंतर तो काबो और एसी रिया गनों पारे अंतर तो हुआ
1: गनों पारे
2: या
1: अच्छा अच्छा मान लिए इना अंडरग्राउंड का लगाव का नवा एसी रिया पॉइंट
2: या
1: इन तो बाहर है तो लगा दियो
2: ये लगा दियो
1: अच्छा इंदेना टी कर लो है ना
2: ये ना का जे तो सभी अंडरग्राउंड एक ने बाद रे अगर एसी लगे जनप ते बाहर और इधर तो तार बाहर ले लो इन के पानी का ले लो मनती है
1: अच्छा
2: वा सजा उसके के तो आप चितन पात जीव एक ले लो
1: या या अच्छा अच्छा ठीक है अंदर तो वेयरिंग पार्टी लगे सिमिन संगिन तक लंग से नो दे दी
2: ना सनिंग माने पार्टी लगे
1: या
2: पार्टी लगे मैं तो ना तक कहते तो नीता चाहे जमशेदपुर को क्या कर लेंगे ओंडो निपा कुमार डूंगी मझगांव को क्या कर लेंगे अब उनपा गोलकरप्पा को क्या कर लेंगे मिलते हैं
1: अच्छा
2: इन लोग सनी उनको तो सनकेतली पैटी इतने
1: पैटी होता है
2: ठीक है
1: अच्छा इन लोग चिमिन दिन रे मियन वारिया वरिंग पूरे वा
2: इनका ना अलिंग तो नीता रे अलिंग सात्र ओंडो सफेद को बिना कोते सेम डे अरले तो पैटी केतले उजुती है नमा
1: अच्छा मशीन रे पैटी वा
2: या मशीन तर पैटी केतले उजुती है प्रयास है मिलते हैं सितारे सनवा अपना गाड़ी कहते
1: जमान
2: को सभी ने भी अस्तर गा के ना जा निधे मिलती है ᱯᱟᱹᱴᱤᱥ ᱠᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱮᱞᱮ ᱩᱡᱩᱜ
1: ᱮᱱᱢᱟᱥᱤᱝ ᱜᱮ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱢ ᱰᱮᱜᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱹᱴᱤᱣᱟ
2: ᱭᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮ ᱯᱟᱹᱴᱤᱝ ᱜᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱮᱱᱫᱚ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱢᱱᱚᱝ ᱞᱮ ᱯᱟᱹᱴᱤᱠᱮ ᱛᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱥᱟᱵᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱠᱤᱛᱮ ᱵᱮᱠᱚ ᱪᱤᱢᱱᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣᱱᱟ ᱪᱤᱢᱱᱚᱝ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱞᱟ ᱚᱵᱟᱭᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱞᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱨᱮᱜᱟ ᱠᱚ ᱮᱱᱫᱚ ᱥᱤᱫᱷᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱟᱹᱴᱤᱥ ᱠᱟᱜ ᱠᱮᱛᱮ ᱞᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱠᱮᱛᱮ ᱞᱮ ᱩᱡᱩᱨ ᱨᱮᱜᱟ
1: ᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱢᱩᱡᱩᱨ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱚᱵᱟᱣᱟ
2: ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ
1: ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ
2: ᱪᱮᱫ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱚᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
2: ᱟᱵᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱨᱤᱭᱟᱫ ᱨᱩᱯ ᱨᱮᱰᱤᱭᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱥᱟᱵᱤᱛᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱸᱡᱟ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱵᱟᱵᱟ
2: ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱭᱟ ᱢᱚᱡᱫᱩᱨᱤ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱱ ᱠᱟᱡᱤ
2: ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟᱣ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱮᱥ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱟᱹᱴᱤᱢ ᱥᱟᱵᱟ ᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱤᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱛᱮ ᱠᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱣ ᱪᱮ
1: ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱣ ᱠᱟᱡᱤ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱫᱚ
1: ᱤᱭᱟᱹ
2: ᱮᱠ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱮᱠ ᱴᱩ ᱟᱜᱨᱟᱢ ᱥᱮᱠᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱞᱮᱞ ᱫᱟᱭᱚᱜ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱡᱚᱵ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱱᱮᱱ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱯᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱭᱟ ᱠᱩᱭᱩᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱵ ᱱᱮᱱ ᱡᱚᱵ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱫᱤᱭᱮ
2: ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱫᱤᱭᱮ ᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱮᱱᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱠ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱤᱱ ᱠᱤᱞᱤᱠ ᱠᱚ ᱱᱟᱞᱟ ᱛᱤᱭᱮ
2: ᱱᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟ ᱟᱞᱟᱜ ᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱮᱠ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ 300 ᱨᱩᱯᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱭᱟ
2: ᱮᱱᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱟᱨ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱟᱹᱡ ᱫᱤᱭᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟ ᱥᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱡᱩᱱᱤᱭᱟᱨ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱞᱟᱜ ᱟᱞᱟᱜ ᱯᱮᱨᱮᱴ ᱞᱤᱧ ᱛᱚᱞᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱟᱭ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱱᱚ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱥᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱫᱚ 300 ᱥᱟᱲᱮ 300 ᱤᱧ ᱠᱟᱹᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱥᱟᱱ ᱛᱟᱨᱤᱠᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱱᱟᱞᱟ ᱫᱤᱭᱮ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟᱞᱟ ᱫᱤᱭᱮ
1: ᱱᱟᱱ ᱤᱞᱮᱠᱴᱨᱤᱠ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱫᱮᱭᱚᱜᱼᱟ
2: ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱞᱮᱠᱴᱨᱤᱠ ᱠᱮ ᱥᱟᱛ ᱥᱟᱛ ᱨᱚᱸᱰᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱞᱮᱠᱴᱨᱤᱠ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷᱤᱛ ᱵᱟᱠᱮ ᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱥᱮ ᱤᱞᱮᱠᱴᱨᱚᱱᱤᱠᱥ ᱵᱟᱞᱟ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱛ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱟᱛ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱫᱤᱭᱚᱜᱼᱟ
2: ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱮᱠᱥᱯᱤᱨᱤᱭᱮᱱᱥ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱮᱢᱤᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱫᱤᱭᱚᱜᱼᱟ
2: ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱫᱤᱭᱚᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
2: ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱞᱤᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱩᱱᱟᱹᱝ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟᱨ ᱤᱱᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨ ᱟᱞᱟᱝ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱢᱟᱨ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮᱛᱨᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱪᱤᱜᱮ ᱱᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚᱭᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱢᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱦᱟᱛᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱹᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱮ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ 2 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ 1869 ᱨᱮ ᱯᱳᱨᱵᱚᱱᱫᱚᱨ ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱡᱟᱫᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱥᱯᱩᱨᱮ ᱠᱤᱱ ᱦᱚᱞᱚ ᱠᱚ ᱪᱚᱞᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱟᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱟᱨᱫᱩ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱵᱚᱨᱟᱵᱚᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱭ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱨᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱚᱵᱠᱟᱥ ᱨᱮ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱚᱵᱚᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱱ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱮᱱ 2 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱞ ᱵᱟᱦᱟᱫᱩᱨ ᱥᱟᱥᱛᱨᱤ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱮ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱦᱚᱵᱚᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 1904 ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱭ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱡᱚᱭ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱞᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱮᱜ ᱱᱮᱱ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱢᱮᱥᱮ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ

0: teriaknya jurihot imin kurang sedikit kecil ente nendureng lo tega mat singa kada bagori otna ayar pado mar atkar ingul sari mesebu ayum liyang.
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाए। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा प्रसारित।
0: ठीक है सिंह अकड़ा चिल्के बट करके डा नेंडो करते हो अकड़ा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाय बसा पीन इरिल पीए पीए बारगोल में निकुल से कम ऑल कुल पे तुंडो डालिंग राम सिंह चतर्थ में तुम जीवन ते जोहार।

जय हिंद बच्चों। आज के नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजू दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों, मुझे तो पूरी तरह से पता है कि आज आप लोग स्कूल नहीं गए, छुट्टी थी, है ना? क्यों क्यों नहीं गए? क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, और 2 अक्टूबर को क्या होता है बच्चों? आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, है ना? और इसके साथ ही आज हम देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है, है ना? लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। बच्चों, उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हमें तो हम बात कर रहे थे बच्चों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, यानी कि गांधी जयंती के बारे में। दो अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती हम मना रहे हैं बच्चों आज। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। हम उन्हें प्यार से बापू भी कहते हैं। बापू ने हमें बच्चों सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया। उन्होंने बिना किसी हथियार के अंग्रेजों की विशाल ताकत को झुका दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई बड़े कदम उठाए। गांधी जी का जीवन सादगी कि एक मिसाल था। वे हमें खादी के कपड़े वे हमेशा खादी के कपड़े पहनते थे। स्वदेशी अपनाने पर जोर देते थे। उन्होंने स्वच्छता को बहुत महत्व दिया, जो आज हम स्वच्छ भारत अभियान चला जो करते हैं, और उसी से प्रेरणा लेकर के हम करते हैं, है ना? आज का दिन सिर्फ बापू को याद करने का नहीं है बच्चों, आज हमें उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। सच्चाई और मानवता के रास्ते पर चलकर ही हम देश को, है ना? आप देश के भविष्य हैं, तो देश ऐसे ही नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही आगे नहीं जाएगा। आपको सच्चाई और मानवता के रास्ते पर चलकर, है ना, उनके रास्तों पर चलना होगा, आगे बढ़ते जाना होगा, ठीक है? बच्चों, जैसे हमने अभी बातें की महात्मा गांधी के बारे में, उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और बाद में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें कई तरह की बातों का सामना करना पड़ा, नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, है ना? लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में हमेशा उन्होंने सत्य, अहिंसा, सादगी, है ना, आत्मनिर्भरता जैसे विचारों से हमेशा उन्होंने अपने आप को जोड़े रखा। और दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद उनके अनुभवों ने उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों को गहराई से प्रभावित किया। भारत लौटने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और कई आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना? और हमारे देश को उन्होंने आज़ाद किया, और तब हम आज स्वतंत्र आज़ाद में सांस ले रहे हैं और हम जी रहे हैं, ठीक है? तो हमने क्या सीखा बच्चों? हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना है, ठीक है?
तो अब हम क्या करें, हमने जाना गांधी जयंती के बारे में, अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ जरूरी संदेश सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जी
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444999 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाए। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444999 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हम सब ने सुना बच्चों, गुजरी संदेश। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता या प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है, जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए, उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। इस योजना के अधिक जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चाईवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचना जारी। तो बच्चों, हमने जाना मिशन वात्सल्य के बारे में। चलिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ। अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी कहानी हो तो ज़रूर सुनाइएगा, ज़रूर भेजिएगा। और कविताएं हो, कहानी हो, तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन अभी मैं आपको एक प्यारा सा कहानी सुनाती हूँ। चलिए, कहानी का शीर्षक है सच्चा दोस्त। एक घने जंगल में एक हिरन और खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। हिरन का नाम था चंचल, खरगोश का नाम था बुद्धू। चंचल अपनी तेजी और सुंदरता के लिए जाना जाता था, जबकि बुद्धू अपनी चतुराई के लिए। वे दोनों रोज जंगल में खेलते और एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करते। एक दिन जब वे खेल रहे थे, तब एक शिकारी ने चंचल को देखा और उसे पकड़ने की सोची। शिकारी ने चुपके से चंचल के पास जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया। चंचल जाल में फंस गया और बहुत डर गया। उसने बुद्धू को मदद के लिए पुकारा। बुद्धू ने देखा चंचल मुसीबत में है और उसे तुरंत एक योजना बनाई। वह शिकारी के पास गया और उसे दूसरी दिशा में भटकाने लगा। बुद्धू ने शिकारी को दूर एक और हिरन के होने का झूठा विश्वास दिलाया। शिकारी बुद्धू के झांसे में आ गया और उस दिशा में चला गया। इस बीच बुद्धू ने चंचल को जाल से मुक्त कर दिया। जब शिकारी वापस आया तो उसने देखा कि चंचल जाल से गायब था। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उधर चंचल और बुद्धू जंगल में की गहराई में भाग गए और सुरक्षित थे। इस घटना के बाद चंचल और बुद्धू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। चंचल ने बुद्धू की चतुराई और साहस की बहुत प्रशंसा की। बुद्धू ने चंचल से कहा, दोस्ती में सबसे बड़ी बात एक दूसरे की मदद करना है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है बच्चों कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय में आपका साथ नहीं छोड़ता और हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। चंचल और बुद्धू की कहानी से आपने क्या सीखा, आप मुझे पत्र लिखकर ज़रूर बताइए। और हमारा पता है नन्ही दुनिया द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा द्वारा। हमारा पिन नंबर है 833201। तो चलिए बच्चों, कार्यक्रम के अंत में फिर एक बार प्यारा सा एक गीत सुनते हैं, ठीक है।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया, यह आकाशवाणी चाईबासा FM के 101.7 MHz पर। 6:55 हो चुके हैं, तो देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मौसी, सुबह सुबह आप यहाँ बहू पेट से है ना, तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी।
2: ये तो खुशी की बात है, घर में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे, इसके लिए समय समय पर बहू की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना।
1: मैंने बहू का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है, उसे समय समय पर जांच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ।
3: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जांच कराएं।
2: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य लें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: माँ बनना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिन तक रोज ही दवा लूं?
5: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है।
6: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से रोज।
7: लो, अब जनरेटर को क्या हुआ?
6: अरे माँ तेल खत्म हो गया है और क्या।
7: अच्छा, 2 कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या? वो भी तो 2 जान संभाल रही है।
5: बहू, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा।
3: चांस क्यों लेना।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: पर अर्पित कर रहा है श्रद्धा सुमन। राज्यभर में स्वच्छता और पर्यावरण पर कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल ने कहा, किसी भी समाज का भविष्य उसकी नई पीढ़ी से जुड़ा है, इसलिए युवाओं और महिलाओं की शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक। राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि झारखंड में 30% वन क्षेत्र मौजूद, लेकिन वन्य जीवों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना अब भी एक चुनौती। रांची नगर निगम ने राजधानी वासियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए 5 अंचल कार्यालय और एशियन गेम्स में टाटा आर्चरी एकेडमी की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज अंकिता भगत की अगुवाई में भारतीय तीरंदाजी टीम ने रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर हेमंत सोरेन ने कहा कि गांधी जी के आदर्शों को केवल स्मरण करने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास भी होना चाहिए। इस अवसर पर राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देशभर में लागू होने वाले विशेष छूट अभियान की शुरुआत की। ये अभियान 16 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट दी जाएगी। मौके पर श्री गोयल ने कहा कि खादी युवाओं के बीच फैशन का हिस्सा बन गई है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में खादी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची में कहा कि किसी भी समाज का भविष्य उसकी नई पीढ़ी से जुड़ा होता है, युवाओं और महिलाओं की शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। राज्यपाल अग्रवाल सभा की ओर से अग्रसेन भवन में आयोजित 50वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने संस्था से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया।
1: इसी में समाज का भविष्य उसकी नई पीढ़ी से जुड़ा होता है, युवाओं और महिलाओं की शिक्षा, कौशल, उद्यमिता और सामाजिक कार्यों में भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। मेरी कामना है कि अखबार सभा अपने गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान निरंतर जारी रखेगी।
0: झारखंड का वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग 2 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मना रहा है। रांची के वन विभाग सभागार पलाश में आज इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने कहा कि झारखंड में 30% वन क्षेत्र मौजूद हैं, लेकिन वन्य जीवों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना अभी एक चुनौती है।
2: जब भी जंगली जानवरों का कोई मूवमेंट होना चाहिए तो उनको एक लगातार जो हैबिटेट मिलना चाहिए वो नहीं हो करके टुकड़े टुकड़े में, ऐसे क्षेत्रों की पहचान हम लोग कर भी रहे हैं और लगभग 75 ऐसे मार्गों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है जहां पर कि जंगली जानवरों का आना जाना होता है। तो इन सभी क्षेत्रों को यदि हम लोग संरक्षित कर लेंगे तो निश्चित रूप से उनका हैबिटेट इम्प्रूव करेगा।
0: सरायकेला खरसावां जिले के कपाली क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति को परखने जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी आज स्वयं मैदान में उतरे। मुख्यालय डीएसपी दुसरू बान सिंह के साथ एसपी कपाली ओपी पहुंचे और पुलिसिंग की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। एसपी ने कपाली ओपी का निरीक्षण करते हुए कार्यालयीय कार्यों, लंबित मंदर्ज मामलों, पुलिस पदाधिकारियों की गतिविधियों तथा अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNews अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज की विशेष श्रृंखला का विषय है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। केंद्र के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को लागू करने से औद्योगिक और प्रशासनिक

0: शैली में बुनियादी बदलाव आए हैं।
1: हमारा ध्यान लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर मजबूती के साथ हम कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं। बिजनेस के लिए 40,000 से अधिक अननेसेसरी कंप्लायंसेस को हटाया गया। जन विश्वास एक्ट के माध्यम से 3,400 से ज्यादा कानूनी धाराओं को डिक्रिमिनलाइज किया गया है।
0: केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद झारखंड में कारोबार के माहौल और व्यापार करने की सुगमता को लेकर स्थानीय व्यापारी और उद्यमियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कारोबारी सुधारों से छोटे उद्यमियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।
2: 2014 के बाद बिजनेस करना थोड़ा सा आसान हो गया है। ये कारण में मोदी जी जब से ये मुद्रा योजना लाए हैं, पे जो लोन मिलता है बहुत ही मतलब इजी प्रोसेस है और जल्दी मिल जाता है बिना गारंटी का लोन, तो बहुत सुविधा हो गया। पहले ये चीजें 2014 से पहले नहीं थी।
3: 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है तब से हम लोग हर चीज में बहुत ही सुविधा मिला है। पैसा लेना देना ऑनलाइन होना, रजिस्ट्रेशन करने में पहले बहुत तकलीफ होता, बड़े दुकान को मिलता था, छोटे दुकानदार को कोई देखने वाला नहीं था सुनने वाला। अब हम छोटे दुकानदार को भी रजिस्ट्रेशन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव आधा राज ने हजारीबाग के NML पकड़ी बरवाड़ी कोयला खनन परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना में चल रही खनन गतिविधियों तथा विभिन्न पहलों की समीक्षा की। रांची नगर निगम ने शहरवासियों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। नगर निगम की ओर से शहर के अलग अलग इलाकों में 5 अंचल कार्यालय शुरू किए गए हैं। इसके साथ ही दुर्गा पूजा और आगामी त्योहारों को देखते हुए 10 स्वच्छता ट्रैक्टर, सोनल पैनल और बायोडिग्रेडेबल पॉलीबैग की सुविधा का भी शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम में रांची की महापौर रोशनी खलको, उप महापौर नीरज कुमार, नगर आयुक्त सुशांत गौरव, नगर निगम के अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे।
4: आज 5 अंचल खोले गए हैं। जो भी छोटी मोटी समस्या है कि कहीं स्लैब लगाना है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, तो ये छोटे सेंटर से ही वो अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग बिजली बचा सकते हैं, इसके लिए सोलर प्लेट लगाया गया है नगर निगम में। इसके अलावा अभी पूजा का सीजन है और पूजा में 10 ट्रैक्टर के माध्यम से उसे अलग अलग जोन में बांट रहे हैं ताकि और सफाई बेहतर तरीके से हो सके राजधानी में।
0: जमशेदपुर में नशे और अवैध कारोबार के खिलाफ विचार क्रांति सम्मेलन आयोजित किया गया। विधायक सरयू राय की अगुवाई में समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों ने ड्रग्स, गांजा, अफीम, जुआ और लॉटरी के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने की बात कही। वक्ताओं ने पुलिस की विशेष टास्क फोर्स बनाकर ऐसे कारोबार पर कार्रवाई की मांग की। सम्मेलन में सामूहिक रूप से नशे के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया गया।
5: तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक नौशेरा जुड़े। आज लगा कि बहुत बड़ी संख्या जुड़ने के लिए तैयार है। इसका समाधान हम स्थानीय स्तर पर ही निकाल सकते हैं। थाना क्षेत्र है या पंचायत का क्षेत्र है, उसके स्तर पर ऐसे लोग जो बच्चों को समझा बुझा भी सके, उनके परिवार वालों से भी जानने से भी बात कर सके।
0: जमशेदपुर की टाटा आर्चरी एकेडमी की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज अंकिता भगत ने भारतीय तीरंदाजी के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। अंकिता की अगुवाई वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शुक्रवार को फाइनल में मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में एशियन गेम्स के इतिहास में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है। इस टीम में हजारीबाग साई सेंटर की प्रतिभाशाली तीरंदाज कृति शर्मा भी शामिल हैं। कृति ने 13 जून 2022 को हजारीबाग के पद्मा स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रवेश लिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर अर्पित कर रहा श्रद्धा सुमन। राज्यभर में स्वच्छता और पर्यावरण पर कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल ने कहा किसी भी समाज का भविष्य उसकी नई पीढ़ी से जुड़ा है, इसलिए युवाओं और महिलाओं की शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक। राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि झारखंड में 30% वन क्षेत्र मौजूद, लेकिन वन्य जीवों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना अब भी एक चुनौती। रांची नगर निगम ने राजधानी वासियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए 5 अंचल कार्यालय। और एशियन गेम्स में टाटा आर्चरी एकेडमी की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज अंकिता भगत की अगुवाई में भारतीय तीरंदाजी टीम ने रचा इतिहास। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: मौसी, सुबह सुबह आप यहाँ

0: बहू पेट से है ना, तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी।
1: ये तो खुशी की बात है। गर्भ में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे, इसके लिए समय समय पर बहू की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना।
0: मैंने बहू का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है, उसे समय समय पर जांच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ।
2: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जांच कराएं।
1: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य लें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: माँ बनना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिन तक रोज ही दवा लूं?
5: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है।
6: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से रोज।
4: लो अब जनरेटर को क्या हुआ?
6: अरे माँ तेल खत्म हो गया है और क्या।
4: अच्छा, 2 कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या? वो भी तो 2 जान संभाल रही है।
5: बहू ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। चांस क्यों लेना।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
1: रामगढ़ के एक निजी सभागार में पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य प्रसाद साहू ने झारखंड में कोयला चोरी, अवैध खनन, खनिज राजस्व और डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज संसाधनों का लाभ जनता को मिलना चाहिए और अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगनी चाहिए। डॉक्टर साहू ने आरोप लगाया कि राज्य में कोयला चोरी का कारोबार लंबे समय से चल रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि धनबाद में सीआईएसएफ की तैनाती के बाद कोयला कारोबार पर प्रभाव पड़ा है तथा वैध कोयला कारोबार के लिए डीओ लेने वाले कारोबारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने प्रशासन से डीएमएफटी मद की राशि के खर्च का सार्वजनिक और पारदर्शी विवरण उपलब्ध कराने की मांग की।
2: एमएमडीआर कानून पूरे देश के लिए बना है और झारखंड के लिए बना है, लेकिन झारखंड के कोयला चोरों, जिनके संरक्षण में कोयला चोरी होती थी, उनके तिजोरी में पैसा जाना चोरी का बंद होगा। अब जनता को गुमराह करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जनता आज के दिन में समझी भी है, जनता जानती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता के लिए अच्छा काम होगा वही काम होगा।
1: रामगढ़ जिले में दामोदर नद के किनारे स्थापित मुक्तिधाम संस्था परिसर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती संयुक्त रूप से मनाई गई। मुक्तिधाम संस्था परिसर में गांधी जी के एक अस्थि कलश को यहां विरासत के रूप में स्थापित किया गया है। इस मौके पर मुक्तिधाम संस्था का आयोजक कमल बगड़िया ने बताया कि मुक्तिधाम संस्था के द्वारा गांधी जी की जयंती और पुण्य तिथि यहां पिछले 3 दशकों से लगातार मनाई जा रही है। आज के पुष्पांजलि कार्यक्रम में सभी धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया, क्योंकि 1940 के अधिवेशन में गांधी जी रामगढ़ आए थे।
3: पिछले 3 दशकों यानी 34 साल से ये कार्यक्रम लगातार अनवरत चल रहा है, जिसमें शहर के गणमान्य और स्थानीय लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि 1940 में यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें नरम दल और गरम दल का गठन हुआ था, इसलिए रामगढ़ का महत्व हो जाता है। और गांधी जी के 16 अस्थि कलश में एक अस्थि कलश यहाँ पर लगाया गया है। आज गांधी जी के इस अस्थि कलश की जीवनी प्रशासन के द्वारा बोर्ड पर अंकित की गई है।
1: मौके पर जिले के उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज यहां मनाई गई। हम लोगों को दोनों ही महापुरुषों की जीवनी पर अध्ययन करने की जरूरत है और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हम देश को आगे लेकर जा सकते हैं।
4: दोनों ही महापुरुषों का जीवन हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन है। उनके हर अध्याय को हमें अध्ययन करना चाहिए। यहाँ जो हमारा मुक्ति धाम है, यहाँ पे अस्थि कलश भी स्थापित है। आज हम लोगों ने इससे संबंधित जो एक सूचना पट है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। और 1940 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी यहाँ पे आए थे और उनका मार्गदर्शन रामगढ़ जिला को मिला था, तो मैं बोलूंगा कि यह रामगढ़ जिला वासियों के लिए एक पावन दिन है।
1: इस कार्यक्रम में गोला से पुष्पांजलि देने पहुंची एक नन्ही स्कूली बच्ची ने बताया कि आज का दिन खास है।
5: यहाँ पे हमारे रामगढ़ में महात्मा गांधी जी का 1940 में अधिवेशन हुआ था, तो ये हमारे रामगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर रामगढ़ में तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों ने उनके बताए रास्ते पर अनुसरण कर देश को आगे बढ़ाने की बात पर बल दिया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
0: अभी आप सुन रहे थे रामगढ़।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र, आपकी पसंद। इस दैनिक कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है मिशन कश्मीर। सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी किरण, रोशनी और मुस्कान, न्यू कॉलोनी टुंगरी से सुशील कुमार सिंह, श्रीमती संध्या देवी, प्रियंका, सुमित, काजल, कृष और किट्टू।

नाम। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। गुलकारा है लता मंगेशकर, सुनने के ख्वाहिशमंद। उमर खेर महाराष्ट्र से, अभिजीत ग्वानकर राही, सरिता सिद्धांत, शैलेश और वैशाली ग्वानकर, जोजो कुर्मा से मनोज गागराई, संगीता गागराई, बासंती सोनाली, आयशा रचना और जितेंद्र गागराई।

नगीना। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। फनकार हैं मोहम्मद अजीज़। सुनना चाहते हैं भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर और दीपक वर्मा। राजनगर से मांगीलाल, अन्नू, मुस्कान और आकांक्षा। चाईवासा से सुखदेव गोप, रणवीर, मकेश्वरी, सरोज और निशा गोप।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

अब सुनते हैं फिल्म बलमा का गीत आशा भोसले और कुमार सानू से। सुनना चाहते हैं बेडी से हुकुम कर्म कर, सुनीता हार्दिक प्राची और तनु कर्म कर। बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा प्रकाश, ललित प्रधान और बनमाली।

सब्जी मंडी बुल्ढाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, शहबाज और आसिफ, कोंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी, कविता, हर्षमणि, पार्वती, सुहानी, संजय और नंदनी महली, इनकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म बंदिश का गीत। युगल स्वर हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

नमक हलाल, यह इस फिल्म का गीत। गुलकारा हैं आशा भोसले और सुनना चाहते हैं बड़ा निमडीह चाईवासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक, अमित, सुमित और शुभम। रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू सईद, वसीम और वलीउल्लाह नूरजहां। लुधियाना से अमरजीत, सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर।

कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश को। फिल्म का नाम है फर्ज। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं दलाईकेला ग्राम से लक्ष्मण सोए, आयुष, सोनू, गीता, सरिता, सारिका, हारिका, तनुजा और रविमी सोए। लक्षनपुर से जीवन लाल, रजक, सरोजनी और रामजी साहू। रायगढ़ से शिव कुमार चौहान और संक्रांति चौहान।

मंझारी से बसंत बेकुरा, हेमंत पात्रो, सुलोचना पान, कौशिक, दीपक और इंकी। जमशेदपुर से अरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया। और अमजोरा पोखरिया से शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता लिपि और दीपाली गोप। इनकी फरमाइश पर यह आवाज़ मन्ना डे की। फिल्म का नाम है उपकार।

डिस्को डांसर। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। गुलकारा हैं उषा उत्तुप और सुनना चाहते हैं चाईबासा से।

राम मधुर जीवन विश्वकर्मा विनोद कुमार पवन, श्रीमती मीना पवन, मधुर लकड़ा, नताशा और इनकी सहेलियाँ, पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर से सदैव दामोदर, शशिकला, साधना और सुमेध दामोदर।

मुकद्दर का सिकंदर। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत, आवाज़ किशोर कुमार की। सुनना चाहते हैं अमला टोला चाईवासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक और अक्षत प्रसाद। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता।

दीवाना। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना, आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं न्यू कॉलोनी टुंगरी से सुशील कुमार सिंह, श्रीमती संध्या देवी, प्रियंका, पंडित आर के पाठक, अनिता मिश्रा, रिया और प्रिया पाठक। भाटापारा से प्रमोद देव कुमार शाह, नवीन और युवराज शाह। इस गीत को सुनना चाहते हैं भिलाई से श्रीमती प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, अशोक और दीपक श्याम कुंवर।

प्यार झुकता नहीं। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं इस फिल्म का गीत। युगल स्वर हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। सुनना चाहते हैं धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष, सरोज और शानू। बादुरी से कैलाश कुदादा, नारायण कुदादा, कृष्णा, मोहन, बसंत और ज्योति कुदादा। जिला स्कूल चाईवासा से गौतम होनागा, धनंजय, शंकर, परशुराम, दादू, दामू और ललित। डबवाली से बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी।

शमीन, इस नगमे के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का रजनीगंधा कार्यक्रम। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया, उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप

0: जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
1: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए।
5: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता पड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन लोगों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौरान पिछड़ गए थे और उनकी बात को कर रहे हैं।
2: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के इडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर इंगम पामे और नम्पीबू मरिनमाई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान में

0: एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
1: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
0: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
2: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
0: महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
3: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi praises brave pilot Smith Machar for saving hundreds of lives and foiling attempt to crash Israel-bound flight. Asserts Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. Commerce Minister Piyush Goyal says India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary. And in Asian Games, India win first women's hockey gold in 44 years. Wrestler Sujit Kalkal and boxers Parveen

0: joined India's freedom struggle and participated in the non-cooperation movement in 1921. Following independence, he held several important positions in Uttar Pradesh and later in the Union government. Prime Minister Narendra Modi paid floral tribute to the former Prime Minister at his memorial Vijay Ghat in the national capital this morning. Khadi and Village Industries Commission Chairman Manoj Goyal today informed that a special discount campaign has been launched across the country, including Khadi Bhavan at Connaught Place in New Delhi. The discount is available from today till 16th of next month. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises said that during this period, up to 20% discount will be available on Khadi products and 10% discount on Village Industry products. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that entry and exit gates of all metro stations of the Delhi Metro network are now open. It added that the interchange facility at New Delhi Metro Station is also available. Earlier today, Delhi Metro had informed that 12 metro stations will remain closed until further notice. This is Akashwani. You're listening to News at 9.
1: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
0: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Mann Ki Baat.
2: Mann Ki Baat on Akashwani began as a monthly radio broadcast and has not missed a month since. It is not a policy address. It picks out something a common man has done well, explains a scheme in ordinary words, and asks for help with sanitation, water or self-reliance. Radio reaches where nothing else does. The program has given a way of talking to the country that is neither a press conference nor a campaign. Before Mr. Modi, no Indian Prime Minister had ever spoken to the country on a schedule. Sharing his thoughts on the 100th episode of Mann Ki Baat in April 2023, Prime Minister Narendra Modi had said that whether it is about schemes or any subject with which Mann Ki Baat got associated turned into a mass movement.
3: Mann Ki Baat mein pure desh ke kone kone se log jude, har ayu varg ke log jude, beti bachao beti padhao ki baat ho, swachh bharat andolan ho, khadi ke prati prem ho, ya prakruti ki baat. आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया.
2: Talking to media, eminent actor Aamir Khan said, Mann Ki Baat program has a huge impact on people.
4: Mann Ki Baat has had a huge impact on the people of India. And it has a big effect on people. And this is a very historic thing that the Prime Minister has done.
2: Today, crores of Indians tune into Prime Minister's address, listening to stories of governance success from across the nation. An aspirational India listens to the tales of transformed realities. Mann Ki Baat is a monthly radio dialogue which has fundamentally transformed the public communication. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
0: In Punjab, Border Security Force or BSF has neutralized two Pakistani intruders today in Tarn Taran sector. Quoting BSF sources, Akashwani correspondent reports that they illegally crossed over to the Indian side of the border. Despite giving warnings by the deployed security personnel to stop, they continued advancing forces, forcing BSF to open fire. Information and Broadcasting Ministry has mourned the untimely demise of three members of the Information and Broadcasting Fraternity who lost their lives in a tragic road accident in Mizoram yesterday. The vehicle carrying the officials fell into a gorge while they were on official duty. The deceased are Dr. Angam Pami, IIS, Additional Director General, Press Information Bureau and Central Bureau of Communication, Imphal, Nampibo Marimai, IIS Director News, Doordarshan Kendra and All India Radio Aizawl, and H. Liandila, MTS, Central Bureau of Communication, Field Office Aizawl. The gold rush continued for India at the Asian Games in Naichi, Nagoya, Japan, as Indian athletes delivered a stellar performance on day 13, clinching 6 gold medals in hockey, boxing, wrestling and archery in a spectacular display of skill, determination and sporting excellence. Indian women's hockey team clinched the gold medal, defeating China 1-0 in the closely fought final. Lal Ramsimai Marzote scored the decisive lone goal for India, while goalkeeper Savita Punia produced a crucial save from a penalty stroke to preserve the lead and secure the gold medal. The victory marks India's first women hockey gold at the Asian Games in 44 years, ending a long wait for the title. Earlier, Indian wrestler Sujit Kalkal scripted a remarkable comeback to win the gold medal in the men's 65-kilogram freestyle event. In boxing, Parveen Huda won the gold medal in the women's 65kg category, defeating Chinese Taipei's Nian Chinchen 3-2 in a split decision in the final. Ankush Pangal clinched the gold medal in the men's 80kg category, defeating South Korea's Kim Min-seung by a split decision 4-0 in the final. India's star woman boxer Lovlina Borgohain also clinched a gold medal in the 75kg category, defeating China's Bao Zi by unanimous 5-0 decision in the final. In archery, women's recurve team created history by clinching its maiden Asian Games gold medal. The try of Ankita Bhagat, Kirti Mishra and Kumkum Mohot defeated world champion South Korea 5-3 in the thrilling final. India also bagged silver in the mixed recurve team event. Kumkum Mohot and Dheeraj Bumadevra finished runners-up after going down 3-5 to China in a closely contested final. Sepak Takraw, India scored the bronze medal in the men's quadrant event. In sailing, Netra Kumanan clinched bronze in the women's dinghy event. With these impressive performances, India has climbed to 5th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 76, including 16 gold, 25 silver and 35 bronze medals. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated the medal winners. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh during the next 2 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi praises brave pilot Smit Machar for saving hundreds of lives and foiling attempt to crash Israel-bound flight, asserts Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. Commerce Minister Piyush Goyal says India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary. And in Asian Games, India win first women's hockey gold in 44 years. Wrestler Sujit Kalkal and boxers Parveen Huda, Lovlina Borgohain and Ankush Pangal also clinched gold medals. India climbed to 5th position in overall medal standings, with tally rising to 76, including 16 gold. That is all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है. खबरों के साथ मैं नीति का त्यागी. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहादुर पायलट स्मित मच्छर की सैकड़ों जाने बचाने और इसराइल जाने वाली परवाज को तबाह करने की कोशिश नाकाम बनाने पर तारीफ की. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय वो होते हैं जो दूसरों की जान नहीं लेते हैं, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं. तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिले एतमाद शराकतदार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयारशुदा अशिया तक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन तश्कील दे रहा है. मुल्क ने बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया. और एशियाई खेलों में भारत ने 44 सालों में खवातीन हॉकी में सोने का पहला तमगा जीता. पहलवान सुजीत कलकल और मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा, लोवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंडाल ने भी सोने के तमगे हासिल किए. भारत तमगों की फहरिस्त में 5वें मकाम पर पहुंच गया है. उसने तमगों की मजमुई तादाद बढ़कर 76 हो गई, जिनमें सोने के 16 तमगे शामिल हैं. अब खबरें तफसील से. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की और इसराइल जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज को हाईजेक करने की कोशिश के दौरान उनकी बहादुरी और हाजिर दिमागी की तारीफ की। वजीर आजम ने कहा कि भारतीय वो लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वो हैं जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कैप्टन मच्छर के उस फौरी फैसले को सराहा जिससे सैकड़ों मुसाफिरों की जान बचाने में मदद मिली।
3: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
6: मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े आइडल से और मेरे को मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
5: गुज़श्ता बुध के रोज कैप्टन मच्छर उस वक्त शदीद तौर पर जख्मी हो गए जब दुबई से तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज के कॉकपिट में उनके साथी पायलट ने उन्हें छुरी मार दी। इस परवाज में 174 मुसाफिर सवार थे जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका के शहर मिलवॉकी में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग के इख्तितामी दिन आलमी तिजारत में पाई जाने वाली बेकायदगियों और अदम तवाजुन को दूर करने के लिए आलमी तिजारती तंजीम WTO के जाब्तों के मुताबिक तरीकाकार इख्तियार करने पर जोर दिया है। ढांचा जाति इजाफी सलाहियत और पैदावार के मौजू पर खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है और इसकी मईशत 140 करोड़ लोगों की जरूरियात पूरी करने वाली घरेलू मांग पर मबनी मईशत है। उन्होंने उजागर किया कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयार मसनूआत तक मैन्युफैक्चरिंग का मुकम्मल वैल्यू चेन तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की पैदावारी सलाहियत उसकी घरेलू और आलमी दोनों जरूरियात पूरी करती है और G20 की सदारत के दौरान जिन शोबों की निशानदेही की गई है उनमें भारत को ढांचा जाति इजाफी पैदावारी सलाहियत का मसला दरपेश नहीं है। जनाब गोयल ने कहा कि भारत और कई रुकन मुल्कों को तश्वीश है कि बाज मईशतों में गैर मुनसिफाना तौर पर असरअंदाज होने वाली सरकारी मदद से अशिया को गैर मामूली तौर पर कम कीमत पर बैरून मुल्क फरोख्त करने और हरीफों को मार्केट से बाहर करने के लिए जानबूझकर इंतहाई कम कीमत मुकर्रर करने का रुझान पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे खदशात से निमटने के लिए WTA के जाब्तों से हम आहंग इकदाम किए जाते हैं जिनमें डंपिंग मुखालिफ महसूल और इजाफी दरामदी महसूल शामिल हैं। G7 के रुकन ममालिक के रहनुमाओं ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें आलमी सतह पर डीजल की सप्लाई, ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों और अमरीका और यूरोप के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी है कि अगर यूरोपीय ममालिक ने अपने स्ट्रेटेजिक जखायर से ईंधन जारी नहीं किया तो अमरीका डीजल की बरामदात रोक सकता है। इसके अलावा यूक्रेन के जरिए रूस की रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाने के बाद रूस ने डीजल की दाद पर आयत पाबंदी में तौसी कर दी है जबकि चीनी रिफाइनरियों ने मुल्की जरूरियात के लिए डीजल की बरामदात मुअत्तल कर दी हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने बुलाई थी ताकि G7 ममालिक के रहनुमाओं को इस बात पर आमादा किया जा सके कि वो बरामदाती पाबंदियां आयत किए बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी को मुस्तहकम करने के इकदाम कर सकें। यूरोपीय कमीशन के अहदेदारान ने डीजल की बरामदात पर अमरीका की मुजवजा पाबंदी को मुस्तरद करते हुए मुतनब्बे किया कि इससे काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर अमरीका पर एतमाद को नुकसान पहुंचेगा।
7: तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि G20 ममालिक के साथ भारत की तिजारत का इनहिसार एक शफाफ, गैर इम्तियाजी और कवायद पर मबनी तिजारती निजाम है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क का दर्जा उस निजाम की एक अहम जमानत है जिसके तहत सबसे छोटे ताजिर और सबसे बड़े ताजिर के लिए यकसां शरायत लागू होती हैं। आलमी सप्लाई चेन में जबरी मशक्कत के खात्मे के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जबरी मशक्कत के खात्मे के लिए भारत का अज़्म कतई और गैर मशरूत है। وزیر موصوف نے ایک بار پھر قواعد پر مبنی منصفانہ، مساوی، غیر امتیازی، شفاف، جامع اور کثیر جہتی تجارتی نظام کے لیے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا۔ جناب گوئل نے آسٹریلیا، سعودی عرب اور جنوبی کوریا سمیت متعدد ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات بھی کی۔ سپرنیا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں

0: कौमी राजधानी में राजघाट पर बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा यानी सभी मजाहिब के दुआइये जलसे का एहतमाम किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना में शिरकत की और बाबाए कौम को गुलहाए अकीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दीगर रहनुमाओं ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत नजर किए। नायब सदर और वजीर आजम ने आज शाम नई दिल्ली में गांधी स्मृति पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम के दौरान नामवर गुलकारों के साथ साथ स्कूली तलबा ने रूहानी नगमे गाए। मुल्क ने आज साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके 122वें यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए, जिसे पहले मुगल सराय कहा जाता था। नौ उम्री में वो भारत की तहरीक आजादी में शामिल हुए और साल 1921 की अदम तावन तहरीक में हिस्सा लिया। आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश और उसके बाद मरकजी हुकूमत में कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम को आज सुबह कौमी राजधानी में वाके उनकी यादगार विजय घाट पर गुलहाए अकीदत नजर किए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि मन की बात के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: आकाशवाणी पर मन की बात महाना रेडियो प्रोग्राम के तौर पर शुरू हुआ था। इसके आगाज के बाद से एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरा जब ये प्रोग्राम नशर ना हुआ हो। ये कोई पॉलिसी से मुताल्लिक खिताब नहीं है। इस प्रोग्राम में आम लोगों के उन कामों को उजागर किया जाता है जो उन्होंने अच्छे तरीके से अंजाम दिए हों। इस प्रोग्राम के जरिए किसी सरकारी स्कीम को आम फहम जबान में समझाया जाता है और सफाई, सुथराई, पानी या खुद किफालत जैसे मामलात में आवाम से ताउन की अपील की जाती है। रेडियो उन लोगों तक भी पहुंचता है जहां कोई और जराए इबलाग नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रोग्राम ने मुल्क के आवाम से बातचीत का एक ऐसा अंदाज पैदा किया है जो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ना ही इंतखाबी मुहिम। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें नशरिये के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मन की बात में जिन मौजूदात या स्कीमों का अहाता किया गया वो अवामी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर गईं।
2: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया।
1: मीडिया से बात करते हुए लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सामेईन ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ आवाम तक पहुंचाया है।
3: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए।
4: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गांव के उन नौजवानों तक पहुंचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौरान पिछड़ गए थे और उनकी बात वो कर रहे हैं।
1: मीडिया से बात करते हुए मारूफ अदाकार आमिर खान ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम ने लोगों को काफी मुतासिर किया है। आज करोड़ों भारतीय वजीर आजम के खिताब को सुनते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सामने आने वाली हुक्मरानी की कामयाबियों की कहानियां सुनते हैं। उमंगों वाला भारत, बदलती हुई हकीकतों की दास्तानें गहरी दिलचस्पी और जुस्तुजू के साथ सुनता है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आइंदा दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि इस महीने की 5 तारीख तक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। बरतानवी भारतीय शतरंज खिलाड़ी बोधना सिवानंदन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जानिब से खवातीन का ग्रैंड मास्टर खिताब WGM जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी होने का एतराफ किया गया है। इस 11 साल स्कूली तालिबा ने समरकंद उज्बेकिस्तान में मुनाकिद 46वें शतरंज ओलंपियाड को जीतकर तारीख रकम की थी, जिससे वो बावकार WGM खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई थी। भारत की सरकर्दा ट्रैप शूटर नीरू ढांडा इतवार को आईजी नागोया में होने वाली एशियाई खेलों की इख्तितामी तकरीब में भारत की खवातीन परचम बरदार होंगी। जापान के आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में सोने के तमगे जीतने का सिलसिला जारी है। खेल के 13वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए हॉकी, मुक्केबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी में 6 सोने के तमगे हासिल किए और अपनी महारत, अज्म और खेल के आला मेयार का मुजाहिरा किया। खवातीन हॉकी के फाइनल में भारतीय टीम ने सख्त मुकाबले में दिफाई चैंपियन चीन को 0 के मुकाबले 1 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। लाल रेमेम सियामी ने भारत की जानिब से फैसला कुन वाहिद गोल किया, जबकि गोलकीपर सविता पूनिया ने पेनल्टी स्ट्रोक का बचाव करते हुए भारत की बढ़तरी बरकरार रखी और सोने का तमगा जीता। एशियाई खेलों में भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने 44 सालों के लंबे इंतजार के बाद पहला सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने 2028 के लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए सोने का तमगा जीता। मर्दों के 80 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में अंकुश पंघल ने जनूबी कोरिया के किम मिन सियोंग को 4-0 से हराकर सोने का तमगा जीता। भारतीय खातून मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में चीन की खिलाड़ी को हराकर जीत हासिल की। इसके साथ ही तमगे की फहरिस्त में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत के तमगों की तादाद बढ़कर 76 हो गई है, जिसमें सोने के 16, चांदी के 25 और कांसे के 35 तमगे शामिल हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहादुर पायलट स्मिथ मच्छर की सैकड़ों जाने बचाने और इसराइल जाने वाली परवाज को तबाह करने की कोशिश नाकाम बनाने पर तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय वो होते हैं जो दूसरों की जान नहीं लेते हैं, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिले एतमाद शराकतदार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयार शुदा अशिया तक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन तश्कील दे रहा है। मुल्क ने बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 सालों में खवातीन हॉकी में सोने का पहला तमगा जीता। एशियाई खेलों में भारत तमगों की फहरिस्त में 5वें मकाम पर पहुंच गया है। इसके तमगों की मजमुई तादाद बढ़कर 76 हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इजराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ा, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता
2: हूँ। फ्री स्टाइल First up, one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a four-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
3: महिला हॉकी के फाइनल में आज भारत की लड़कियों ने एक बहुत बड़ा

0: नीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही। गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मध्य मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे। पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा। खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए। फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना। पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो बेकार गया। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक। किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर। सविता पूनिया ने अकल्पनीय पूर्वानुमान के साथ अपने बाईं ओर गिरते हुए ग्लव्स से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया। हाफ टाइम स्कोर 1-0 और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया, भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे। डिफेंस पूरी तरह शबाब पर, चीन के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण। चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी। समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश में लगी थी। अंत में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर। लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देखकर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया, बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुंचने का और जैसे ही हुटर बजा लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा, स्वर्ण पदक भारत को। अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले। इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है। अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे, देश के लिए बेस्ट टीम तैयार करने के लिए 2 साल का समय मिल गया है, वरना अभी करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ सकता था ओलंपिक कोटा के लिए। चलते चलते ये भी बता दूं कि इसके पहले 1982 में अंतिम बार भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में।
1: Next on to the wrestling mat, and this was a day when India had plenty at stake across 4 weight categories, and one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
2: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रजत रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे, लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत कलकल की। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच के प्रकाष्ठा तक पहुंचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर भारतीय खेमे को खुशी से भर दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी। इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर ज़ज़ाई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के अब्बास इब्राहिम को 10-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी। आपको ये भी बताते चले, सुजीत साल 2026 में अब तक अजय है। एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई। कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की जेने बयानोवा ने चित करके यानी बाई फॉल के जरिए शिकस्त दी, जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरे मेडिट काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रजत रुहाल राउंड ऑफ 16 कजाकिस्तान के एदगे कासिम बेग से 3-8 से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कल भारत के 5 पहलवान मैट पर उतरेंगे, जिनमें पुरुषों में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम और दीपक पुनिया 97 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
1: Now to the boxing ring. 3 Indian boxers went into gold medal bouts today. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Panghal. And all 3 emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
2: मुक्केबाजी रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने विरोधी बॉक्सरों पर ऐसा पंच जड़ा कि एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लग गई और इतिहास के पन्नों पर लिख दिया एक नया गोल्डन अध्याय। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लवलीना बोरगोहेन, प्रवीण हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की, अपने जन्मदिन

0: लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगझाउ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले परवीन ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नवखोर खादी मोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
1: Next to the archery range, and another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
0: Nagoya में भारतीय तीरंदाजों ने आज निशाने पर ऐसा तीर चलाया कि पदकों से झोली भर गई। एक ही दिन में भारत ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती 2 सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए, लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया की तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा के एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38, 35-37, 37-36 और 37-37 से कांटे भरे मुकाबले में शिकस्त मिली। वहीं दिन के आखिरी फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम 56-56 की बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे गेम में भारत 50-57 और तीसरे गेम में 54-56 से पीछे रह गया। इस तरह दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के हिस्से रजत पदक आया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी में भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।
1: On to Sepak Takraw, where both the men's and women's quadrant teams were in action today. Here's Anupam Pathak with the report.
2: सिपक टोकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में भारतीयों ने इतिहास रच दिया और इस स्पर्धा में पहला पदक कांस्य पदक हासिल कर लिया। आज भले ही सेमीफाइनल मुकाबले में जापान से उन्हें 12-15 और 13-15 से सीधे सेट्स में हार मिली, लेकिन सेमीफाइनल चक्र में पहुंचकर पदक तो उन्होंने पहले ही पक्का कर लिया था, सो कांस्य पदक उनका रहा। इसे ही रेगू स्पर्धा भी कहते हैं। भारतीय टीम में शामिल थे मालेम गानबा सिंह, सौरव खाइबाम, रामकुमार शर्मा,

यह आकाशवाणी चाईवासा है फिल्म के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है गजलों का कार्यक्रम महफिल, जिसमें आज के फनकार हैं हरिहरन।

कार्यक्रम महफिल में आज के फनकार थे हरिहरन, और शुरू के रंग में आज आइए सुनते हैं एक ही गायिका लता मंगेशकर को।

ये रात भी जा रही है, चांद को साथ लिए कुछ अधूरे ख्वाबों की बात लिए।

सुरों के रंग, ये आ गई इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सन्नाटे की चादर में यादों की आहट है, हर बीतता लम्हा जैसे कल की कोई चाहत है। सुबह फिर आएगी शायद न कोई।

कार्यक्रम सुरों के रंग में आज की कलाकार थी लता मंगेशकर। यह आकाशवाणी चाईवासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा

अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।